0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: सोम शिखर जी,
2: जय जगन्नाथ
1: पुरी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले युगों में भक्तों को भी एवं कंस जैसे असुरों को भी बाहरी दिव्य आकाशवाणी होती थी, परंतु कलयुग में हम वर्षों से राधा राधा जप रहे हैं, कोई बाहरी दिव्य आकाशवाणी महाराज जी होने रहे?
3: यहाँ युग धर्म का प्रभाव है। नहीं, आपकी बात हम मानते हैं, युग धर्म का प्रभाव होता है। कलयुग में बड़ी मलिनता है। आप राक्षसों के चरित्र पढ़ के देखिए, 10,000 वर्ष, 50,000 वर्ष तपस्या करते थे। ऐसे थोड़ी वो संसार को हिला दिए। और तब हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की कि शरीर नहीं रह गया था, हड्डी हड्डी। तो ब्रह्मा जी ने जब कमंडल में जल डाला, तब उसका शरीर फिर पुनः प्रकट हुआ। तभी तो त्रिभुवनपति पूरे त्रिभुवन को हिला दिया, कोई जोड़ नहीं था। ऐसे वरदान मांगे कि केवल सिर्फ भगवान ही मार सकते थे, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान ने फिर नरसिंह रूप रख करके, तो पहले क्या था कि बड़ा पवित्र वातावरण था, तो राक्षस भी पवित्रता से तपस्या करते थे। और अब तो देखो, अधिकतर संध्या नहीं करते, बंधन नहीं करते, शराब पीना और यहां तक कि मांस खाना, ये सब बातें आ रही समाज में कि नहीं आ रही? बड़ा समय विचित्र है। कुछ ऐसे जन हैं अभी जो अपने आप को बचाए हुए हैं। कलयुग का एक प्रवाह, पहले युगों का क्या प्रवाह कि राक्षस भी तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग का प्रवाह जो तपस्वी कुलों में उत्पन्न हुए वो भी राक्षसी आचरण करने लगे, गलत आचरण। तो युग धर्म का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो आकाशवाणी तो दिव्य होती है ना, जब तक दिव्य नहीं होगा तब तक वो दिव्यवाणी को सुन नहीं सकता। दिव्य नेत्र नहीं होंगे तो दिव्य दर्शन नहीं हो सकते। देखो, आज जो बड़े बड़े योगियों में भी नहीं है, वो राक्षसों में होता था। बहुत रूप धारण कर लेना, मतलब 1,000 रूप धारण कर लिए तो 1,000 रावण दिखाई दे रहे। भगवान राम के सामने माया चलाई उसने, दूर की बात सुन लेना, ध्यानस्थ होकर के बात जान लेना। बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़े बड़े योग साधन, युग धर्म का प्रभाव कि दैत्य लोग भी करते थे। और आज तो, आज सुनते हो क्या कि किसी को भ्रष्ट करने के लिए अप्सरा आई? तो या मानुषिक माया से ही नहीं बच पाते, तो आसुरी माया या दैवी माया की तो बात जाने दो। तो कलयुग है बच्चा, यहाँ तो यही भ्रष्ट हो जाते हैं, तो देव अप्सरा का है। तो बहुत से बातें हैं जो युग धर्म में ढक जाती हैं। जैसे जो पवित्र वृक्ष हैं, जो पवित्र फल देने वाले, रसमय फल देने वाले स्वाभाविक वृक्ष हैं, वो अंतर ध्यान होते जा रहे हैं। देखो, एक एक गाड़ी आम, बड़े बड़े वृक्ष होते, वो वृक्ष गायब हो गए। अब वो नकली चले, इतने इतने हैं, इतने इतने बड़े आम लगे हुए हैं। और पहले बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे आम। तो युग धर्म का प्रभाव देखो बढ़ता चला जा। हमने गंगा जी का भरपेट जल पी करके गुजारा किया है, यमुना जी का जल जब वृंदावन आए थे तो कमंडल से भरकर पीते थे। अब आज आप आचमन करने में सकुचाओगे। युग धर्म का प्रभाव देखो, हमारी पवित्र नदियां जिनका जल पी करके हम गुजारा करते थे, आज हम आचमन नहीं कर सकते। तो ये युग धर्म का प्रभाव देखो कि पहले जैसे वृंदावन में, आज के मान लो 25-26-30 वर्ष पहले, जगह जगह प्याऊ लगे हुए थे, लोग श्रद्धा से पानी पिलाते थे। अच्छा, कुआं हैंडपंप व्यवस्था थी। अब आज आप वृंदावन में परिक्रमा लगाए, अगर प्यास लगी तो 20 रुपया की एक बोतल लीजिए, प्यास बुझाइए, आपको पानी। बहुत बड़ा परिवर्तन युग धर्म का होता चला जा रहा है। अच्छा, अभी तो 5-6 हजार वर्ष हुए हैं और 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। देखो, पिता से पुत्र और पुत्री सुरक्षित रहते हैं। कलयुग का कुछ प्रभाव ऐसा आ गया है कि पिता के द्वारा ही अपने बच्चों का शोषण होने लगा, पिता के द्वारा ही अपने बच्चों का शोषण। युग धर्म का प्रभाव देखो। नहीं, माता पिता से ज्यादा सुरक्षित बच्चे कहां रह सकते हैं? अभी ज्यादा नहीं है, यदा कदा, लेकिन जब भयंकर कलयुग आएगा तो ज्यादा हो जाएगा, फिर यदा कदा नहीं रहे। लिखा है, पहले से लिखा है, कलिकाल विहाल के मनुजा नहीं मानत को अनुजा तनुजा। अनुजा माने बहन, तनुजा माने बेटी, बहन बेटी का भेद नहीं रह जाएगा, पशुता ऐसा समय आएगा। तो युग तो बहुत मलिनता फैलाने वाला है, इसमें अगर भगवान का नाम जप किया जाए और भगवान का नाम कीर्तन किया जाए, भगवान की कथा सुनी जाए तो पवित्रता बनी रह सकती, नहीं तो बहुत मलिन है, बहुत मलिन है।
2: महाराज जी, कभी कभी मन में ये आता है खुद से कि ये गलत कर रहा हूँ या ये सही कर रहा हूँ मैं, तो क्या यही चीज जो मन में अपने आप आ रही है यही आकाशवाणी है आज के?
3: नहीं, आकाशवाणी है तो मनवाणी है, आकाशवाणी थोड़ी, आकाशवाणी दिव्य होती है, और आकाशवाणी जो होती है वो विशिष्ट और परम सत्य होती है। जैसे कंस के लिए आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, बाल पकड़कर उसी समय मारना चाह, क्या मार पाया क्या? एक एक पुत्र मारता गया, क्या उसको 8वें को मार पाया क्या? तो आकाशवाणी जो होती है वो बहुत शुद्ध और सत्य और परम गंभीर वाणी होती है। तो अब आकाशवाणी सुनने के लिए हमारे अंदर दिव्यता होनी चाहिए ना, तो वो दिव्यता तो ऐसी है ही नहीं। जैसे ब्रह्मा जी समाधिस्थ हुई तब आकाशवाणी हुई कि इस समय इस बार मैं संपूर्ण अपने अंशों के साथ अवतार धारण कर रहा हूं, जाओ तुम निर्विघ्न हो जाओ, पृथ्वी से कह दो वो भय रहित हो जाए, मैं स्वयं अवतार धारण कर रहा हूं। भगवान की वाणी आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने सुना, सबको बताया कि आप धैर्य धारण करो, भगवान का अवतार होने वाला है, श्री कृष्ण अवतार। तो भगवान की जो आकाशवाणी कई तरह की होती है, एक देववाणी, एक ऋषि वाणी, एक विधाता की वाणी और एक ब्रह्मवाणी, भगवत वाणी। तो अलग अलग आकाशवाणी का स्तर है। अब जैसे देववाणी को तो सुन लिया कंस ने, देववाणी ही थी, विधान के अनुसार वो वाणी हो रही थी, लेकिन भगवत वाणी नहीं सुन पाएगा। भगवत वाणी जब ब्रह्मा जी को सुनना हुआ तो समाधिस्थ हुए, सबको नहीं सुनाई दी, वो जब समाधि में पहुंचे तब सीधे ब्रह्मवाणी सुनाई दी, मैं अवतार लेने जा रहा हूं, तो अवतार भगवान ने लिया। तो ये युग धर्म, इसका एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में, जो 10-10 हजार वर्ष पहले तपस्या करने पर लाभ मिलता था, 24 घंटे तपस्या करने पर लाभ मिल जाएगा। अगर दोषों की खान है तो गुण की भी खान है, क्योंकि इस हम लोगों का जन्म ही से लेकर के आयु 80-100 तक है, वहां तो पता चला 20,000-60,000 वर्ष तक तपस्या किए, तो आपने तो 60,000 वर्ष में ले जाने कितने बार जन्म मर लेंगे। तो ये कलयुग में विशेषता है, ये 24 घंटे तप करने पर जो लाभ मिलता है वो 10,000 वर्ष अन्य युगों में तप करने पर लाभ मिलता था, पर इसमें 24 घंटे क्या 24 मिनट ठीक रहना मुश्किल है। मन बार बार गंदा चिंतन, गंदी बातें, गंदा व्यवहार, छल कपट, यही सब चल रहा है। झूठ तो बिल्कुल सबकी जबान पे आ चुका है। देखो कलयुग का प्रभाव, पहले युगों में था कि सत्य के लिए प्राण दे देते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, अगर वचन दे दिया तुमसे तो अपने प्राण भले चले जाए लेकिन वचन, और यहां सत्य का बोलने का महत्व ही नहीं रह गया। झूठ तो मतलब हमें लगता है कि कुछ ही परसेंट ऐसे होंगे जो थोड़ा बोलने में सत्य का प्रयोग करते हैं, झूठ से बचते हैं, नहीं लगभग लगभग झूठ तो चल पड़ा है, नहीं चल पड़ा है, झूठ तो बिल्कुल मतलब लगभग लगभग चल पड़ा है। हेलो हेलो, कहाँ हो, हम मिलना चाहते हैं, इस समय तो आगरे में है, अब इस समय तो नहीं, बगल वाली गली में खड़े तो ये मतलब झूठ तो एकदम ऐसे ही चल पड़ा है, और झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना कलयुग का देखो। और सत्य नहीं असत्य संपातक पुंजा, झूठ के बराबर पाप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं, सांच बराबर तप, और जाके हृदय साच ताके हृदय आप। तो भगवान सत्य पर, तो अब देखो कहां सत्य बोलना रह गया, अब ये तो पता ही नहीं चलता कि आदमी बोल रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, अपने लोग विश्वास मानना पड़ता है। लेकिन आपको सच्ची बतावे लगभग लगभग झूठ का प्रयोग हो रहा है, हर जगह झूठ का प्रयोग हो रहा है, असत्य का प्रयोग हो रहा है, सत्य मिलना बड़ा कठिन। तो युग धर्म का प्रभाव होता है। भगवान सच्चिदानंद है, सत्य नारायण है, उनको प्राप्ति करने के लिए सत्य आचरण, सत्य वचन, सत्य चिंतन, तब भगवान की प्राप्ति होती है। युग धर्म का तो प्रभाव होता है। पहले जब साधु महात्मा तपस्या करते थे तो अप्सराएं आती थी, बोले अमुक संत को अमुक अप्सरा आए, जैसे विश्वामित्र के लिए पास मेनका आई, किसी के पास उर्वशी आई, किसी का। कलयुग में तो नहीं सुन रहे, जरूरत है नहीं। युग धर्म का ऐसा प्रभाव हो गया है कि इतनी मलिन बुद्धि हो गई है कि उस कोटि की ऊंचाई पर पहुंच ही नहीं पा रहे जिस कोटि पर ऊंचाई पर पहुंचना है। तो उस कोटि की ऊंचाई पर वो प्रश्न आता है तो बहुत, बस ऐसे। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा रटो नाम जप करके, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। भगवान का नाम ही महामंगल में है जो कल्याण कर देगा, जो परम लाभ प्रदान कर देगा। बहुत विचित्र है कलयुग का, बहुत विचित्र स्वरूप है ये। तो भगवान की कृपा कहो कि नहीं, कलयुग ने ऐसा मिटिया मेट, मतलब हर, अब तुम्हें शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, शास्त्रों में विश्वास नहीं है, संतों पे श्रद्धा नहीं है, तो तुम्हें बचाएगा कौन, तुम्हें डांटेगा कौन, तुम्हें सुधारेगा कौन? संत वचन ही तो है, गुरु वचन ही तो है, शास्त्र वचन ही तो है जो हमें सुधार सकते हैं आध्यात्मिक। अब इन्हीं पर श्रद्धा नहीं। कलयुग का बड़ा विचित्र, ये तो कौन सी हवा चली है जो इतने, मतलब जन समुदाय, नव युवक जन भगवत मार्ग की तरफ, अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हम तो प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की बड़ी कृपा हम मानते हैं कि आज हमारा समाज जो है कदम बढ़ा रहा है। नहीं तो देखो 9-9 बजे उठने वाले और सुबह से भीड़ लगी रहती है, सब नौजवान, माता बहने सब, कम से कम सुबह उठना तो सीख गए। नहीं तो 9-9 बजे तक लोग सोते हैं, 10-10 बजे तक सोते हैं, 4 बजे ब्रह्म। अच्छा, जो जुड़ेगा उसकी दिनचर्या बनेगी, उसके गंदे आचरण छूटेंगे, वो आध्यात्मिक बनेगा, तो हमारा समाज सुधरेगा। ये तो कभी भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि हवा चली है, नहीं तो बहुत ही व्यसन में, छोटे छोटे बच्चे व्यसन में, व्यविचार में, गंदी आदतों में। कलयुग का प्रभाव देखो, जहां 13-14 वर्ष के बच्चे को संसारिकता का ज्ञान नहीं होता था, गांव में हमने देखा है, कोई गलत आचरण की भावना ही नहीं थी। आज 12 वर्ष का बच्चा यहीं बैठ करके बोल रहा था कि हमारे ऐसे ऐसे, मोबाइल ने ट्रेंड कर दिया सबको, गंदी बातों में ट्रेंड कर दिया, गंदे दृश्य देख देख कर गंदी भावनाएं बन गई। तो ये तो कहो भगवान की कृपा है कि संतों के वाक्यों पर श्रद्धा फिर प्रकट हो गई। ने एक बार बड़े स्तर से संत का जब वो गिरा था ना, तो लगा था मार दिया, माया ने मार दिया, एक ही बाण में करोड़ों अरबों को मार दिया, अरबों की श्रद्धा चौपट हो गई। अब संतों पर श्रद्धा ना रहे, शास्त्र में श्रद्धा ना रहे, तो बताओ फिर कैसे भगवत मार्ग चला जाए? भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग चलने के लिए तो यही बात है कि संतों पर श्रद्धा हो, शास्त्र पर श्रद्धा हो, तब जाके भगवान पर विश्वास हो। भगवान दिखाई तो देते नहीं, संतों के वाक्य और शास्त्र वाक्यों का आधार लेकर हम भगवत मार्ग में चलते हैं, क्योंकि ना भगवान को देखा है ना भगवान से मिले हैं। तो हम इन संतों और शास्त्रों के वाक्यों पर हम विश्वास करते हैं तो हम भगवान की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होते हैं, और भगवान की प्राप्ति के मार्ग में ही गलत आचरण छोड़े जा सकते हैं। संसार में तो मनोरंजन है, संसार में मनोरंजन है, आज इसके, आज ऐसे, आज वैसे, और जब अध्यात्म में चलोगे तो ये पाप है, तो आप डर गए, आप गंदे आचरण छोड़ दिए, अच्छे व्यक्ति बन गए। तो मनुष्य जीवन का लाभ अध्यात्म है, पर कलयुग का प्रभाव बहुत जोर से बढ़ रहा है और वो बढ़ता चला जाएगा। देखो, पहले कोई उत्सव होता था, जैसे गांव के उत्सव हैं, ब्याह हैं, कुछ भी, तो सबके पैर धोए जाते थे, पवित्र आसन पर बैठाल कर पवित्र पत्तल में, और फिर भोजन परोसा जाता था, और माताएं गान कर रही हैं और पंगत पा रहे। आज क्या है, आज भोजन की पद्धति क्या है? अच्छा, जो पार्टी है और देखो, अब वो शराब पिए उसी चम्मच से खा रहा है, उसी हाथ से खा रहा है, अब वो जा करके वहां उसी हाथ से, तो सब झूठा होता जा रहा है ना, बुद्धि अपवित्र, देखो कलयुग का प्रभाव कैसा, कैसे पवित्रता से भोजन लिपे पुते स्वच्छ जगह पर पवाया जाता था, हाथ पैर धुलवा करके और सब तिलक लगा कर कितनी आज पवित्रता कहाँ रह गई? अगर आज ऐसा करने लगे तो उपहास होगा, नहीं
4: गरीब समझते हैं।
3: हाँ ये तो वो पवित्र, तब पवित्र विचार होते थे, तब पवित्र विचार, अब तो बहुत ही समय गड़बड़ा गया। तो धीरे धीरे हमारी अधार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही, तो युग धर्म का प्रभाव है, आकाशवाणी और सब दिव्यता तो धीरे धीरे अंतर ध्यान होती चली जा रही। नाम जप लो, इसी से मंगल होगा।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
8: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
10: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
12: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
13: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
14: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
15: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707-06-575।
16: श्रोतागण सुप्रभात, प्रणाम। कैसन बानी रहुए सब, कैसन बारा उर स्वास्थ्य? अरे ठीके होई, काहे कि राउर स्वास्थ्य खातिर राउर दोस्त दीपाली रोज दुआ जे मांगेली, और ओकरा साथे साथे रोज घरेलू नुस्खा भी बतावेली, कार्यक्रम आपन देह आपन देखभाल में। ता आज भी हम लेके आ गइल बानी ऐसने कुछ नुस्खा, त चली अपना कार्यक्रम के शुरुआत करी हम। दोस्त लोग, जे में आज हम सबसे पहले बताएं सफेद जीरा के बारे में। जीरा के फल थायमोल के प्राप्त करे के एकमात्र साधन है। थायमोल के प्रयोग पेट के कीड़ा मारे और कई एंटीसेप्टिक दवा में कई जाला। थायमोल उत्तेजक होके के कारण स्त्राव के मात्रा बढ़ावे में सक्षम है। यही कारण एकर प्रयोग स्तन में दूध बढ़ावे, पेशाब के मात्रा बढ़ावे और पेट में एकत्र वायु समाप्त करे खातिर कही जाला। पेट के कार्य क्षमता बढ़ावे और ही सुधारेला, साथ ही रक्त स्त्राव के भी रोकेला। आयुर्वेद के मत अनुसार जीरा पाचक, हल्का रूखा चरपरा रोचक, भोजन पचावे वाला, भूख बढ़ावे वाला। वात कफ नाशक, वीर्यवर्धक, बलदायक, हृदय के दुर्बलता दूर करे वाला। गर्भाशय शोधक, आँख खातिर हितकारी, वायु से उत्पन्न विकार के शांत करे वाला। सर्दी दूर करे वाला और अतिसार के रोके वाला होला। ये अपना ठंडा तासीर के कारण पेट खातिर लाभकारी है, अतः गर्मी के दिन में एकर प्रयोग अमृत तुल्य मानल गेल बा। इसे कीटाणु के नाश होला और ज्वर में भी लाभ पहुँचेला। इसे पाचन संबंधी रोग में एक चम्मच जीरा के एक ग्लास पानी में उबाली और काढ़ा तैयार करी। फिर इमें एक चम्मच धनिया के पत्ता के रस मिला दी। अंत में एक चुटकी सेंधा या काला नमक डाल के भोजन के बाद सेवन करे से पित्त के अधिकता, सुस्ती, अपच, वायु, दस्त, भोजन आसानी से ना पचल, वायु जनित पेट दर्द में आराम मिलेला। अनिद्रा में एक चम्मच जीरा के धीमा आंच पर भून के बारीक चूर्ण बना ली और एकरा के एगो पाकल होकल केला के साथ मिला के रात के सूते से थोड़ा देर पहले सेवन करे से अनिद्रा रोग दूर होला और गहरी नींद आवेला। यदास्त के कमी और मंद बुद्धि में 3 ग्राम जीरा के बीज के चूर्ण 12 ग्राम शहद में मिला के रोजाना 2 से 3 बार सेवन करे से स्मरण शक्ति में सुधार होके के साथ मंद बुद्धि से भी निजात मिलेला। सुगम प्रसव और माँ के दूध में वृद्धि खातिर जीरा के बीज के काढ़ा बना के दूध और शहद में मिला के गर्भकाल के दौरान सेवन करते रहे से बच्चा के विकास सामान्य रूप से होला, प्रसव आसानी से होला और माता के दूध के मात्रा भी बढ़ जाला। बिच्छू काटे पर प्याज के रस में जीरा के बीज डाल के पेस्ट बनाई। अब बिच्छू द्वारा काटल होकल स्थान पर लगाई। इसे दंश के दर्द दूर हो

चम्मच जीरा, धनिया और सौंफ के एक ग्लास पानी में उबालें। आज जब पानी आधा रह जाए तो नीचे उतार के उसमें एक चम्मच देसी घी डाल के सुबह शाम कुछ दिन तक सेवन करते रहे से खूनी बवासीर में रक्त गिरल बंद हो जाए। शरीर के गर्मी और मुंह के छाला में जीरा और मिश्री के कूट के मुंह में रखी। आ थोड़ी देर मुंह में रखे के बाद एक रखे चबा के खा जाई। ऐसा दिन में 2 से 4 बार करी। इसे शरीर में व्याप्त गर्मी तो दूर हो ही, साथ ही मुंह के छाला भी ठीक हो जाई। प्रदर रोग में 5-5 ग्राम जीरा और मिश्री के चूर्ण के चावल के मांड में मिला के 3 सप्ताह तक सेवन करे से स्त्री के प्रदर रोग समाप्त हो जाए। पेट विकार रोग में पीसल भुनल जीरा और सूखा पुदीना के सम भाग लेके उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के छाछ या दही के साथ सेवन करे से पेट के अनेक विकार में लाभ मिली। भुनल जीरा सौंफ आधा भुनल और आधा कच्चा पुदीना सूखा और अजवाइन इस सब के बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना के नींबू के रस में घोंट कर सुखा ली। इसमें थोड़ा सा हींग और काला नमक डाल के चना के आकार की गोली बनाई। पेट दर्द, अफरा, वायु संचय जलन और पित्त आदि रोग में एकर 2 गोली गर्म पानी के साथ ली। जे पित्त प्रकृति के लोग बा वो लोग बिना हींग के सेवन करी ता लाभ मिली। दोस्त लोग ई तरह ला सफेद जीरा के कुछ घरेलू नुस्खा। अब हम बतावे जात बानी काला जीरा के बारे में। काला जीरा के बीज, पत्ता और जड़ गुद्दा की प्रकृति बढ़ावे तथा ग्रंथि के क्रियाशील करेला। इसे शरीर के रोग रहित करे वाला और प्रक्षालक मानल गई बा। काला जीरा के तेल के प्रयोग पेट में एकत्र वायु के निकालेला, शांत करे तथा पेट के ऐंठन दूर करे खातिर कइल जाला। एकर प्रयोग मिचली दूर करे में भी कइल जाला। पेट के रोग में काला जीरा के बीज पेट के अनेक रोग के ठीक करे के साथ ही पेट के अनेक प्रक्रिया के भी सबल बनावेला। पेट में वायु संचय और वायु के कारण दर्द के प्रभाव त इसे मिटेला ही, साथ ही दवा के कुप्रभाव भी दूर होला। फिर भी बीज के तुलना में एक उड़नशील तेल के अधिक प्रयोग कइल जाला। काला जीरा के बीज के 1 चम्मच मात्रा 1.5 लीटर पानी में उबाल के धीमा आंच पर 15 से 20 मिनट तक उबले दी। बाद में एक छान के 1 कप की मात्रा में गरम या सुसुम सेवन करी। इसे पेट में जमा वायु निकल जाई और दर्द में भी आराम मिली। बवासीर के मस्सा में यदि बवासीर के मस्सा फूल के अधिक उभर आयल होके तो काला जीरा पानी में उबाल के सेक करी। यदि प्रसूता स्त्री के दूध कम उतरत होके तो काला जीरा के पानी में पीस के 1-1 चम्मच के मात्रा में दिन में 2 से 3 बार पानी से सेवन करी। ऐसा करे से दूध की मात्रा बढ़ जाए। मुंह के दुर्गंध में काला जीरा के कुछ बीज मुंह में रख के धीरे धीरे चूसे से मुंह से आवे वाला दुर्गंध दूर हो जाए। फोड़ा होके पे काला जीरा के पानी में पीस के लगावे से फोड़ा बैठ जाए।

0: आपन दे आपन देखभाल अदी हमरा के यानी आपन दोस्त दीपाली के जाए के अनुमति फिर हुई हमार भेंट काल कुछ दूसर नुस्खा के साथ। नमस्कार
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87-894-18744।
6: ठक ठक।
7: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: चल यार रेस लगाते हैं।
1: रेस? अबे पहले ही पिए हुए, ऊपर से बाइक तेज चलाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, फिर तो वाट लग जाएगी यार हमारी।
0: चल फट्टू पुलिस, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है?
1: अबे तेरे पापा तो MLA है, तू निकल जाएगा, मेरा क्या?
0: कितना डरपोक है यार तू, तुझसे रेस करके भी मैं ही जीतूंगा।
1: अबे चल डरपोक किसको बोला, आ चल रेस लगाते, अब भी पता चल जाएगा। चल
2: ओए अनूप, तू ठीक तो है?
0: ए दिखता नहीं क्या तुझे, सीधा मेरे बाइक के सामने आ गया।
3: मैं तुम्हारे नहीं, तुम मेरे बाइक के सामने आ गए थे, मैं तो सही चला रहा था।
0: अबे ओ
2: अनूप क्या कर रहा है? सॉरी डूड, तुम ठीक तो हो ना?
3: हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम लोग पी के गाड़ी चला रहे थे क्या? अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो?
0: चल चल चल अपने बाप को मत सिखा, चल ज्यादा हीरो मत बन, लेक्चर मत दे हमको। और रोहन तू उसको सॉरी क्यों बोल रहा है, गलती उसकी है।
2: अरे यार अनूप तमाशा मत कर, इससे पहले कि पुलिस यहाँ पे आ जाए निकलते हैं यहाँ से।
0: आने दो पुलिस को, मैं डरता हूँ क्या, जानता नहीं मेरा बाप कौन है।
3: लो पुलिस तो आ गई।
4: क्या चल रहा है यहाँ, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो?
3: नहीं सर वो छोटा सा एक्सीडेंट।
0: उसे अरेस्ट करो इंस्पेक्टर, उसने आके मेरे बाइक को टक्कर मारा।
2: शट अप अनूप, चुप बैठ।
4: तुम लोग पी के गाड़ी चला रहे थे, सुनील सबको उठा के थाने ले चलो।
0: ए चल चल।
3: अरे पर इंस्पेक्टर मैं तो।
0: ओए छूना मत मुझे, तुझे पता है मेरा बाप कौन है?
4: थाने में जाकर पिछवाड़े पर चार डंडे पड़ेंगे ना, सब पता चल जाएगा। तुम लोगों का नाम क्या है, कहाँ से आए हो?
3: मैं नील हूँ।
2: सर मैं रोहन।
0: अनूप वर्मा हूँ मैं, MLA रोशन वर्मा का बेटा।
4: hey, मैंने पूछा है कि तेरे बाप का नाम, पी के गाड़ी चलाते हो और फिर हल्ला करते हो।
3: पर सर मैंने नहीं पी है, और इसने आके मेरी बाइक को मारा है, मैंने नहीं।
4: देख भाई कल CCTV फुटेज आएगा और तभी पता चलेगा कौन कितना पानी में। सुनील इनके डिटेल्स लो, सबको लॉकअप में डाल दे।
2: ये सब ना तेरी वजह से हुआ है अनूप, ना हम रेस लगाते और ना यहाँ होते। अब जब पापा को पता लगेगा ना तो मेरी तो पैंट बच जानी है।
0: मेरे पापा कल यूं आएंगे और यूं ले जाएंगे मुझे, देख लेना। चिल मैन, मैं पापा से कहकर तेरी भी बिल करवा दूंगा। एंड डूड कल रात के लिए सॉरी यार, मेरे पापा आ जाएं फिर तुम्हारी बाइक के डैमेजेस के लिए पे भी करवा देंगे वो।
3: जैसे ही फुटेज आएगी मैं तो निकल जाऊंगा, पर तुम पर ड्रंक ड्राइविंग का केस लगा है।
0: केस? मेरे पापा संभाल लेंगे वो सब।
2: अरे बेटा।
0: अरे पापा अच्छा हुआ आप आ गए, देखा बोला था ना पापा आप जल्दी चलते हैं यहाँ से। और पापा रोहन को छुड़ा दीजिए, उसके बाद इसकी बाइक का डैमेजेस भी पे कर दीजिएगा, इतना तो करेंगे ना मेरे लिए, आप उनसे इतना प्यार जो करते हैं।
2: बेटा पहले बताओ कि तुम ठीक तो हो?
0: हाँ पापा, ये सब छोड़ो, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो पहले, ये जगह बहुत इरिटेटिंग है, मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ, निकालो ना।
2: नहीं बेटा मैं तुम्हारी बेल नहीं कराऊंगा।
0: क्या?
2: मैं तुम्हें बहुत बिगाड़ चुका हूँ बेटा, और ये काम मुझे बहुत पहले करना चाहिए था।
0: पापा ये आप क्या कह रहे हो, आप अपने बेटे को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं अगर कुछ मनमानी करता हूँ तो इसलिए ना कि आप संभाल लोगे, क्या आप पर इतना भरोसा भी नहीं कर सकता मैं? क्या फायदा हुआ मेरा MLA रोशन वर्मा के बेटे होने का जब मुझे इस जेल के अंदर रहना पड़ रहा है?
2: तुम्हें तो जरा भी पछतावा तक नहीं है अपनी गलतियों का, मैं जा रहा हूं, और जब तक तुम्हें सच में अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी बेल कराऊंगा।
0: पापा क्या हो गया? पापा पापा!
2: अबे तेरे पापा तो चले गए यार, अब क्या होगा?
0: ऐसे कैसे चले गए, वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मेरा विश्वास तोड़ा उन्होंने।
3: तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ सिखाना चाहते हैं अनूप।
0: तुम जानते क्या हो, पापा की साइड क्यों ले रहे हो? मेरे पापा मुझे इस जेल में छोड़ के चले गए, आज से मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं, अब पापा नहीं तो शायद भगवान ही मेरी मदद करेंगे।
3: कभी कभी पनिशमेंट मिलने के बाद ही अपनी गलती समझ में आती है, और इस प्रोसेस के दौरान सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं।
0: ये किसकी बात कर रहे हो तुम?
3: तुम ऐसे नहीं समझोगे, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। एक स्टोरी है, शायद उसे सुनने के बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे पापा तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे।
0: सुनाओ।
3: शिवजी के गले में जो नाग रहता है उसका नाम जानते हो? वासुकी नाम है उसका, और वासुकी ही वो भक्त है जिसने शिवजी पर पूरा भरोसा किया, उसी की कहानी है। सुनना चाहोगे?
0: अब बोलो भी।
3: समुद्र मंथन की कहानी जानते हो?
1: हाँ वही ना, वो देव और असुर मिलके अमृत के लिए समुद्र मंथन करते हैं, वही ना?
3: हाँ, उसी समुद्र के मंथन के लिए देवों और असुरों को एक रस्सी की जरूरत थी। तब वो पहुंचे वासुकी यानी नागों के राजा के पास।
5: ये सारे देव असुर क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप सब नागलोक में एक साथ?
6: महाराज वासुकी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है।
5: इंद्रदेव, मैं तो केवल एक नाग हूं, भला मैं क्या सहायता कर सकता हूं आपकी, कहिए।
6: हे वासुकी, हमें अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा, किंतु मेरु पर्वत को मोड़ने के लिए एक शक्तिशाली रस्सी की आवश्यकता है, और आप नागों के महाराज हैं, आप ही हैं जो मेरु पर्वत को हर ओर से लपेटकर उसे मोड़ सकते हैं।
5: मैं ही कर सकता हूं? ठीक है फिर, यदि ऐसा है तो आपकी सहायता मैं अवश्य करूंगा।
3: और उसके बाद वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करके समुद्र मंथन शुरू किया गया। पर जब समुद्र से हलाहल जहर निकला तो शिवजी ने तो पी लिया, पर कुछ बूंदे समुद्र में गिर गई। फिर उन बूंदों को वासुकी और बाकी नाग पी गए।
7: वो देखिए, वासुकी गिर रहा है, लगता है हलाहल ने वासुकी पर भी असर कर दिया है।
6: वासुकी का पूरा शरीर घाव से भरा है। अरे अरे, वो तो ईश्वर के चरणों में गिर गया।
8: हे ईश्वर, इस समुद्र के मंथन से मेरा पूरा शरीर घायल हो गया है। उस विष को पीकर मैं अपनी सारी शक्तियां खो बैठा हूं। प्रभु, अपने आप पर मेरा कोई वश नहीं है। अब वो विष जो बरसों से मेरे अंदर था, वो भी उगल दिया है मैंने। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने कोई भूल कर दी है? ईश्वर बताइए, महादेव क्या भूल हुई है मुझसे? किस पाप का दंड मिल रहा है मुझे?
9: वासुकी, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। वो नाग ही थे जिन्होंने मेरी पूजा प्रारंभ की थी, परंतु एक भूल हुई है तुमसे।
8: बताइए महादेव, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं।
9: जब इंद्रदेव ने तुम्हें समुद्र मंथन के लिए चुना, तब तुम्हारे मन में गर्व की भावना पैदा हुई, उसी के कारण ये हुआ।
8: क्षमा करे महादेव, क्षमा कर दे मेरी भूल को। जाने अनजाने में मैंने ये क्या कर दिया? बताइए मुझे, मैं क्या कर सकता हूं अब? अपनी इस भूल का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूं मैं?
9: तुम्हारे शरीर के ये चोट ही तुम्हारे प्रायश्चित है वासुकी। चिंता मत करो, जब देव तुम्हें एक बार फिर समुद्र मंथन के लिए निमंत्रण करेंगे, तब उस कार्य को अवश्य पूरा करना और उस अमृत को पी लेना। उससे तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे।
8: क्या ये दंड नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। धन्य हो गया मैं ईश्वर, धन्य हो गया मैं। धन्यवाद मेरे ईश्वर।
3: जब वासुकी के घाव थोड़े भरने लगे, तो एक और बार समुद्र मंथन शुरू किया गया था, और जैसे कि शिवजी ने बोला था, उस मंथन से आए अमृत को पीकर वासुकी की शक्तियां भी वापस आ गई और वो अमर भी हो गया। तब वो शिवजी के पास पहुंचा।
8: महादेव की जय हो, महादेव की जय हो।
9: वासुकी, लगता है तुमने अमृत पी लिया है, अब तुम्हारे शरीर पर कोई भी घाव नहीं है।
8: जी महादेव, मैं आज आप ही के कारण जीवित हूं। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दे, मुझे अपने चरणों में ले ले ईश्वर।
9: वासुकी, तुम हमेशा से मेरे भक्त रहे हो, समुद्र मंथन में मेरे साथ तुमने भी हलाहल जैसे भयंकर विष को पिया और केवल मेरे कहने पर तुमने अमृत पाने तक कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा। चाहे जितनी भी कठिनाइयां आई हो, तुम मेरे चरणों में नहीं मेरे गले लग जाओ वासुकी।
10: कितना सुकून है आपके हृदय के पास ईश्वर, इस पूरे संसार में कहीं नहीं पा सकता हूं ऐसा सुकून। मन करता है कि जीवन भर ऐसे ही आपके निकट रहकर ये सुख पा सकूं।
9: तो ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो अवश्य पूरी हो सकती है।
10: सच महादेव?
9: हाँ, आज से तुम मेरे गणों में से एक हो। तुम सदा के लिए मेरे गले से लिपट कर मेरे साथ रहोगे और मेरी सहायता करोगे।
10: मैं धन्य हुआ महादेव, धन्य हुआ।
3: तो बस तब से वासुकी हमेशा शिवजी के गले पर लपेट कर रहता है। शिवजी के ये जानते हुए भी कि समुद्र मंथन की रस्सी बनना वासुकी के लिए एक दंड है, वो उसे रोकते नहीं है। पर उससे वासुकी शिवजी पर गुस्सा नहीं करते हैं, बल्कि वो उससे अपना सबक सीखते हैं और अपने किए पर पछतावा करते हैं। और यही नहीं, वो तो शिवजी को अपने दंड के लिए कृतज्ञता भी दिखाते हैं।
11: अनूप, हो सकता है कि तेरे पापा भी तुझे कुछ सिखाना चाहते हो।
3: बिल्कुल सही अनूप, तुम्हारे पापा सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम अपने गलतियों के लिए दंड भुगतो, ताकि आगे जाकर तुम ऐसी कोई गलतियां ना दोहराओ। तुम्हारे पापा हमेशा तुमसे प्यार करते हैं और वही प्यार है जिसकी वजह से आज वो तुम्हें बेल नहीं दिला रहे हैं।
12: तुम ठीक कह रहे हो यार। आई एम सॉरी रोहन, मेरी वजह से तुम भी यहाँ पे हो। आई एम सॉरी, तुम्हारा क्या नाम है?
3: नील नाम है मेरा।
12: सॉरी नील फॉर एवरीथिंग, और मुझे मेरी गलतियां रियलाइज कराने के लिए थैंक यू सो मच।
3: सॉरी मुझे नहीं, अपने पापा से कहना।
12: कहना तो है यार, पर वो चले गए।
3: मुझे नहीं लगता।
13: मिस्टर नील, सीसीटीवी फुटेज आ गया है, आपको इंस्पेक्टर सर ने बुलाया है।
3: तुम फिक्र मत करो अनूप,
4: सीसीटीवी फुटेज आ गए। वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट क्या करे, प्रोटोकॉल्स, यू नो।
14: आई एम सॉरी मिस्टर नील, मेरे बेटे की वजह से। खैर, आप कंप्लेंट डालना ही चाहते हैं तो।
3: नो अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं और मेरी नंदू बिल्कुल ठीक है।
14: नंदू?
3: ओ, मेरी बाइक।
14: अच्छा, एनीवेज सॉरी बेटा।
3: कोई बात नहीं अंकल, वैसे अनूप समझ रहा था कि आप उसे छोड़कर चले गए।
14: नहीं, मैं तो बस उसे उसके गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूं।
3: अंकल, मुझे लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
13: अनूप, रोहन, तुम दोनों को बेल मिल गया है, जाओ।
12: हमारी बेल किसने करवाई? पापा, आप? मुझे लगा कि आप चले गए।
14: तुझे जेल में छोड़कर कैसे चला जाता?
12: I'm sorry पापा, मैंने पी के गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट किया, और फिर आपको मेरे लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ा, और फिर मैं आप ही को कोसने लगा। I'm really sorry पापा।
14: It's okay बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू नील, तुमने मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाया।
3: मैंने कुछ नहीं किया अंकल, सब कुछ शिवजी ने किया है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ।
14: अरे कहाँ जा रहे हो?
3: वही शिवजी के धाम अमरनाथ।
12: हाँ सुना है, वहाँ के पहाड़ बहुत सुंदर है।
3: तो तुम भी आना कभी अपने पापा के साथ, हो सके तो मिलते हैं।
12: हम जरूर आएंगे।
3: हर हर महादेव।
9: मुनीर नियाजी साहब का यह ख्याल याद आता है, हमेशा देर कर देता हूं मैं, हर काम करने में जरूरी बात करनी हो या कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। हम अक्सर अपनी गलतियां मानने में देर कर देते हैं और फिर उन गलतियों को किसी अपने ने सुधारने की कोशिश की तो हम उसे दुश्मन समझ लेते हैं। कमाल है, वो हमारे दुश्मन नहीं है भिड़ू, बचपन में कभी माँ के हाथ का खाया कि नहीं? गलती पर अच्छे के लिए मारे ना उसने, कुछ सीखा ना। भिड़ू इंसान है, मैं जानता हूं गलतियां होती है, गलतियों को मानना और सुधरने की कोशिश करना
15: उसे इंसान कहते हैं। समझा भड़ू? शिव अपने भक्तों को हमेशा माफ कर देता है। शिव अपने भक्तों को हर हाल में अपना लेता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा
16: शिवा।
17: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
18: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
17: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
18: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
17: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
19: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
20: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
19: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
20: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
19: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
20: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
21: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
22: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
21: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
22: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902। ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर

0: जाना। अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। स्वतंत्रता दिवस पर शान से फहराया गया तिरंगा, मुख्य समारोह में जिलाधिकारी ने ली परेड की सलामी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी पुलिस लाइन में फहराया तिरंगा। दुष्कर्म के मामले में एक नाबालिग सहित 2 को पुलिस ने पकड़ा। चोरी कांड में 4 आरोपियों को हुई सजा। और देवापुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोग घायल, पति पत्नी की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से।
4: आज मिंज स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया था। समारोह में जिलाधिकारी समीर सौरभ ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया तथा जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों एवं महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि आज का दिन हमें उन वीर सपूतों के त्याग, बलिदान और संघर्ष का स्मरण कराता है, जिनके प्रयासों से देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि देश और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में गोपालगंज के पिछले वर्षों में हुए विकास कार्यों और विभिन्न विभागों के उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। इस दौरान मिंज स्टेडियम के ऐतिहासिक मंच से अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा,
5: क्योंकि सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमें 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिली और फिर प्रतिवर्ष 15 अगस्त को जश्न आजादी मनाने का सिलसिला चल पड़ा। आजादी के साथ ही भारतवर्ष प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा एवं दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छूने को तत्पर है। हमारे लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है कि गोपालगंज जिला में विगत वर्षों में चहुमुखी विकास हुआ है तथा इस जिला ने भी प्रगति के पथ पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मद्य निषेध अधिनियम दिनांक 1/4/2016 से लागू है। अपने जिले में अवैध शराब के कारोबारियों के विरुद्ध अब तक कुल 87 वादों में 123 अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी है। जलालपुर स्थित बलथरी चेक पोस्ट एवं गोपालगंज के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई स्थायी अस्थायी बैरियरों पर भी वाहनों की जांच निरंतर की जाती है। अब तक कुल 84,962 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है एवं अवैध शराब लाए जाने के क्रम में 12,693 वाहनों को जब्त भी किया गया है। इसके साथ ही 7,293 वाहनों की नीलामी भी की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक अपने जिले में प्राकृतिक गैर प्राकृतिक आपदाओं से मृत 15 मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की दर से कुल 60 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। आपदा में ही हमारे जिले में बाढ़ एक चुनौती के रूप में हमेशा सामने रहा है। हम लोग तटबंध एवं संवेदनशील स्थलों की सतत निगरानी एवं चौकसी बरतते हैं। वर्तमान में जिले में बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह कटिबद्ध हैं। बाढ़ से निपटान हेतु जिले में कुल अभी 41 सरकारी नाव, 67 निजी नाव एवं 16 इन्फ्लेटेबल मोटर बोट उपलब्ध है। विभिन्न अंचल एवं जिला मुख्यालय में कुल 46,110 पॉलिथीन सीट्स आज की तिथि में उपलब्ध है। DRDA के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें विगत 6 वर्षों का अगर आंकड़ा देखें तो 3,178 लक्ष्य था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत था, उसके विरुद्ध 2,993 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है। जल जीवन हरियाली अंतर्गत 284 सार्वजनिक कुओं और 735 तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। साथ ही 1,254 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार भी कराया गया है। 116 सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड और ऊर्जा संयंत्र का अधिष्ठापन कराते हुए क्रियाशील भी कराया गया है। हम परिवहन विभाग की बात करें तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 191 सामान्य वर्ग के महिलाओं एवं पुरुषों तथा 11 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिलाओं एवं पुरुषों को लाभ दिया गया है। परिवहन विभाग के अंतर्गत हिट एंड रन के 225 मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की दर से भुगतान भी किया गया है। विकसित भारत के 7 निश्चय में प्रथम निश्चय आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत कुल 64,823 आवेदक कुशल युवा प्रोग्राम के अंतर्गत प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 8,490 आवेदकों के बीच अपने जिले में 203 करोड़ रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है। अगर हम समाज कल्याण विभाग की बात करें तो उसके तहत अपने जिले में कुल 2,77,963 लाभार्थी हैं, जिनको प्रति माह 1,100 रुपए की दर से जो पेंशन की राशि उनमें वितरित की जाती है। और संबल योजना अंतर्गत 908 लाभार्थियों के बीच इलेक्ट्रिक बैटरी चलित ट्राईसाइकिल का भी वितरण किया जा चुका है। पंचायती राज विभाग अंतर्गत कुल 33,170 जो लक्ष्य है सोलर स्ट्रीट लाइट का, उसके विरुद्ध अब तक 32,600 मतलब 98% सोलर लाइट स्थापित किया जा चुका है। और शेष कार्य भी प्रगति पर है। जो हमारे गोपालगंज जिले में 230 ग्राम पंचायत है, उसमें 98 ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा चुका है। अभी हम लोग 12,484 नया कार्ड बनाने का लक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने ज्यादा 18,747 आवेदन पर कार्रवाई की है और ज्यादातर में राशन कार्ड बना है। सहकारिता विभाग की बात करें तो कुल 11,358 किसानों का निबंधन कराया जा चुका है और उसमें 8,962 किसानों को सत्यापन उपरांत विभाग द्वारा भुगतान भी किया जा चुका है। अगर हम योजना विकास की बात करें तो जो सांसद मत है एवं राज्यसभा सांसद महोदय के मध्य से कुल 121 योजनाओं के विरुद्ध 11 करोड़ 36 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य कराया गया है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत कुल 1592 योजनाओं के विरुद्ध 104 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए पूरे जिले में कार्य कराया जा रहा है।
6: इसके बाद गोपालगंज के समाहरणालय परिसर में भी जिलाधिकारी ने झंडा फहराया, फिर अनुमंडल कार्यालय, उसके बाद नगर थाना और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय पर भी झंडा फहराया गया। इसके बाद जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी पुलिस लाइन में पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने झंडा फहराया। इससे पहले पुलिस अधीक्षक ने परेड की सलामी ली और तिरंगा झंडा को फहराते हुए उसे नमन किया और इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने गोपालगंज पुलिस के द्वारा किए जा रहे कार्यों के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों का उत्साह वर्धन किया और जिन पुलिस कर्मियों ने बेहतर सेवा प्रदान की है उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया। इस दौरान पुलिस लाइन के मंच से पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने गोपालगंज वासियों को संबोधित करते हुए कहा,
7: छाव में खड़े हैं तो यह दिन मात्र पन्नों पर दर्ज एक तारीख का उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण। हमारा राष्ट्र कोई कागजी नक्शा या पत्थरों की एक इमारत नहीं, राष्ट्र हमारी सांसों का ही विस्तार है। जब हम अपनी इस भारत भूमि के अंश नारायणी के पावन तट और थावे वाली माँ की इस पवित्र धरा पर तिरंगा को फहराते हुए देखते हैं तो अनायास ही हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के वे दिव्य स्वर हमारी नसों में बिजली की तरह दौड़ने लगते हैं।

0: आज आने वाले हर पीड़ित को सम्मान कैसे देना चाहिए और कैसे पूरी सहृदयता से उनसे पेश आना चाहिए। पेशेवर अपराधों और जघन्य मामलों में हमारी टीमें लगातार जुटी हैं। हम शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग पर जोर देते हैं।
1: मुचका गांव थाना की पुलिस ने दुष्कर्म के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। कांड की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम के साथ मिलकर आवश्यक साक्ष्यों का जांच पड़ताल किया गया, एकत्रित किया गया और इसके कांड दर्ज करते हुए मुचका गांव पुलिस ने साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर इस कांड के आरोपी दीपक कुमार राम को गिरफ्तार किया, जो उचका गांव थाना क्षेत्र के तुलसिया के राजेंद्र चौधरी का पुत्र बताया जा रहा है। इसके साथ एक विधि विरुद्ध बालक को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है। अब इन दोनों आरोपियों पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने चोरी के एक मामले में चार आरोपियों को सजा सुनाया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने चार आरोपियों को चोरी के मामले में दोषी पाते हुए इन्हें सजा सुनाया। कांड के प्राथमिकी आरोपी भोला सिंह, गौतम सिंह, रामजी सिंह, ये तीनों अचरज सिंह के पुत्र हैं और पारस सिंह, ये स्वर्गीय जमुना सिंह के पुत्र हैं। ये सभी बलभद्रपट्टी थाना उचका गांव के निवासी हैं। इन पर एक चोरी का मामला दर्ज था और इसी मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चारों अभियुक्तों को ₹1,000 का अर्थ दंड लगाते हुए सजा सुनाया, जिसके बाद अब इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरौली थाना क्षेत्र के देवापुर मिर्जापुर ओवर ब्रिज के पास NH-27 पर एक भीषण और हृदय विदारक सड़क हादसा हो गया, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई और इसी परिवार के बेटा बहू सहित 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ट्रक ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई और घटना में सवार 5 अन्य लोग जख्मी हैं। ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मृतकों में सिवान जिले के गोरिया कोठी गांव निवासी राजेंद्र मुसहर उम्र 55 वर्ष और उनकी पत्नी सोना देवी उम्र 42 वर्ष बताया जा रहा है। ये दंपति अपने बेटे और बहू के साथ गोपालगंज के जादोपुर थाना क्षेत्र के बाबू बिशुनपुर गांव में अपने संधी के निधन की सूचना मिलने पर शोक व्यक्त करने और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गोरिया कोठी से आए थे। शोक संतप्त परिवार को संतावना देने के बाद सभी लोग ऑटो में सवार होकर गोरिया कोठी के लिए निकल पड़े। इसी बीच बरौली देवापुर के पास जैसे ही इनकी ऑटो गाड़ी पहुंची थी, एक अनियंत्रित ट्रक ने इनकी ऑटो को जोरदार टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें सवार पति पत्नी की मौके पर मौत हो गई। बेटे, बहू, पोता, पोती समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद सभी लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां राजेंद्र मुसहर और उनकी पत्नी सोना देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। आज दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद इनके परिजनों को सौंपा गया है और फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। आज रेडियो रिमझिम के कार्यालय पर भी तिरंगा झंडा फहराया गया। इस दौरान रेडियो रिमझिम के तमाम श्रोतागण मौजूद थे। रेडियो रिमझिम के कार्यालय पर FSL के जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार राय ने झंडा फहराकर गोपालगंज वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।
2: आज गोपालगंज के हजियापुर NH-27 पर स्थित जदयू पार्टी के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने राष्ट्र ध्वज को फहराया तथा तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के बीच तिरंगे की आन बान शान को नमन करते हुए सशक्त, शिक्षित और विकसित भारत के निर्माण के साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और नशा मुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया। इस दौरान पार्टी के भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
1: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस पर शान से फहराया गया तिरंगा। मुख्य समारोह में जिलाधिकारी ने ली परेड की सलामी। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी पुलिस लाइन में फहराया तिरंगा। दुष्कर्म के मामले में एक नाबालिग सहित दो को पुलिस ने पकड़ा।
3: चोरी कांड में चार

0: आरोपियों को हुई सजा और देवापुर में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 5 लोग घायल, पति पत्नी की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रुपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
6: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8869 73।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
3: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रुपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
7: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
7: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
7: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
7: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम, हर

0: लोगों
1: न्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के

0: मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरानी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग किया।

0: अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9106264498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।

0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा, मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
6: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
9: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
10: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
11: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
11: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: तंदूरी कुचा।
1: नहीं
2: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूचा मत, मैं मर जाऊंगा।
3: साले डर गया, ट्यूबलाइट
2: गिर गया। साले इतने हंसे, तू कुछ गया?
3: अब पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
2: क्यों?
3: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
2: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद मेरे

0: सब ठीक चल रहा था, या हम ऐसा सोचते थे। उन पहाड़ों के पीछे कुछ ऐसे हादसे हो रहे थे जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939491551 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
1: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
1: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974-34468 पे।
6: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
11: Now pick your phone up. Hello? Pick it up. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
2: बस मैडम जी, आपका रेडियो रंजन सुन रहे हैं और बारिश चल रहा है हमारे यहाँ पर। आप यहाँ चल रहा है क्या? बरसात हो रही है हमारे यहाँ पर।
1: अच्छा, नहीं मेरे यहाँ तो अभी नहीं हो रही है, रात को हो रहा था।
2: अच्छा अच्छा, आना माना हो गया आपका?
1: हाँ, हम सबका हो गया। आपका हो गया?
2: जी हो गया हमारा भी।
1: चलिए तब तो बढ़िया है। तो आज बता दीजिए गाना कौन सा सुनिएगा।

0: हाँ मैडम जी, अल्ताफ राजा का है ये गाना है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।
1: और गाना सुनाना भी है
0: जी। सबसे पहले आपको और भारती मैम को, सोनी मैम को, आप कौन, मनोरमा जी है ना?
1: नहीं, मैं भारती बोल रही हूँ।
0: अच्छा अच्छा भारती जी, हाँ ये सब तीन ही मैडम को ये गाना डेडिकेट है। और गोपाल ओझा जी है, और गजराज सिंह लोधी है, और जितेंद्र धाकड़ जी है, इन सभी दोस्तों को गाना डेडिकेट है
1: जी। ओके, फिर रेडियो रंजन में कॉल किया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कब आएगा ये
1: आपको, कल या आज आएगा?
0: ठीक है,
1: ओके।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: लाल बाग
1: जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, अपना बताइए। 45 मिनट से मैं लगा था, छोटा वाला मोबाइल है, जब लगेगा तब मैं सोचा कि अब एक बार और लगा के देखना, लग गया 45 मिनट लगाया।
1: अच्छा,
0: इतना ना बिजी बता रहा।
1: एकदम फरमाइश आ रही है आज कल के लिए।
0: बहुत बहुत ज्यादा आता है, जिसका नंबर लग जाए
1: वही तो बात सही है। आपको कौन सा गाना सुनना है
0: आज? गाना नाम फिल्म का बता दीजिएगा
1: और गाने के बोल बता दीजिए।
0: नहीं तो ये तिरंगा फिल्म का गाना है, कुछ उड़ाने दीजिए। तिरंगा फिल्म में देशभक्ति गाना नहीं है?
1: हाँ है, कौन सा उसमें? तो मतलब
0: अरे वो लाइन याद नहीं आ रहा था। ये तिरंगा का
1: जो भी देशभक्ति सॉन्ग होगा मैं बजा दूंगी। ओके,
0: तो मैं वही गाना बजाइएगा जो कल जो बजेगा। मैं तो दो गाना और याद कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि ये क्रांति फिल्म का गाना है, एक कर्मा फिल्म का गाना है, जो भी लगे वो बजाइएगा। और वो चार पांच गुड़िया है, रूबी है, करीना है, दो और लड़की है, वो लोग बोल रहे थी सुबह में, तो देशभक्ति गाना बजवाइएगा। मैं बोला कि क्या लगेगा तो बजवा दे। चलिए
1: ओके, फिर गाना प्ले होते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।
0: ठीक है, कोशिश कीजिएगा शाम को तक बन जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198686973।
10: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
11: ओ माय गॉड आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
11: सॉरी यार कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
12: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
12: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
12: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं
16: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
18: अस्सलाम वालेकुम मैम।
17: वालेकुम अस्सलाम।
18: रश्मा बोलता नहीं, पठानपट्टी से।
17: कैसी हैं?
18: ठीक बानी, अपन बताई।
17: हमने भी ठीक बानी शाम।
18: नाश्ता सुबह का बनी मैडम?
17: हाँ, नाश्ता हो गई बाबे।
18: और समाचार?
17: और ही सब तो समाचार ठीक बाबे।
18: ठीक बा, सब कुछ ठीक बानो।
17: बताई कौन सा?
18: झूठ बोले कौवा काटे।
17: अच्छा,
18: गाना सुना दे।
17: गाना सुना हो बच्चे?
18: और सुन ले बा, कोई सुन
17: रेडियो। अच्छा जी, चले ठीक है। रेडियो में कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
19: झूठ

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4। हेलो,
1: सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: गाना सुन
0: जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: एमडी नूरजाल।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: पठानपुर।
0: अच्छा जी, और कौन सा गाना सुना?
1: भोजपुरी गाना सुना।
0: और भोजपुरी में कौन सा सॉन्ग?
1: पावर स्टार का। कौन सिंह
0: जी? और मतलब कौन सिंह का कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: नया और कोई बजा दीजिए।
0: अच्छा जी, जी जी,
1: व्यापार गाना।
0: गाना किसी को सुनाना भी है?
1: भाभी को सुनाना है
0: जी। चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिन 90.4 AMZ पर।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो,
10: अस्सलाम वालेकुम।
9: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: सर, कैसे हैं आप?
9: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
10: मैं ठीक है।
9: अभी तबीयत सही है?
10: हाँ ठीक है, खैरियत क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, जहाँ तक है वहाँ तो ठीक है।
9: अच्छा जी,
10: बारिश आपके यहाँ हो रहा है?
9: ना, बारिश नहीं हो रहा है,
10: गर्मी तो है।
9: गर्मी तो है,
10: ठीक, गर्मी तो यहाँ भी।
9: आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
10: हमको गाना सुना जान दीजिए, दिल कहे रुक जा रुक जा, तू यही पर कहीं, जो बात इस जगह वहीं पे नहीं, ठीक है।
9: और गाना सुनाना भी है?
10: गाना हम आप सुनिए और पूरे रिमझिम परिवार के लोग सुने।
9: जी
10: नाम भी बता दें, नाम भी पूछ रहे हैं,
9: बता भी देंगे तो कोई बात नहीं।
10: मोइनुद्दीन अहमद डुमरिया।
9: जी
10: ठीक है सर,
9: ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
10: कब सुनेंगे, कब आ जाएगा?
9: आज नहीं तो कल आ जाएगा।
10: ठीक है
9: जी,
10: ठीक है।

0: हेलो,
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: मैं अच्छी हूँ। नाश्ता उश्ता हो गया?
0: हाँ, नाश्ता हो गया है,
2: अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है।
0: आप सब बताइए।
2: है ना?
0: हाँ हाँ, हम सब बढ़िया है। आप सब बताइए, आपका नाश्ता हो गया, आप सब कैसे हैं?
2: हाँ हाँ, हो गया है ना। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा रेडियो रिमझिम सुनती हूँ।
0: जी, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।
2: वेलकम।
0: आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: आज मुझे गाना सुना दी सौगंध मूवी का है ना, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, ऐसा कोई सॉन्ग
0: है? है।
2: वही सुना दीजिए।
0: और गाना सुनाना भी चाहेंगी किसी को?
2: हाँ, सुनाना चाहेंगी ना। सबसे पहले तो आप सुनिए, सुनने वाले हैं तो सुनेंगे।
0: ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेमी 92.4 एफएम में। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है।
14: जिला भागलपुर से 1350 ग्राम बल्लो से बात कर रहे हैं।
13: जी जी, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
14: बॉर्डर फिल्म का।
13: और कौन सा उसमें का सॉन्ग?
14: संदेश से आते हैं।
13: और गाना सुनाना भी है?
14: अच्छा
13: जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रेमी 92.4 एफएम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू मैम। सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या हाल है मैम?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: बोल रहे थे गाना सुनना है।
1: अच्छा, और कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
0: है वतन तेरे लिए।
1: और गाना डेडिकेट भी है?
0: हाँ, पहले आपको है, उसके बाद है फिरोज आलम, जमशेद आलम, अरमान आलम, इरफान आलम, तैयबा खातून।
1: अच्छा, वैसे आप भी अपना नाम बता दें।
0: मेरा नाम शमशेर आलम है।
1: अच्छा जी, और कहाँ से हैं आप?
0: सासा मुसा कैथ फलिया।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम।
0: ठीक है।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो।
8: हाँ
7: नमस्कार मैम।
8: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
7: मैं सुधीरपुर बोल रहा हूँ, लिम्बा जिला देवघर झारखंड से। मैम
8: जी, क्या हाल चाल है आपका?
7: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
8: हम भी ठीक है
7: जी। 80वां स्वतंत्रता दिवस को आपको और रेडियो के पूरे टीम को बधाई मैम अग्रिम में।
8: जी जी, आपको भी।
7: जी जी, आज सुना दीजिए मैम भक्ति गीत। जी जी, देश प्रेमी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, नफरत की लाठी तो जान लालच के खंजर फेंको, मेरे देशवासियों आपस में प्रेम करो।
8: और गाना डेडिकेट भी है
7: जी। सबसे पहले मैं आपको रेडियो के पूरे लिसनर को, रेडियो के पूरे आपके आरजे जितने हैं सपोर्टर टीम को, और हमारे विद्यालय जो जितने भी स्टाफ हैं, गणित उच्च विद्यालय प्लस टू उच्च विद्यालय सिलगड़िया के जितने भी स्टाफ हैं, सबको सुनाना चाहता हूँ। और हमारे कुछ और दोस्त हैं, मदन कुल हैं, प्रभु कुल हैं, राजकुमारी हैं, कृष्णु कुल हैं, भोलाना कुल हैं, करण कुल हैं, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
8: जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
7: जी जी मैम।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: थैंक यू मैम। हेलो।
0: हाँ, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: हमारा भी ठीक है।
1: और सब खाना पानी हो गया है आपका? ठीक है।
0: आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: आज देशभक्ति गाना सुनवा दीजिए।
0: गाने के बोल बता दीजिए।
1: मैम मैं अपना नाम बता दे रही हूँ, मनीषा कुमारी। सुनवा दीजिए।
0: हाँ, गाना बता दीजिए कौन सा।
1: पगड़ी संभाल जगा, पगड़ी संभाल, करी जाना रे कि मरी जाना।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626।

0: 9647498 पे।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करे 87894 18744।
6: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो मैडम, नमस्कार।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: मैं मनन बोल रहा हूँ कपूरा।
5: जी कैसे हैं आप?
6: हम तो सही हैं, आप कैसी हैं?
5: हम भी अच्छे हैं।
6: अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। अच्छे होते तो घर पर नहीं होते।
5: अच्छा, नहीं मतलब अच्छे हैं, ठीक है, स्वस्थ है, तभी तो आ रहे हैं।
6: क्या मैडम, आप तो बहुत दिनों के बाद मिली है यार, तो आज कौन सा गाना सुनवाइएगा? हम ही आपसे पूछ रहे हैं।
5: अच्छा, तो
6: हमको सुनवाइए ना गाना। गाना मिलेगा का नहीं? ताड़ बने नौ से खजूर बने दुल्हन।
5: एक बार और बोलिएगा।
6: ताड़ बने नौ से खजूर बने दुल्हन।
5: ढूंढने पे तो मिल ही जाएगा।
6: नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा हिंदी गाना सुनवा दीजिएगा।
5: जी बिल्कुल, नहीं मिलेगा तो सच सुना दूंगा।
6: तो एक गाना था हमको, ऐसा गाना है या नहीं है मुझे पता भी नहीं है।
5: कहीं सुने हैं?
6: कभी सुने नहीं है, लेकिन अपने से सोच के मैं बता रहा हूँ ऐसा गाना होगा क्या नहीं।
5: अच्छा ठीक है,
6: जरा सर्च मारिएगा। तो आपके तौर में बहुत से गाने आते हैं ना, नहीं गाए हैं? लगता है कि आप कुछ नाश्ता उसका भी कर रहे हैं क्या?
5: नहीं
6: ऐसा ही लगता है। लोगों से बताते हैं कि यहाँ नाश्ता हो गया है, खाना पीना हो गया है, आप खुद ऑफ कर रहे हैं। चलिए तब मैडम वही गाना सुनवा दीजिएगा।
5: ठीक है,
6: सच मारिएगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो हिंदी गाना। ठीक है, नमस्कार।
5: नमस्कार, रेडियो रिंग से मैं कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: मैम गाना सुनना है।
0: नाम भी बता दीजिए।
1: हमारा नाम मौलादीन मियां है, मैं कैथोलिया के रहने वाला हूँ।
0: जी और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुनने के भाई कर्मा फिल्म के
0: गाने के बोल
1: दिल दिया है जान देंगे गाना नहीं है कर्मा फिल्म का, वही गाना सुनना है।
0: और गाना सुनाना भी है
1: जी, जमशेद आलम है, तैयबा खातून है, हसीना खातून है, शहनाज खातून है, इरफान अली, अरमान अली, ये सुना तब रेडियो रिंगिंग वो सबको सुनवा एक बार होगा कि सुनवा एक बार।
0: अच्छा जी
1: जी, कब सुना दें?
0: इधर हुआ काल ना तो आज सुने के मिल जाए।
1: अच्छा ठीक भाई, आज चाहे कल सुना दी। हमारे बहन साहब भाई बड़े फिरोज आलम वो सुनी हम।
0: अच्छा
1: की बोलते नहीं रुआ मुनर्मा जी
0: ना भारती।
1: अच्छा वहाँ का देखिए और कहा सोनी जी?
0: सोनी जी तो ना
1: साफ साफ में हो गए वहाँ के। ठीक बात, लाइन लगी रहोगे लगी।
0: चलिए ठीक बा,
1: ठीक बा मैडम, सुना दी गाना है।
0: रेडियो रूम से मैं कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: मैं बनूंगा,
11: मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
9: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।
12: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
13: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
14: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
13: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
15: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
16: Now pick it up, pick it up.
17: Hello.
16: Now pick your phone up.
17: Hello.
16: Pick it up, pick it up.
17: Hello.
16: Now pick your phone up.
17: Hello.
18: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
19: Break के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे?
6: अच्छा है,
4: क्या हो रहा है
6: अभी? अभी तो अच्छा, फोन लगा 12 बज रहे थे।
4: इतना टाइम लग गया?
6: बहुत टाइम, सब कॉल किया। और समाचार बताइए कैसे है?
4: और समाचार ठीक है, आप सब ठीक है ना?
6: जी हम लोग ठीक है।
4: तो आज बता दीजिए फरमाइश अपनी।
6: फरमाइश राष्ट्रीय गाना,
4: गाने के बोल,
6: गाने के बोल।
4: अच्छा, और सॉन्ग सुनाना भी है?
6: जी आपको जितना रेडियो आते हैं सब, जितना सोता दोस्त सुनते सबके साथ।
4: चलिए ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
6: जी मैडम, नमस्ते।

0: हेलो, सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू मैम। भारती मैम बोल रही हैं। एक बार तो पूरा कॉल रिंग होके कट गया मैम, ऐसा क्यों?
1: कुछ काम कर रहे थे।
0: क्या हाल चाल है मैम?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: हम लोग तो अच्छे हैं। आप अच्छी है ना?
1: हेलो,
0: योर वॉइस योर चॉइस चलेगा ना?
1: जी बिल्कुल चलेगा।
0: आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए। देखो दिन मूवी से जब ना माना दिल दीवाना कलम उठा के जाने जाने।
1: कौन सी मूवी है?
0: देखो दी।
1: अच्छा,
0: काजल का
1: गाना कौन सा बोले हैं?
0: जब ना माना दिल दीवाना कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा। सुनाना है सबसे पहले आपको, सोनी मैम को, कमरान रफीक को, राघव जी को, दिलीप भाई को, हरी को, असलम भाई को, किरण भाई को, और संसाद भाई को, बुखरा नंदी को, और जो भी रेडियो इंजिन जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए मैम, जुम्मा मुबारक मेरे तरफ से सभी को बोल दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: ओके मैम, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। रेडियो रिमझिम में कॉल किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: जी नमस्कार।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4 FM में।
8: जी मनोरमा जी,
9: नहीं भारती,
8: भारती जी बोल रहे हैं।
9: हाँ,
8: अमित शाह मास्टर,
9: ग्राम धनाव से।
8: जी क्या हाल चल रहा जी?
9: ठीक बार हुआ, बताए रहो कैसे बनी?
8: हम सिविल एग्जाम जुम्मे की तैयारी होते है, सर ये कॉल कर लिया।
9: अच्छा,
8: घर बहुत चली ना?
9: ना अभी कहाँ, अब ज्यादा नहीं शुरू करे।
8: क्या बनी है
9: ना, अभी एक और ही दो को कॉल ले मोकरा बाद से।
8: बात हम 1 घंटे बाद फिर जो जम जाए 1:30 बजे के बाद।
9: चलिए ठीक है बाबा।
8: और सब सब परिवार सब मौसम क्वेश्चन बनावा देने।
9: मौसम तो अभी मैंने ठीक ठाक बावे, न ज्यादा तेज धूप है न ज्यादा गर्मी बा।
8: हमें 2-3 बार बारिश आई लगी, जब तो गाना सुना दे
9: बता दी
8: बेताब मूवी के, जब हम

0: करेंगे। और सबसे पहले सुनवाई बरौआ के और रामा जी के और जितना रेडियो सुनने वाला बात सब कोई सुनी हमने के धनाव से सुनम जाए।
1: अच्छा जी चलिए ठीक बात फिर गाना प्ले करते नहीं सुनक रही रेडियो 90.4 FM।
0: ठीक है मैडम नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
0: में। मुरालम बात कर रहे हैं श्रीनगर कश्मीर से।
1: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: गाना सुनना है?
1: जी जी बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
0: खुशी का एल्बम का टाइटल सॉन्ग।
1: अच्छा जी, और सॉन्ग डेडिकेट भी है।
0: हाँ जी,
1: बता दीजिए।
0: जिसमें सुनने वाले हैं साथ और मलिजाजुद्दीन और ताहबुद्दीन मुरालम और मेरे दोस्त।
1: जी जी, और सब बताइए, और सब ठीक है घर में, सब कोई ठीक है?
0: हाँ जी, बस ठीक है। मेरा घर उधर ही है,
1: बरौली। आपका घर कहाँ है वैसे?
0: बरौली। बरौली।
1: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470 34468 पे।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे

0: भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
3: रेडियो रिमझिम।
2: सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: कसमानू खाने नच देने सारे
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंतोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग बांझपन ल्यूकोरिया दिमाग की कमजोरी याददाश्त की कमी पेट रोग गैस्ट्रिक लीवर में सूजन बवासीर कान रोग पुराना बुखार नस रोग किडनी की पथरी पीत की थैली में पथरी पेशाब की थैली में पथरी गठिया पुराना जोड़ों का दर्द साइटिका चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
6: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम
6: सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-349-45-651 या 97

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
8: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हो बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
11: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रेमजम,
12: सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: प्रसाद क्लिनिक,
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।

0: गुरु को बेटा आप तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
0: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा मैं भी बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।
6: नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
7: बोलबम हर

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
9: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
12: रेडियो रिमझिम,
11: सुनो दिल से।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
10: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
9: संपर्क करें 99393-65923।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
2: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम।
8: सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710 3992 या 9765065।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल। दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 18744।
6: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov

0: www.radio.in पर
1: हर घर सूर्य घर
2: तो रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम।
5: सुनो दिल।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रमझम।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-097-06-575।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
9: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
10: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
11: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
12: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
11: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
12: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
12: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सजा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
12: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम।
13: सुनो दिल।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9939365923।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
9: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

हेलो प्रणाम नमस्ते नमस्कार कैसन बानी रुआ सब उम्मीद करते नहीं रुआ सब ठीक हो गए हम ही रुआ सबके दोस्त भारती और रुआ सब सुनते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और ये समय हो गई बार रुआ सब के कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के तो ट्रेन निकल चुकल भी है और ये रुआ सभी अगर सवार होके के चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते नहीं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 92 91 और ये यदि कॉल के माध्यम से जुड़ते नहीं तो हमारा नंबर बा 72 77 16 65 96। तो बिना देरी के लिए कार्यक्रम के शुरू कर जाओ त्रुआ सब खातिर जब तक हमसे जुड़ते नहीं तो एगो प्यारा सा गाना प्ले कर देनी और गाने के बोल बा बलम जी तो सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

रोए सभी सुननी आलो अभी हमरा तरफ से खेसारी लाल के प्यारा सा सॉन्ग बलम जी आई लव यू और काजल रघवानी के तो चली लो एक साथ बढ़ल जाऊँ आगे। और ये हमारा पास यहाँ बहुत सारा गाने के फरमाइश पहुँच गई बा और लिखा जाने कि बिना देरी के लिए गाना प्ले करें कैंस कि हमारे पास टाइम नहीं कि अभी न्यूज़ प्ले करेक बा और बाद में सब क्योंकि मैसेज शामिल करें नहीं न्यूज़ के बाद। और लिखा तो नहीं है हेलो मैम सरफरोज अली अखिल टोला से गाना सुने के बाद दिल धड़का था केहू के प्यार में पवन सिंह के तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाओ एंजॉय कर जाओ रेडियो रंजन 90.4 FM में।

0: को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है, और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
4: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
5: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल

0: गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
1: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथा चमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
1: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने किझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
4: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंदुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
9: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।

छोटा सा ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद फिर से रोल अविन के स्वागत बा भोजपुरी एक्सप्रेस में। तो रउआ सब सुना तनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM और हमारा पास यहाँ बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा और लिखा तनी कि नमस्ते भारती जी, हमहू शो से जुड़ गई बानी और जलंधर पंजाब से गोविंदा कुमार जुड़ल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा रहो। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखा तनी मोतिहारी से, MD मीनिंग गाना सुने के बा सुना दी और गाने की बोल बा तो हर लहंगा उठा दम रिमोट से। तो जी मैं आपको ये गाना नहीं सुना सकती, इसके जगह आप कोई और गाना कोनो और ही गाना भेज दी तो जरूर सुना दे। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा लिखा तनी, हाय भारती जी, भोजपुरी एक्सप्रेस में आपके स्वागत बा, पवन शाह ग्राम मड़ैया खगड़िया बिहार से। और गाना के बोल पहुँचल बा लालटीन जला के खेसारी लाल के गाना, तो ये भी गाना हम प्ले नहीं की कर सकत, कोनो और गाना भेजेम तो जरूर प्ले कर देम। और एक साथ ही हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा तनी कि सुनी जी नमस्कार, हमरो गाना सुने के बाद लिंक भेज दिले बानी और सोनू भाई के, पंकज भाई के, राम कुमार पांडे जी, सागिर अंसारी, आज़ाद भाई, सन्यासी भाई, समीर भाई, अहमद भाई, अख्तीर भाई जी, कमरान भाई, सबीता जी, निशा जी, रोशनी जी, गुड़िया जी, अफसर भाई, शाहजहाँ जी, जावेद आलम, नागेंद्र जी, भारती जी, सभी सखी सहेली रेडियो रिमझिम सुनने वाले के गाना सुनाए बा। और दिलीप राम दिल्ली से तो बहुत बहुत स्वागत बा रहो। और यहाँ हमरा पास गाना के फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखा तनी कि भारती जी नमस्कार, हम सुबोध साहू बेगूसराय बिहार से, हमरो गाना सुने के बा और गाना के लिंक व्हाट्सएप पर भेज दिले बानी और सुना देम, धन्यवाद। और गाना के बोल बा, छोड़ के जेबे हमके जो बहरवा ए बलम जी। चलिए बिना देरी के लिए गाना यहाँ के प्ले कर जाओ, एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4।

अभी हमने के सुना त्रिन्यासन सुबोध साहू जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से गाना और गाने की बोल रहा है आपके छोड़ के जैबे जैबा ए बलम जी और एक साथ बढ़ल जी आगे और हमारा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत है कि गुड आफ्टरनून एवरीवन और मैसेज करे वाला बनी प्रमुख जी तो बहुत बहुत स्वागत बारू और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है कि हेलो शो में जुड़ गई बनी श्याम बहादुर देहरादून से और हमरो गाना सुने के बा और गाना सुना देम तो जी बिल्कुल रहो गाना सुनावल जी बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यहाँ मैसेज पहुँचल बा लिखत है भारती दी का हाल बा और गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़ल बनी और पवन सिंह की आवाज़ में गाना सुने के चाहता नहीं जी बिल्कुल रोगो गाना प्ले कर जाए लेकिन ओकरा पहले हमरा पास यहाँ फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखते नहीं हम दिल्ली प्राम दिल्ली से बोलते नहीं और यहाँ गाना के लिंक पहुँचल बा और गाना सुने के चाहते नहीं गाने के बोल बा निर्मोही सजनवा तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना का प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रंजन 90.4 FM में

अभी अपने सुनत रनिया सन दिलीप राम जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग गाना के बोल रहा है निर्मोही सजनवा। और एक के साथ बड़ल जी आगे और हमारा बस यहाँ काफ़ी सारा मैसेज पहुँच चुकल बा जे कि लिखत है कि भोजपुरिया प्रणाम भारती मैम, हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्जापुर मोहल्ली पंजाब से जुड़ल बानी और हमरो एगो गाना की फरमाइश बा और गाना जरूर बजा देम केहू के सुनाहूँ के बाद। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और वो गाना प्ले हुई पर ओकरा से पहले यहाँ बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा लेकिन लिखत है कि हाय भारती मैम हमरो एक गाना सुने के बा और गाना के बोल यहाँ पहुँचल बा मुंबई से MD सदाम जुड़ल बानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है कि सरफरोज अली अकील टोला से कि मैम हमर ये गलत बात बा पूरा गाना काहे ना बजैनी हाँ। तो जी सभी के गाना बाजत आवे पर रुआ तो जानते बानी 3 से 4 मिनट बजबे करला और यहाँ मैसेज पहुँचल बा कि

0: मोहम्मद निसार गाना सुने के चाहत नहीं और यहाँ की तरफ से वॉइस के मैसेज पहुँचल बता चली सुनल जाऊँ का भाई यहाँ के वॉइस और ही का है भाई यहाँ के फरमाइश।
1: हेलो मिस, कैसे हैं आप भारती जी? उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे। अच्छा, मेरी एक फरमाइश थी कि बातें ये कभी ना भूलना फिल्म गाना है जो मेरा बहुत फेवरेट गाना है और इसको मैं सुनाना चाहता हूँ मेरी प्यारी एक दोस्त है आयशा जी को, तो अगर आप बजा देंगी तो मजा आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: रुवा के हम बता दें कि मैं केवल भोजपुरी गाना के फरमाइश होला और भोजपुरी गाना हमने के सुनाए नहीं सन कि भोजपुरिया एक्सप्रेस है। तो रुवा को भोजपुरी गाना के फरमाइश करें तो जरूर और फरमाइश के शामिल कर लिया जाइए। एक बाद हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है कि नयम टेलर सूरापुर से जुड़ल बानी और गाना सुना दें भारती जी और गाना के बोल यहाँ पहुँचल बा जे कि लिखत है गाना के बोल बस बर्बादी हुई सॉन्ग। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाने के प्ले कर जाओ और एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हमने सुना त्रिनिया से नई एम जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत गाना शिल्पी राज के, और गाने के बोल रहा ला बर्बादी हुई, और यही के साथ ही बढ़ल जाइए आगे। और ये हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा, जे कि लिखा था नहीं कि हाय भारती मैम, हमहूँ जुड़ गई बानी और हमरो एगो गाना सुना दे। और लिखा था नहीं सोना लाल कुमार, अरे राज से जुड़ल बानी, बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा, जे कि लिखा था नहीं कि हम संजय यादव दुबई से जुड़ल बानी, हमरो एगो के गाना सुना दे। तो जी बिल्कुल रो गाना सुनावल जाइए, बहुत बहुत स्वागत बा रुआ भी। और मैसेज यहाँ पहुँचल बा हम काफ़ी हमरा के पेठा दन ने हरवा ए बलम जी, काफ़ी बेहतरीन गाना भारती मैम नमस्कार, हम नंद कुमार शर्मा सिगरौली मध्य प्रदेश से जुड़ल बानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा दिलीप राम जी के तरफ से, लिखा तनी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गाना बजाए खातिर। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा उत्तम सोनी जी के तरफ से, लिखा तनी कि हमहूँ आ गई नी, हमरो हाजिरी लगा दी, तो जुड़ल बानी हरपुर से। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ जन की हमरा पास फरमाइश पहुँचल बा, लिखा तनी कि लड्डू बाबू बहुत बहुत स्वागत बा रहो, और गाना सुने के चाहता नहीं रंगबाज राजा सॉन्ग खेसारी लाल के आवाज़ में। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
3: बोलबम, हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बार रहुआ सबके भोजपुरिया एक्सप्रेस में, और रहुआ सब सुना था नहीं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तब बिना देरी के लिए बढ़ल जाओ आगे, और यहाँ हमारे पास अभी भी काफ़ी सारा मैसेज पहुँचल बा, और जो कि लिखा था नहीं कि भारती जी नमस्कार का हाल बा, और भोजपुरिया एक्सप्रेस में हम जुड़ गए बानी रोहित देहरादून से, और गाना सुनने के बाद प्लीज़ गाना सुना दें। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखा था नहीं कि हाय भारती जी रोह के प्यार भरल नमस्कार बा, और का हाल बा आज हमरो गाना बजा दी। तो जी हमू ठीक बानी, रोह बताई रोह कैसन बानी, और मैसेज करे वाला बानी रेडियो फैन मोहम्मद इरफान फ्रॉम दुबई से, और लिखा तनी नमस्ते नमस्कार डियर भारती जी, गर्मी में मिजाज नीमन बानू, और लिख रहे हैं हम तो हमेशा मस्त और बिंदास हर पल झकास रही ले, और हमरो एगो गाना सुना एक बार प्लीज़ सुना दें, और लिखत है नहीं कि सब केहू से दिल के करार ना मिलेला, हर मौसम में बसंत बहार ना मिलेला, प्यार में तो लोग आपन दे देला लो, बाकी नफरत से तो सुई भी उधार ना मिलेला। बात तो बहुत ही बढ़िया बा, और बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि मैडम जी नमस्ते, रहीम आलम नरकटिया से, और सजाद आलम बेंगलोर से, और एमडी मीनू बेंगलोर से, फैशन टेलर नरकटिया बाजार से खेसारी लाल यादव के गाना सुने बा, और गाना सुना दें। तो जी बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और वो गाना प्ले हुई उससे पहले हमारे पास यहाँ गणेश कुमार जी के तरफ से फरमाइश पहुँचल बा जी की लिखा था नहीं पवन सिंह की आवाज़ में गाना बजा दें, और गाना के बोल बा अखिया में कौन जादू चुरा के रख ले बाड़ू, और बहुत ही खूबसूरत गाना

0: अभी हमने के सुना था नियासन गणेश जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग पवन सिंह की आवाज़ में, अखिया में कॉमन जादू, और बहुत ही खूबसूरत गाना चलत रहला। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा तनी थैंक्स मैम गणेश जी के गाना प्ले करे खातिर। और मनीष कुमार घर पिपरा से जुड़ल बानी तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ हमारा पास मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा तनी कि हेलो मैम नमस्ते, हम अंकित राय गोपालपुर से जुड़ल बानी और हमरों के एगो गाना सुना देम। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँचल बा, तो गाना प्ले हो ओकरा से पहले हमारा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा तनी कि भारती जी भोजपुरिया प्रणाम बा, धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से कैसन बानी, और लिखा तनी एक गाना सोनी जी भारती जी और मनोरमा जी के सुना एक बा। भारती जी एमे वॉइस मैसेज शामिल ना होला तो ये बात हमके ना पता रहला, लेकिन अब ना करेम कैसे कि मालूम पड़ गई, रहो बता देनी एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा तनी हमार मैसेज के अचरा में बांध ले ले बानी का नार, और मैसेज के आचरा में नहीं की बनले, और रौरो गाना प्ले करे जाता नहीं, और यहाँ गाना के बोल बा जिक्रे से लव कैलो। चलिए बिना देरी के लिए रौरो गाने के प्ले करते नहीं, एंजॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: प्यार प्यार लोग कहता प्यार परिवार से तो फिर

चलू अभी हमने के सुनिए सन धनेश कुमार जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से गाना और गाने की बोल रहा है जिक्रे से लव कैलू और एक साथे बढ़ल जी आगे और यहाँ हमारा पास मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखा जानी कि हमरो टिकट कन्फर्म कर दी और भारती मैम लिंक भेज दिले बानी तो जी रहो टिकट कन्फर्म हो उसके पहले बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और लिखा जानी कि हाय मैम हम गाना सुने के चाहत नहीं गाना के भेज दिले बानी तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और मैसेज करे वाला बानी मनीष पासवान और यहाँ हमारा पास मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि रउआ खातिर साझे के बिहान लिखा जाए रउआ खातिर साझे के बिहान लिखा जाए सब घर द्वार खेत खलिहान लिखा जाए मुस्कान के मुस्कुरा के एक बेर हमरा और तनी देखी ना रउआ नामे गजल का शायरी के खजाना लिखा जाए और बहुत ही खूबसूरत शायरी पहुँचल बा मोहम्मद इरफान जी की तरफ से और यहाँ हमारे साथ हमारा साथ जुड़ल वानी हेलो मैडम जी नमस्कार हमारे मनोज बैटरी समोसा वाले सुल्तानपुरी संगम नगर कोल्हापुर महाराष्ट्र की फरमाइश बा और गाना सुने के चाहत नहीं और लिखत नहीं कि सुनावे के चाहत नहीं अभय राज फिटर मेघनाथ ओम प्रकाश बिमलोटर सचिन मास्टर धर्मेंद्र कुशवाहा राजकुमार फिटर भोरी का हेल्पर और रेडियो रिमझिम के सुनाए के चाहत नहीं सभी दोस्त के तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि हमरो गाना प्ले कर दी और मैसेज करे वाला बानी दिलीप कुमार ठाकुर और गाने के बोल यहाँ पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि पगली के याद आवेला और बहुत ही खूबसूरत से गाना बताते चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में

तो अभी हमने के गाना सुनत रहनी आसन दिलीप कुमार ठाकुर जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और वहाँ के लिंक जो भेजले रहनी है डीजे वाला भेज दिल रहनी है और लिंक अगर भेज तो पाए लो तो वालो डीजे लिंक मत भेजी लो और यही से हम एमए के जौन ऑफिशियल सॉन्ग रहला वो बजा देनी है और एक साथ ही हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जैसे लिखा था नहीं हमारे भी टिकट ऑनलाइन कन्फर्म कर दी और हमरो गाना बजा दी और हमार गाना पोटली में बंद करके रख दिले बानी का और राही माला नरकटिया बाजार से जुड़ल बानी और तोहर दिल की गाना सुने के बाद तोहर दिल हक की चार्जर कतई लगा ले लूँ तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और आपके भी गाना प्ले हो उससे पहले हमारा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि

0: मनोज बैटरी समोसा वाले समस्तीपुर संगम कोलपुर से जुड़ल बानी और बहुत बहुत स्वागत बा आपका भी। और गाना सुने के चाहत है नहीं और गाना के बोल यहाँ पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि गाना के बोल बा जाता रह परदेश बुलमुआ जाता रह जा। और बहुत ही खूबसूरत गाना के फरमाइश पहुँचल बा बिना देरी कर यहाँ के गाना के प्ले कर और इन्जॉय कर रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। उससे पहले छोटा सा एक ब्रेक लेंगे फिर मिले नहीं रोवा से ब्रेक के बाद।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन MBBS MS एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे हर शुक्रवार को है फ्री OPD तो देर किस बात की आज ही संपर्क करें।
2: पता कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा क्या करूँ।
2: अब चिंता छोड़िए गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक जहाँ दांत जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत रूट कैनाल चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स BIS अप्रूव्ड शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने सिल्वर गोल्ड या डायमंड हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ विश्वास की परंपरा नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान चंद्र गोखो लोड गोपालगंज मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बरोगा सबके रेडियो रिमझिम 91.4 FM में। और बिना देरी के लिए बढ़ल जी आगे, और यहाँ हमारे पास मिर्चा की काफ़ी सारा मैसेज पहुँचल बा। लिखत है नहीं मैम हमरों के गाना सुना दें और खेसारी लाल की आवाज़ में, तो बिल्कुल रो गाना बाजी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है नहीं कि मुन्ना खान कुवैत से जुड़ल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और हेलो मैम कैसी हैं, कैसन बानी रहुआ। और विकास कुमार हरपुर से जुड़ल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है नहीं नमस्ते मैडम जी, और हमरो एगो गाना सुने एक बा पवन सिंह की आवाज़ में, और मैसेज करे वाला बानी विशाल कुमार सुकुलवा से जुड़ल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत है नहीं लिखत है नहीं कि बहुत हंसी आवत बा भारती जी का बात बा, और सोनी बहन और निशा भारती उज्ज्वलिया जी को बहुत मिस करत बानी, रेडियो पर नज़र नहीं की आवत लो, और तनी हमार खबर पहुंचा दें भारती जी की। इरफान दुबई से बहुत याद करत बानी दोनों जाने के, और भारती जी हमार टिकट कन्फर्म कर कबले हुई, और गर्मी काफ़ी बा और टिकट कन्फर्म कर दी। और गाना के बोले लिखत हन कि टंगा के जाए के पड़ी तो देहिया गथर गथर टूट जाए, बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैं मैसेज जो कि पहुँच रहा है जे कि गाना सुने के चाहत रहनी है परदेश बलमुआ जाता रहता जा परदेश बलमुआ, तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हमने के मनोज बैटरी के जी की तरफ से सुना त्रिनियासन बहुत ही खूबसूरत से गाना और लिखा था नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी गाना प्ले करे खाती। तो यहाँ हमारा पास मैसेज पहुँचल बा जे की लिखा था नहीं, मैडम जी नमस्कार, हमनियों के जुड़ गल बानी सन और कार्यक्रम सुना तनी सन, अच्छा लागत था और लिखा था नहीं कि हमरो एगो गीत के फरमाइश और पूरा कर दे। उमा शंकर सिंह और अवंतिका सिंह, अर्चिता सिंह रुद्रपुर से देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ल बानी लो, तो बहुत बहुत स्वागत बा आप सबके भी। और यहाँ हमारा पास मैसेज पहुँचल बा जे कि उत्तम सोनी जी के तरफ से मैसेज पहुँचल बा और गाना सुने के चाहता नहीं और गाना के बोल बिया बोलबा तनी देखल करी कम जी, और बहुत ही खूबसूरत गाने के फरमाइश पहुँचल बा। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और इन्जॉय कर जाओ सभी के साथ।

और यहाँ उत्तम सोनी जी की तरफ से मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत हैं थैंक यू सो मच मैम, ढेर सारा धन्यवाद जी मैम। और तो एंजॉय कीजिए अपने गाने।

और यहाँ उत्तम सोनी जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत गाना के फरमाइश चलत रहल और गाना के बोल हा तनी देखल करी हमरा के कम जी ना तो हो जाई प्यार ए बलम जी। और एक साथ ही यहाँ हमरा पास मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि जका सॉन्ग की प्रस्तुति हमार तरफ से पुरस्कार बा लेकिन सावन के बाद मिली अभी उधारी रही। और मैसेज करे वाला बानी रेडियो फैन मोहम्मद इरफान जी। और यहाँ हमरा पास मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं आर्यन कुमार सिवान जिला से जुड़ल बानी और गाना सुने के चाहतनी तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ हमरा पास मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं हाय मैम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और हमरो गाना सुने के बा मूवी दुल्हनिया से तो बिल्कुल रहो गाना प्ले हुई। और मैसेज करे वाला है वीरेंद्र कुमार बैगा से और बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि प्रमुख जी की तरफ से और गाना सुने के चाहता नहीं और यहाँ गाना के बोल पहुँचल बा और गाना के बोल बा तोहर अखिया के कजरा झगड़ा करा दे ले बा और बहुत ही खूबसूरत गाना के फरमाइश पहुँचल बा। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हमने के सुनत रहनी आसन प्रमुख जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से सॉन्ग और गाना के बोल रहा है, तो अंखिया के कजरा झगड़ा करा दे ले बा। और एक साथ ही बढ़ल जाइए आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचल बा जी की लिखते नहीं।

संग मैसेज करे वाला बानी। जेके लिखा था नहीं कि हमहू जुड़ गई बानी साउथ अफ्रीका से और हमहू गाना सुना था नहीं और पूछा था नहीं कैसन बानी रुआ और सोनू कुमार चौरसिया रामपुर खरैया कुचायकोट गोपालगंज से जुड़ल बानी और बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलता और हमरो हाजिरी लगा दी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यहाँ हमरा पास मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखत आनी कि भारती मैम हमरो एगो गाना सुने के बाद सुना देम और मुंबई से हम साथ जी जुड़ल बानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। ओकरा से पहले यहाँ हमरा पास मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखत आनी कि हेलो मैम नमस्ते, हम अंकित राय गोपालपुर से जुड़ल बानी और हमरो एगो गाना सुने के बाद प्लीज़ गाना बजा देम और यहाँ गाना के बोल पहुँचल बा जेकि गाना के बोल है कहीं कहाँ बाड़ी धनिया हमार और बहुत ही खूबसूरत गाना के फरमाइश बातें चली। बिना देरी के लिए यहाँ के गाना के प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बार हुआ सबके रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और बिना देरी के लिए बढ़ल जी आगे यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचल बा जे की लिखा था नहीं कि हाय दी, हम करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से का हाल बा दी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और हमरो हाल ठीक बार हुआ बताई रहुआ कैसन बानी। और लिखा था नहीं कि प्लीज़ हमरो गाना बजा दी और जरूर रहो गाना के फरमाइश पूरा कर जाइए। ओकरा से पहले हमारा पास मैसेज पहुँचल बा जे की लिखा था नहीं हाय मैम गुड आफ्टरनून बजाजी रोड लालगंज एमडी नौसाद और एमडी सदाम जुड़ल बानी और साथ में एमडी निसार और रिजवान अभिनंदन टेलर जी भी जुड़ल बानी और गाना सुने के चाहते नहीं और गाने के फरमाइश पहुँचल बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत नहीं कि अच्छा गाना बा।

यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखत आने कि हमार गाना कब चली तो राउर गाना अभी चली और गाना के बोल बा कहाँ गई लड़कैया हमार और मैसेज करे वाला बानी उमा शंकर जी उत्तराखंड से। तो चलिए बिना देरी के लिए रहुआ गाना के प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: और यहाँ हमरा पास उमा शंकर जी की तरफ से फीडबैक मैसेज पहुँचल बात है, चलिए सुनल जाऊँ काबा फीडबैक मैसेज।
1: मैडम आपने हमारा गीत सुना, आपको धन्यवाद। मेरा नाम

साथ बढ़ल जाइए आगे। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि मोतिहारी से MD भोजपुरी गाना सुने के बा और बहुत ही खूबसूरत गाने के फरमाइश पहुँचल बा। तो जी रहो गाना प्ले होई ओकरा से पहले हमरा पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि हाय ये छल कपट उतार के देखी, हया के छल कपट उतार के देखी, उम्मीद के दिया भीतर बार के देखी, रास्ता खुद चौंपा देही मंजिल तक, दोबारा खुद के संहार के तो देखी। और मैसेज करे वाला बानी इरशाद इरफान और यहाँ लिखत है नहीं कि भारती जी आपन टाइम कब आई, तो रो टिकट कन्फर्म हो गया बा। और लिखत है कि भारती जी तनी समय से प्ले कर देम, कहे से बहुत नींद आवत बा और आज छुट्टी रहल है तो कपड़ा लाता खूबे कचर कचर के धोले बानी, काफ़ी थकावट हो गई बा। और लिखत है कि मन करी तो GST भी काट ले, हमार गाना से एकदम फ्री बा। तो जी बिल्कुल वो तो होके ही के बा। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत गाने के फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि तनी जा ये बदरवा और पवन सिंह की आवाज़ में बा। और गाना के फरमाइश कैले बानी मोहम्मद इरफान जी। तो चलिए बिना देरी कैले यहाँ के गाना प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और बहुत ही खूबसूरत गाना चलत रहल है और तनी जा जाए बदरा और मैसेज करे गाना की फरमाइश करे वाला रनिया मोहम्मद इरफान जी और लिखा था नहीं कि तहे दिल से शुक्रिया डियर भारती जी और इतना सारा प्यार देने देवे खातिर दिल से धन्यवाद। तो मैसेज यहाँ पहुँचल बा जी की लिखा था नहीं कि हेलो नमस्कार मैडम जी कैसन बानी और हमरो हाजरी लगा दी हमहू जुड़ गेल बानी और मैसेज करे वाला बानी रंजीत कुमार लकड़ी दरगाह से। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और हमरो हाल ठीक बा रुआ सब बताई रुआ सब कैसे बानी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखा था नहीं कि विकास कुमार जी हरपुर से तनी हमरो गाना प्ले कर दी और गाना की यहाँ लिंक पहुँचल बा जे की गाना के बोल बा सैया पूरा कर अरमान हो। और पवन सिंह की आवाज़ में प्यारा सा सॉन्ग बात चली बिना देरी के लिए गाना प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बार हुआ सभी के भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और रउआ सब सुना तानी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी के आगे बढ़ल जाओ और हमरा पास यहाँ बहुत सारा फरमाइश पहुँचल बा।
1: देखिए लिखा था नहीं कि आपके सारे रोज सारा कार्यक्रम एक से बढ़कर हिट हो और ये और आवाज़ बहुत अच्छा बा और पता ना लागेला कब कार्यक्रम के टाइम ख़त्म हो गए। और लिखा था नहीं कि आप पहले एप्लीकेशन वाला मैसेज पढ़े नहीं ना, ऐसा बात कोनो नहीं है। और यहाँ मैसेज पहुँचल बात जे कि लिखा था नहीं कि हमार गनवा बाजी की ना जी, बिल्कुल बाजी। और यहाँ मैसेज पहुँचा था जी, लिखा था नहीं कि मैडम जी एक हमरो गाना बा और बजा देम और गाना के बोल यहाँ पहुँचल बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और आपके भी गाना प्ले हो और मैसेज करे वाला हैं रंजीत कुमार। और यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि नंद कुमार शर्मा सिगरौली मध्य प्रदेश से जुड़ल बानी और गाना सुने के चाहत नहीं, और बहुत ही खूबसूरत गाना के फरमाइश पहुँचल बा और गाना के बोल बा। मेहदी ले आए द पिया मोती झील से जाके साइकिल से ना, तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग बा। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी यहाँ नंद जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत गाने के फरमाइश चलत रहा और गाना के बोल रहा पिया मेहंदी ले आई मोती झील से जाके साइकिल से ना और ठीक है साथ बड़े जी आगे और ये हमारे पास मैसेज पहुँचल बा जी की लिखा था नहीं कि विजय कुमार कुशवाहा रसिया की सतारो शहर में से हूँ और आपका प्रोग्राम और प्रोग्राम प्रतिदिन सुने नहीं और बहुत अच्छा लागेला तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखा था नहीं कि लिखा था नहीं कि हेलो मैम आज बहुत दिन बाद आपके प्रोग्राम में शामिल भइल बानी और ये परिवार के साथ है जुड़ल बानी और गांव हवे सरफुरा वार्ड नंबर 5 से थाना बरौली डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज से जुड़ल बानी और ये लिखा था नहीं कि हरे राम शर्मा आज कल सवाल और भोला बाबा के गाना सुने के चाहते हैं तो ऐसे तो नहीं कि हो सकत कि मतलब भक्ति गाना बजाएं भक्ति गाना ताकि इमें ना बाजेला और वह अगर कोनो भोजपुरी गाना के फरमाइश करे के चाहते नहीं तो कर सकते नहीं और गाना प्ले हो जाए और एक ही साथ ही हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचल बाजे कि मनोरमा जी शामिल करें तो करी मनोरमा जी और मैसेज पहुँचल बा करिश्मा जी की तरफ से और लिखते नहीं कि हम की गाना सुने बा और रहे वाला हैं पिपरा नारायण से और लिखते नहीं कि गाना के बोल बावे पिया जी के मुस्की तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना के प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में बहुत ही खूबसूरत से गाना बा इन्जॉय करें सभी

और आर्यन जी की तरफ से मैसेज पहुँचल बा और बहुत ही खूबसूरत गाना के फरमाइश पहुँचल बा। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना के प्ले कर जाओ और गाना के बोल हवे जब साथ देवे के ना रहे त, और बहुत ही खूबसूरत से गाना बात। चलिए एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

और यहाँ आर्यन जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि ये मेरे दोस्त के लिए गाना था, थैंक यू प्ले करने के लिए, और दोस्त का नाम है प्रदीप कुमार। तो एंजॉय कीजिए आप दोनों अपने।

दीदी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश चलत रहा और गाने के साथ है बढ़ल जी आ गया और यहाँ मैसेज पढ़ल जो कि लिखा था नहीं कि पूरा मैसेज काहे ना पढ़नी है और फरमाइश भी गाना के भेजले रहनी है तो यहाँ मैसेज पहुँचल बा लिखा था नहीं कि का हम रेडियो रिमझिम परिवार के सदस्य ना हैं जी हमारा गाना शामिल नहीं की।

करत तो ऐसा कोनो बात नहीं कि हम लोग से पहले ही कहनी है कि दूसर गाना के फरमाइश कर दी और ये हम गाना प्ले नहीं कर सकत। और आप सभी से बार बार कहते नहीं कि गाना अच्छा सा भेजी ताकि हम प्ले कर सकी और हमारा प्ले करे में कोनो दिक्कत ना हो को। और एक साथ ही यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचल बा जैसे लिखा था नहीं कि हमरो गाना बजा दी। और मैसेज करे वाला बानी सुनील कुमार और गोपालगंज बिहार के रहे वाला हैं, उज्जैन से बोला था नहीं। और मैसेज यहाँ पहुँचल बा जैसे कि गाने के फरमाइश पहुँचल बा और बहुत ही खूबसूरत गाने के फरमाइश बा और लिखा था नहीं कि सेनुरा रंग। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाओ और एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और अभी बहुत ही खूबसूरत गाना के फरमाइश चलत रहल है पवन सिंह के आवाज़ में और गाना के बोल रहल है सिनू रागिनी और एक ही साथ बढ़ल जाइए आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है कि थैंक मैडम गाना प्ले करे खातिर और सुनील कुमार मैसेज कैले बानी और एक साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है जय भोलेनाथ केहू बुला के भुला जाला आपन अपने से दूर हो जाला कैसे बताएं रउआ के हम आपन ही घात कर जाला। और नमस्कार प्रणाम पत्थर लिखा था नहीं कि पत्थर दिल ना होला मोम पत्थर ना होला दिल दिले हा मन मंदिर ना होला। और मैसेज करे वाला बानी सावन शर्मा और लिखा था नहीं हमरो गाना बजा दें तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और आपके भी गाना बाजी। और उससे पहले हमारे पास यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बाजी की लिखा था नहीं कि भारती मैम हमरो एगो गाना सुने एक बा और गाना के बोल बा और मुंबई से एमडी सदाम जी जुड़ल बानी तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और यहाँ की तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचल बा। और गाना बाबे अचरे से बंधले दिल बंधले रहे दो और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँचल बा मनी मिराज के बाद। तो चलिए इंजॉय कर जाओ रेडियो रूम जिम 90.4 FM में।

टू। अभी मनी मिराज की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गाना चलत रहल और गाना के बोल रहल है कि ये धनी हो अचरे से बंधल दिल दिल बंधले रहे दा। और एक के साथ बढ़ल जी आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत नहीं कि सुपर सॉन्ग मनोरमा दी। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत नहीं कि शमशाद अली ग्राम खैर खाता उत्त

तनी की भारती जी राउर आवाज इतना अच्छा बा कि कुछ पूछी मत। अब प्रोग्राम पता ना कब खत्म हो जाला और राउर आवाज सुना तनी और लिखा तनी कि हमरो गाना बा

अखिलेश, हम अखिलेश बोला तानी और मैडम जी नवादा संग्रामपुर से रवि किशन के गाना सुने एक बार और गाना किशन फिल्म के गाना सुने एक बार और गाना के बोल यहाँ पहुँचल बा तोहर माथे के बिंदिया निंदिया चुरा के ले गए और बहुत ही खूबसूरत गाने के फरमाइश पहुँचल बा। तो चलिए बिना देरी के लिए गाना प्ले कर जाओ और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बा रउआ सभी के भोजपुरिया एक्सप्रेस में। और रउआ सब सुना तानी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तब बिना देरी के आगे बढ़ल जाओ और हमरा पास यहाँ बहुत सारा फरमाइश पहुँचल बा।
1: और यह मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखत नी जरूर बताई मनोरमा दी। बताई मनोरमा जी।
0: और यहाँ लिखत बानी गणेश जी की तरफ से मैसेज बा। और यहाँ के लिखत नी कि का हाल बा मनोरमा दीदी। तो बिल्कुल बढ़िया बा, अपन बताई रउआ सब कैसन बानी।
1: और एक साथ ही हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखत नी कि हेलो शुभम सिंह। और लिखत नहीं कि हमार भी मैसेज देख लें। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और आपके भी मैसेज शामिल कर गई है। और बहुत बहुत स्वागत बा फिर से आपके। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत है नहीं कि भारती जी आज कॉलिंग के फरमाइश बंद करके रख ले बानी का। तो बात ऐसन बा कि पता ना का है। कॉल नहीं लागत और फोन तो चालू ही बा पर आवत नहीं थे। आवत हुई पर कॉल लगा के ट्राई करनी असन चालू नहीं है। पता ना कहा है कि चेक करे पड़ी। और एक के साथ ही हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल रहा जी के लिखा था नहीं हेलो मैम, हम बबलू यादव जिला बांका बिहार से जुड़ल बानी। और हमरो एगो गाना सुनने के बाद खेसारी लाल की आवाज़ में। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और आपके भी गाना प्ले हुई। और यहाँ सन्यासी रंजन जी जुड़ चुकल बानी और लिखा था नहीं लिखा था नहीं भोजपुरिया प्रणाम बा, हमहू आ गई बानी, हमरो हाजिरी लगा दी लेकिन आज लेट बानी, लेट हो गई है। तो लेट हुई तो भेंट ना हुई, बात तो सही बा, टाइम पूरा होके वाला बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखा था नहीं कि हेलो भारती जी नमस्कार प्रणाम, हमार नाम खरैया एक्सप्रेस में हमर के फरमाइश बजा दी। और फिल्म रागनी चुनरिया तोहार नाम से कोनो गाना बजा दी। और सावन के सुनाए की चाहत आनी संदीप कुमार के, मिथिलेश कुमार महतो के, और निकेश कुमार महतो, सोना लाल महतो, और श्याम सुंदर महतो के, और दिनेश महतो के। भारती मैम हमरो गाना बजा दी। तो जी बिल्कुल रोगो गाना प्ले कर जाए। और इससे पहले हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचल बा जेकि लिखा था नहीं कि मैडम जी हमार सॉन्ग चलाए, हमार सॉन्ग चली कि ना। और ये मैडम जी मैसेज देखने में बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुँचल बा जेकि लिखा था नहीं कि संजय यादव दुबई से जुड़ल बानी और हमरो गाना बजा दी। तो चली बिना देरी के लिए रो गाना प्ले कर जाए। और यहाँ नील कमल जी के गाना पहुँचल बा और गाने के बोल बा बालों में गुलाब। तो बहुत ही खूबसूरत गाना बा। तो चली बिना देरी कर जाए प्ले कर जाए और इंजॉय कर जाए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

और यहाँ अभी फिर गाना चलत रहला बहुत ही खूबसूरत से और नील कमल जी के आवाज़ में और गाने की बोल रहला बालों में गुलाब लगा लीजिए और मैसेज करे वाला रनी है संजय यादव जी और यहाँ के तरफ से मैसेज पहुँच गए बात जी की लिखत रहनी थैंक यू मैम गाना प्ले करे खातिर और यहाँ मैसेज पहुँचल बात जी की लिखत रहनी कि मनोरमा दी और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है कि भारती जी एगो शायरी भेजले बानी सुना दे और लिखत है कि लोग मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं असल में तो ज़िंदगी परेशान करती है और बहुत ही खूबसूरत लाइन पहुँचल बा जे कि शमशाद जी अली जी की तरफ से पहुँचल बा और यहाँ की तरफ से गाने के भी फरमाइश पहुँचल बा गाना के बोल बा जाए ये बलम दिल तोहके बुलावता और बहुत ही खूबसूरत गाना के फरमाइश पहुँचल बा और गाने के पवन सिंह की आवाज़ में बा और चलिए रेडियो रिमझिम पे एंजॉय कर जाए ये खूबसूरत से गाना

और यहाँ पवन सिंह के आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग चलत रहला और गाना रहल हा जल्दी आ जाए बोलमुआ दिल तोहके बुलावता। और एक ही साथे बढ़ जाइए आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत है नहीं कि बिना बबलू यादव जुड़ल बानी और खेसारी लाल के आवाज़ में गाना सुने के चाहता नहीं और गाना के बोल बार डोली में गोली मार देम। और चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाओ ताकि समय भी कम बवे, तो चलिए इंजॉय कर जाओ रेडियो रिपोर्ट 91.4 FM में।

और एक साथ बढ़ल जी आ गया और यहाँ हमारा पास गाने के फरमाइश पहुँचल बा जैसे लिखा था नहीं कि हमरो गाना वहाँ प्ले कर दी और गाना के बोल हवे गाना मूवी नेम है रंगनी चुनरिया तोहर नाम के और बहुत ही खूबसूरत गाना के फरमाइश पहुँचल बातें चली बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाऊँ और इंजॉय कर जाओ रेडियो रमझम 90.4 FM में।

और अभी बहुत ही खूबसूरत गाना चलत रहल और एक के साथे बढ़ल जी आगे और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे लिखत नहीं प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता और ये प्रोग्राम हमारा साथे शहनवाज और आदिल राजा आकिफ राजा प्रोग्राम बहुत अच्छा लागल हम आज आजाद अंसारी ग्राम सुखदेव पट्टी से जुड़ल बानी तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और एक के साथे यहाँ हमारा पास बाय बाय के मैसेज सबके पास से पहुँच गई बा और यहाँ हमारा पास लास्ट फरमाइश पहुँचल बा जेकर गाना छूट गई बा ओकर फिर बाजी और यहाँ हमारा पास जन लास्ट फरमाइश पहुँचल बा लिखत है नहीं कि हेलो मैम किस कैसन बानी और हम शंभू सिंह इंडिया फैशन मार्ट तीन फेरिया बाजार कुशीनगर से जुड़ल बानी और यहाँ गाना के बोल पहुँचल बा लिखत नहीं बजाओ डीजे डांस करे नील कमल सिंह के गाना सुना दी और ये बहुत ही खूबसूरत गाना के फरमाइश बता चली बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाओ और यही के साथ शो के भी समाप्त कर जाओ।

पर यहाँ जाकर गाना के फरमाइश छूट गई बा, वहाँ के गाना फिर प्ले हुई, लेकिन अभी समय हो गई बा कार्यक्रम समाप्त करे के। तो श्रोता लोग अगर हमसे जुड़े के चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788191। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़े के चाहते हैं तो नंबर बा 7277165696। तो चलिए बिना देरी के लिए कार्यक्रम के समाप्त कर जाएं और रोबा सब एंजॉय करी प्यारा सा सॉन्ग नील कमल की आवाज़।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 अमरजैट पर।
5: ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-91 8029-94-91 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
1: वालेकुम सलाम, रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: नाम बता दीजिए।
2: इमरान अंसारी।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं इमरान जी?
2: भैरोपट्टी
1: जी। ये कहाँ पड़ता है?
2: सबे हवाई अड्डा के पास।
1: अच्छा, तो क्या करते हैं इमरान जी?
2: अभी पढ़ाई करते हैं।
1: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: अभी 4 क्लास में पढ़ते हैं।
1: अच्छा, तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
2: हाँ लिए है, तो आप नहीं थी, सर थे।
1: सर थे। ओके। हाँ तो इमरान जी, आप 4 क्लास में पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: एवीएम पब्लिक स्कूल।
1: ये कहाँ पढ़ता है?
2: ये बरका यहाँ पर।
1: जी, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम क्या? जैसे खत्म, पिता का नाम निकाल।
1: क्या करते हैं आपके पापा?
2: फार्मर है।
1: अच्छा, अच्छी बात है। और मम्मी?
2: मम्मी हाउस वाइफ।
1: और आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
2: अभी आगे चल के सोचेंगे, अभी नहीं सोचे।
1: अभी आप सोचे नहीं है आपको क्या बनना है आगे चल के?
2: नहीं।
1: ओके। आप कितने भाई बहन हो?
2: 3
1: भाई बहन हो। ओके, तो आप बड़े हो?
2: नहीं, आप सबसे छोटे हैं।
1: ओके इमरान जी, आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न। ओके, तो चलिए इमरान जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी सरदार पटेल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर ए
0: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफर्म है?
1: हाँ।
0: ओके, तो लॉक करें?
1: Yes.
0: तो चलिए इमरान जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके, तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22 और ऑप्शन सी है 24। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर सी
0: 24।
1: यस।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: इमरान जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए इमरान जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी।
1: मैम ऑप्शन नंबर बी।
0: कंफर्म है?
1: यस।
0: ओके, इमरान जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है अकबर और ऑप्शन सी है बाबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन नंबर ए।
0: ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: तो लॉक करें शाहजहां को?
1: यस मैम।
0: ओके, इमरान जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए शाहजहां को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। आपका पांचवा प्रश्न लिया जाए आपसे?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन नंबर बी।
0: ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी। लॉक करें?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए इमरान जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आज से आपका छठा प्रश्न ये है, महात्मा गांधी ने दंडीय मार्च किसके खिलाफ किया था? महात्मा गांधी ने दंडीय मार्च किसके खिलाफ किया था? ऑप्शन ए है कर कानून, ऑप्शन बी है शिक्षा कानून और ऑप्शन सी है अंग्रेजों का नमक कानून। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन नंबर सी
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक करें?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए इमरान जी आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आज से आपका सातवां प्रश्न ये है, अंजता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? अंजता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है मूर्तिकला, ऑप्शन बी है चित्रकला और ऑप्शन सी है संगीत। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन नंबर ए
0: मूर्तिकला।
1: यस मैम।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए इमरान जी आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए मूर्तिकला को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा चित्रकला। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे

0: के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी,
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707-06-575।
6: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921, 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
7: नमस्कार मिस।
6: नमस्कार, रेडियो रिंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बता दीजिए।
7: कुमार।
6: हाँ,
7: सुमन कुमार
6: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सुमन जी?
7: पिंडरा गांव से
6: जी। क्या करते हैं?
7: पढ़ते हैं।
6: किस क्लास में पढ़ते हैं?
7: ग्रेजुएशन चल रहा है।
6: ओके, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है, पढ़ के क्या करना है?
7: टीचिंग लाइन में जाना है।
6: तो तैयारी चल रही है उसकी?
7: नहीं, अभी ग्रेजुएशन चल रहा है।
6: चलिए, अच्छी बात है। तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
7: माता जी का नाम श्रीमती दिगंत देवी और पिताजी का नाम मिस्टर सुरेश
6: जी। आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
7: बिल्कुल।
6: तो सुमन जी, लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
7: यस।
6: ओके, तो सुमन जी, आपसे आज का आपका पहला प्रश्न ये है

0: पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका और ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ग्रेट ब्रिटेन को लॉक किया।
0: कंफर्म है
1: जी?
0: तो लॉक कर दूं?
1: यस
0: ओके।

0: तो चलिए सुमन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस।
0: ओके, तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, संत कबीर किस पे विश्वास रखते थे? संत कबीर किस पे विश्वास रखते थे? ऑप्शन ए जैन धर्म में, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म में, ऑप्शन सी एक ईश्वर में। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक ईश्वर में लॉक करिए।
0: कंफर्म है?
1: बिल्कुल।
0: ओके, तो चलिए सुमन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, सौंदर्य का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सौंदर्य का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान और ऑप्शन सी फिनलैंड। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जापान को लॉक करिए।
0: कन्फर्म है?
1: लॉक के सारे।
0: ओके, तो लॉक कर देना।
1: यस।
0: ओके, तो चलिए सुमन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर जापान बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस।
0: आपका चौथा प्रश्न आपसे ये है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी है रेन गोज और ऑप्शन सी है नेफोस्कोप। आपका समय शुरू होता है अब।
1: रेन गोज को लॉक करिए।
0: रेन गोज
1: जी।
0: कन्फर्म है?
1: लग के सारे।
0: ओके, तो चलिए सुमन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी रेन गोज को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा नेफोस्कोप, ना कि रेनगोज। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
1: धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, रेडियो के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
2: रंजन बोल रहे हैं से।
0: जी, क्या करते हैं रंजन जी?
2: पढ़ाई करते हैं
0: जी। किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: बीएड।
0: बीएड
2: और
0: बीएड फाइनल ईयर चल रहा है कि फर्स्ट ईयर है? अभी
2: सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। अभी
0: सेकेंड सेमेस्टर चलिए। तो बीएड करके क्या करना है? टीचर बनना है?
2: हाँ, टीचर गवर्नमेंट जॉब कोई।
0: बता दीजिए आप अपने मम्मी पापा का नाम।
2: टीचर के नाम इंदल यादव और मम्मी का नाम लाल।
0: आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
2: हाँ किए हैं।
0: विनर बने हैं कभी?
2: बहुत पहले बने हुए थे एक बार।
0: ओके, तो आज के लिए आप तैयार हैं आप पहले प्रश्न के लिए? ओके, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न। ओके, आज का आपका पहला प्रश्न ये है,

0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए है बंगला, ऑप्शन बी है तमिल और ऑप्शन सी है तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बंगला को फिक्स कीजिए।
0: कन्फर्म है?
1: कन्फर्म नहीं है।
0: ओके, लॉक कर दें?
1: कर दीजिए।
0: तो चलिए रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बंगला को लॉक करते हैं। और बता दें, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए।
2: अबलम सिद्दीकी पापा पाली से बोल रही हूँ।
0: क्या करती है?
2: जी मेरा इंटर फाइनल है अभी, मैं ब्यूटिशियन कर रही हूँ।
0: ओके, कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रही हैं?
2: ब्यूटिशियन कोर्स।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन कोर्स कर रही है ट्वेल्थ के बाद?
2: यस।
0: अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी है उसके बाद?
2: जी मैम।
0: ओके, तो आपके मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: नाम है अनवरा, मम्मी का नाम है हसन तारा खातून।
0: जी, और आप अपना नाम एक बार और बताइए।
2: शबनम सिद्दीकी।
0: जी, क्या करते हैं आपके मम्मी पापा?
2: जी मम्मी हाउस वाइफ है और पापा बाहर रहते हैं।
0: तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: किया जाए आपसे आज का आपका पहला प्रश्न?
2: यस मैम, कीजिए।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए कंधार, ऑप्शन बी फरगना और ऑप्शन सी तक्षशिला। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम फरगना का शासक था।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम, पढ़े हैं हिस्ट्री में।
0: ओके, तो लॉक कर देना।
1: यस मैम कीजिए।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी फरगना बिल्कुल सही उत्तर है। तो तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैम तैयार हूँ।
0: ओके, तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए
1: मैम शुक्र ग्रह को कहा जाता है।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम कंफर्म है एकदम 100%।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सही है। तो तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ तैयार हूँ।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी लखनऊ और ऑप्शन सी देहरादून। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना।
0: भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
1: ऑप्शन
0: ए भोपाल, ऑप्शन बी लखनऊ और ऑप्शन सी देहरादून।
1: मैम देहरादून।
0: कन्फर्म है?
1: नहीं फिर भी।
0: तो लॉक करें?
1: कीजिए।
0: ओके, तो चलिए शबनम जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी देहरादून को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ हाँ तैयार हूँ।
0: ओके, आपसे चौथा प्रश्न ये है, इनमें से कौन सीसा एवं जस्ते का मिश्रण धातु है? ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी कासा और ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर।
1: मैम ऑप्शन
0: ए है सोल्डर, ऑप्शन बी है कासा और ऑप्शन सी है जर्मन सिल्वर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन मैम बी।
0: हाँ
1: बी, ऑप्शन नंबर बी
0: कासा।
1: जी जी
0: कंफर्म है?
1: नहीं।
0: ओके, तो लॉक कर देना।
1: जी,
0: तो चलिए शबनम जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी कांसा को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा जर्मन सिल्वर। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल बिल्कुल माया क्लासिकल में पीडीएफ, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
11: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9939365923।
12: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
13: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
12: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921, 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: अस्सलाम वालेकुम मैम।
14: वालेकुम सलाम। रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: थैंक यू मैम।
14: नाम बता दीजिए।
0: मैम, मेरा नाम औरंगजेब अली है।
14: जी,
0: औरंगजेब अली।
14: औरंगजेब अली कहाँ से बात कर रहे हैं औरंगजेब जी?
0: पाखोपाली
14: जी। क्या करते हैं?
0: पढ़ाई करते हैं।
14: किस क्लास में पढ़ते हैं?
0: मैम 5।
14: ओके। इससे पहले भी आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
0: नहीं मैम, 2-3 महीना हो गया
14: कॉल किए।
0: हाँ
14: जी। तो आप विनर बने थे?
0: क्या मैम?
14: आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए थे तो विनर बने हैं?
0: नहीं मैम,
14: नहीं बने हैं। तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
0: यस मैम।
14: तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
0: यस मैम।
14: ओके औरंगजेब जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942 और ऑप्शन सी 1947। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन बी 1942।
0: कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक करो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1942 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, सिकंदर भारत किस वर्ष आया था? सिकंदर भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 100 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन सी 500 ईस्वी पूर्व। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन 326 ईस्वी पूर्व।
0: कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो लॉक करो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए औरंगजेब जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? ओके, आपका तीसरा प्रश्न आपसे है, सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? ऑप्शन ए नागरी, बी गुरुमुखी और सी ब्राह्मणी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ब्राह्मणी।
0: कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक करें?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए औरंगजेब जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं।
1: यस मैम।
0: और बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, तो आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन और ऑप्शन सी है अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी अमेरिका।
0: कन्फर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक करूं?
1: यस।
0: ओके, तो चलिए औरंगजेब जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर अमेरिका बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, वेद किस धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है? वेद किस धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म और ऑप्शन सी है इस्लाम धर्म। आपका समय शुरू होता है अब। हेलो।
1: हाँ मैम, ऑप्शन फिर से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है हिंदू धर्म और ऑप्शन सी है इस्लाम धर्म। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन बी हिंदू धर्म।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, औरंगजेब आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हिंदू धर्म को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठा प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन फिर से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1950 और सी है 26 नवंबर 1949।
1: 26 नवंबर 1949
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 बिल्कुल सही है। तैयार है आप सातवें प्रश्न के लिए? ओके, आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है द हिंद, द हिंद, ऑप्शन बी है समाचार दर्पण और ऑप्शन सी है बंगाल गजट। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी बंगाल गजट।
0: कंफर्म है? आपकी आवाज कट रही है।
1: यस मैम कंफर्म है। ऑप्शन सी बंगाल गजट।
0: लॉक करें?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए औरंगजेब जी आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप आठवें प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है। जुलाई 2025 में भारत का कौन सा मिशन चंद्रमा से जुड़ा है? जुलाई 2025 में भारत का कौन सा मिशन चंद्रमा से जुड़ा है? ऑप्शन ए है चंद्रयान 2, ऑप्शन बी है चंद्रयान 3 और ऑप्शन सी है चंद्रयान 4। आपका समय शुरू होता है अब। जुलाई 2025 में भारत का कौन सा मिशन चंद्रमा से जुड़ा है?
1: ऑप्शन बोलिएगा मैम।
0: ऑप्शन ए चंद्रयान 2, ऑप्शन बी है चंद्रयान 3 और ऑप्शन सी है चंद्रयान 4।
1: ऑप्शन चंद्रयान 4 को लॉक
0: कीजिए। कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, चलिए औरंगजेब जी आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप आठवें प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है। किस राज्य में जुलाई 2025 में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई? किस राज्य में जुलाई 2025 में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है अब। आप किसी से हेल्प ले रहे हैं? मुझे आवाज आ रही है।
1: मैम
0: आपके बगल से किसी की आवाज आ रही है।
1: हेलो। हेलो
0: जी बोलिए।
1: मैम ऑप्शन बोलने कुछ लेना दीजिए। ऑप्शन फिर से बोलिएगा। डाउट है कुछ?
0: क्या डाउट है? अभी तो इतनी साफ क्लियर आवाज गई है। आपके बगल में कोई है?
1: मैम बगल में तो नहीं, हम बाहर हैं इसलिए थोड़ा शोरगुल है।
0: शोरगुल उस तब से तो नहीं आ रही थी।

0: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
4: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92 899 22 567 या 97 714 86 164।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 91555485507 या 91629335388।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर

0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: अस्सलाम वालेकुम भाई।
2: वालेकुम सलाम। रेडियो रिंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बता दीजिए।
1: सानिया से बिक्की।
2: सानिया, कहाँ से बात कर रही हैं सानिया जी?
1: भारत।
2: जी, क्या करती हैं?
1: पढ़ती हूँ, सेवन पढ़ती हूँ।
2: किस क्लास में पढ़ती हैं?
1: मैं सेवन क्लास में पढ़ रही हूँ अभी।
2: सेवन में पढ़ती हैं अभी?
1: जी
2: जी। आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग ली हैं?
1: मैम हो गया, ढाई महीना पहले ली थी।
2: जी, विनर बनी है?
1: जी मैम, 9 प्रश्न का आंसर मेरा गलत हो गया, 8 प्रश्न को दे दिया अच्छे से।
2: अच्छा,
1: सेंसर ला रहे थे मैम, आप नहीं थी।
2: ओके ओके, कोई बात नहीं। तो आज के लिए आप तैयार हैं आज का पहले प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
2: तो लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
1: यस मैम, पूछिए।
2: ओके, तो चलिए सानिया जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है लखनऊ और ऑप्शन सी है देहरादून। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम देहरादून।
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: लॉक करें?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए सानिया जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी देहरादून को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके, तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है सानिया जी, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र और ऑप्शन सी बृहस्पति। आपका समय शुरू होता है अब।
1: शुक्र।
0: कंफर्म है?
1: नहीं, फिर भी कीजिए।
0: ओके, तो लॉक कर देना।
1: जी जी।
0: तो चलिए सानिया जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी शुक्र को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैम।
0: ओके, तो आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, सिकंदर भारत किस वर्ष आया था? सिकंदर भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 100 ईस्वी पूर्व और ऑप्शन सी 500 ईस्वी पूर्व। आपका समय शुरू।
1: ऑप्शन नंबर वन 326 ईस्वी पूर्व।
0: कन्फर्म है?
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए सानिया जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैम।
0: ओके, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी भूगोल और ऑप्शन सी खगोल और गणित। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी मैम, खगोल और गणित के विज्ञान थे।
0: ओके, लॉक करो।
1: हाँ मैम।
0: तो चलिए सानिया जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी खगोल और गणित को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैम।
0: ओके, तो आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए द हिंद, ऑप्शन बी बंगाल गजट और ऑप्शन सी समाचार दर्पण। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बंगाल गजट होगा शायद।
0: कंफर्म है?
1: नहीं, मैं सुनी हूँ शायद यही होगा।
0: द हिंद या फिर समाचार दर्पण नहीं हो सकता?
1: नहीं मैम, मैंने कहीं सुनी हूँ, मेरे को कंफर्म याद नहीं है। बंगाल गजट मैं सुनी हूँ।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो क्या लॉक करूँ?
1: अच्छा, पता नहीं सही होगा तो गलत होगा।
0: ओके, चलिए सानिया जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बंगाल गजट को लॉक करते हैं। और आपको बता दूं कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम। देखिए मैम, मैं सुनी थी, सही हो गया।
0: तो आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए,
1: आवाज कर रहा है प्लीज फिर से।
0: आपका छठा प्रश्न ये है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति, ऑप्शन बी इंद्रधनुष क्रांति, ऑप्शन सी रजत क्रांति। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर बी।
0: ऑप्शन बी।
1: मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाई।
0: ऑप्शन फिर से दो या क्वेश्चन फिर से बोलो?
1: मैम फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए प्लीज, मैं सुन नहीं पाई थी।
0: ओके, क्वेश्चन आपका ये है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है?
1: मैम रजत क्रांति।
0: ऑप्शन सी।
1: जी मैम जी।
0: कंफर्म है?
1: नहीं।
0: तो लॉक कर दो।
1: ऑप्शन क्या था?
0: ऑप्शन ए था सुनहरी क्रांति। क्या लॉक करूँ? कौन सा लॉक करूँ?
1: सुनहरी क्रांति। और तीन
0: सुनहरी, इंद्रधनुष और रजत। जल्दी बोलिए, आपका टाइम खत्म हो रहा है।
1: इंद्रधनुष कर दीजिए तब, सही हो या गलत हो।
0: जी आप कहीं सर्च कर रही हैं?
1: नहीं मैम, मेरे पास कोई है भी नहीं, मैं कहाँ से सर्च करूंगी।
0: ओके चलिए ठीक है, तो चलिए आपके छठे प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आप इतना बार क्वेश्चन और आंसर पूछ रही हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर आ रही है और आप बोल रही है मेरी आवाज कट रही है।
1: नहीं मैम, आपकी आवाज क्लियर आ रही थी, ऑप्शन दो बार आप बोली मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया।
0: अच्छा ठीक है, और आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इंद्रधनुष क्रांति को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है पेरू और ऑप्शन सी है कोलंबिया। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम पेरू होगा।
0: कंफर्म है?
1: यस पेरू देखते हैं। यस मैम कंफर्म है।
0: ओके तो लॉक करो।
1: जी मैम।
0: ओके तो आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पेरू को लॉक करते हैं। जी और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तो तैयार है आप आठवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ मैं तैयार हूँ।
0: ओके आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है, किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? ऑप्शन ए पक्षा मेघ, ऑप्शन बी कपासी मेघ और ऑप्शन सी अस्तरी मेघ। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए पक्षा मेघ, ऑप्शन बी कपासी मेघ और ऑप्शन सी अस्तरी मेघ।
1: ऑप्शन ऑप्शन बी मैम।
0: कपासी मेघ। कंफर्म है?
1: ऑप्शन कपासी मेघ सुनी थी शायद।
0: लॉक करूं?
1: मैम क्या बताएं, मेरे को याद नहीं आ रहा, सही होगा गलत होगा, आठ तरफ नहीं।
0: कुछ भी तो बताना पड़ेगा ना, आपका टाइम निकल रहा है, 10 सेकंड का टाइम होता है।
1: ऑप्शन एक बार और बस।
0: आपके पास में कौन है? आपके पास से किसी का आवाज आ रहा है?
1: मैम वो मेरा भतीजा है, मैं खेल रही हूँ तो वो सुन रहा है, यहीं पे है। मेरा छोटा है मैम, अभी वो 3 क्लास में पढ़ रहा है, मैं ही उसको यहाँ से पढ़ा रही थी।
0: आपको रूल पता है ना?
1: चीटिंग नहीं कर रहे हैं।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
11: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
12: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
11: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
12: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
13: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921, 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
14: हेलो
15: जी, रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है
14: जी।
15: नाम बता दीजिए।
14: रंजीत कुमार।
15: कहाँ से बात कर रहे हैं रंजीत जी?
14: नवादा
15: जी। क्या करते हैं आप?
14: मैं पढ़ते हैं।
15: किस क्लास में पढ़ते हैं?
14: अभी BSc कर रहे हैं
15: जी। तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
14: BR SI
15: जी। आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
14: जी
15: जी। विनर बने हैं?
14: 2-3 बार बने हैं।
15: चलिए अच्छी बात है। आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
14: मेरे पिता का नाम है श्री जग महतो और मेरी माता का नाम है श्रीमती इंदु देवी
15: जी। क्या करते हैं आपके मम्मी पापा?
14: ऐसे तो मेरे पिताजी घर और बनाते हैं, मेरी मम्मी घर पर रहती हैं।
15: मतलब राजमिस्त्री हैं
14: जी।
15: ये अच्छी बात है। तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
14: हाँ किए, 2-3 बार विनर बने हैं। आपसे भी बात हुआ था तो एक बार 9 नंबर सवाल पर चले गए थे, इधर कॉल नहीं कर रहे।
15: ओके, तो रंजीत जी आपसे लिया जाए आपका आज का पहला प्रश्न
14: जी।
15: तैयार है
14: जी?
15: ओके, तो रंजीत जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी और ऑप्शन सी ग्रीस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी को क्लिक कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: हेलो,
0: हाँ कंफर्म है।
1: ऑप्शन सी क्या है?
0: ग्रीस।
1: ऑप्शन तीन से एक बार बोल दीजिए थोड़ा।
0: ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ग्रीस।
1: ऑप्शन सी को फिक्स कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है।
1: जी मैडम।
0: जी तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तेलुगु कीजिए।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ कन्फर्म है।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तेलुगु को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है? ऑप्शन ए पक्षाम मेघ, ऑप्शन बी कपासी मेघ, ऑप्शन सी अस्तरी मेघ। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पक्षाम मेघ।
0: पक्षाम मेघ
1: जी।
0: ऑप्शन ए?
1: यस
0: कंफर्म है।
1: हाँ कंफर्म है।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए पक्षाम मेघ बिल्कुल सही है।
1: जी मैडम।
0: तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी मैडम।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, तड़ित झंझा एवं मूलाधार वर्षा किस मेघ के महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए है कपासी वर्षा मेघ, ऑप्शन बी है वर्षा अस्तरी मेघ और ऑप्शन सी है कपासी मेघ। आपका समय
1: शुरू। ऑप्शन बी को फिक्स कीजिए।
0: ऑप्शन बी
1: जी।
0: वर्षा अस्तरी मेघ
1: जी।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ कन्फर्म है।
0: लॉक करो
1: जी।
0: ओके, तो चलिए रंजीत जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी वर्षा अस्तरी मेघ को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा कपासी वर्षा मेघ। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो
0: जी, रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
2: जी अंकित कुमार।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं अंकित जी?
2: जी मैम देवहत्ता से।
0: जी क्या करते हैं अंकित जी?
2: अभी तो मैम पढ़ाई चल रही है।
0: जी किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: जी मैम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है।
0: अच्छा, तो पढ़ाई करके आगे क्या करने का विचार है?
2: बीए मतलब बीएससी कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाए तो आगे कंपटीशन की तैयारी में सब करना है, वही सब तैयारी कर।
0: ग्रेजुएशन कंप्लीट करके करना है?
2: हाँ जी मैम, अभी तो अंडर ग्रेजुएट में उतना अच्छा मतलब उसमें भी लगे हुए हैं तो देख रहे हैं।
0: ओके मैम, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: जी मैम, मेरे पापा जी का नाम उमेश सिंह और माता जी का नाम कमलावती देवी है।
0: क्या करते हैं आपके मम्मी पापा?
2: जी वैसे पापा तो मेरे किसान ही है, खेती बाड़ी सबका काम करते हैं
0: जी।
2: और माता जी घर में खाना वाना बनाती हैं।
0: ओके, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आप कॉल किए हैं, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी मैम, मैं बहुत एक्साइटेड मतलब वही हूँ, उत्सुक हूँ।
0: अच्छा, तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट को कॉल किए हैं?
2: नहीं, फर्स्ट टाइम मैं कॉल किए हैं अभी।
0: अच्छा, आपको कहाँ से पता चला हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में?
2: रेडियो यही सुनते रहते हैं, इस पे वो आता है ना एडवर्ड, तो उसमें पता चल गया, इसे मतलब उसमें पता चला
0: ये हेलो क्विज कॉन्टेस्ट। इससे पहले आप एड नहीं सुने थे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का?
2: नहीं, इससे पहले तो मतलब पहले सुनते थे काफी पहले, फिर हमको लगा कि कार्यक्रम बंद हो गया होगा, लेकिन फिर सुने तो सोचे कि कॉल किया जाए।
0: ओके, चलिए अच्छी बात है।
2: जी
0: जी, तो लिया जाए ना आपका पहला प्रश्न।
2: जी जी, लिया जाए।
0: तो अंकित जी, आपसे आपका आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है लखनऊ और ऑप्शन सी है देहरादून। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी मैम देहरादून।
0: कन्फर्म है?
1: नहीं मैम बस।
0: ओके तो लॉक करूं?
1: जी कर दीजिए।
0: ओके तो चलिए अंकित जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी देहरादून को फिक्स करते हैं। और बता दे आपको कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: ओके आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए है शिमला जलप्रपात, ऑप्शन बी है कोटाश्लम जलप्रपात और ऑप्शन सी है जोग जलप्रपात। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी इसका आंसर बी है
0: कोटाश्लम जलप्रपात।
1: हेलो
0: हाँ बोल रहे हैं कोटाश्लम।
1: हाँ बी नंबर ऑप्शन
0: कोटाश्लम जलप्रपात।
1: जी
0: कंफर्म है?
1: और उतना श्योर नहीं है, मतलब एक बार ऐसे नाम सुने हैं इसका, इसलिए लग रहा है कि यही होगा।
0: तो लॉक करूं?
1: जी कर दीजिए।
0: ओके तो अंकित जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी कोटाश्लम जलप्रपात को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा जोग जलप्रपात।
1: जी इसका तो नाम नहीं सुने थे।
0: जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
1: जी ठीक है।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
7: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर।

0: अंदर गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
1: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
2: हेलो
1: जी, रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए।
2: बिहार अंसारी।
1: इजहार। कहाँ से बात कर रहे हैं इजहार जी?
2: मैरपुर
1: जी। इससे पहले भी आप कॉल किए थे?
2: ना, हमने किए थे, लगा रहे थे लेकिन नहीं लगा।
1: ओके, क्या करते हैं इजहार जी?
2: पढ़ाई करते हैं।
1: किस क्लास में?
2: 9।
1: ओके, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है, पढ़ के क्या बनना है?
2: अभी नहीं सोचा।
1: अभी सोचे नहीं है। तो इससे पहले भी कभी आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
2: नहीं
1: लिए हैं,
2: पहली बार चलती है।
1: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए। इजहार जी,
2: मम्मी का नाम काकेश खातून और अबू का नाम मेरा जानकारी।
1: क्या करते हैं आपके अबू?
2: अबू टेलर हैं।
1: टेलर हैं, अच्छी बात है। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
1: लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न?
2: यस, पूछिए।
1: ओके इजहार जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1947। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए होगा।
0: ऑप्शन ए 1930।
1: यस मैम।
0: कंफर्म है?
1: यस।
0: तो लॉक करूं?
1: करिए।
0: ओके, तो चलिए इजहार जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1930 को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1942, न कि ऑप्शन 30। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो
0: जी, रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
2: अमित कुमार।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं अमित जी?
2: पिडरा से।
0: जी, क्या करते हैं आप?
2: पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: 10th।
0: जी, आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं? ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: स्वर्गीय इंदु देवी।
0: जी।
2: उपेंद्र शाह।
0: क्या करते हैं आपके पापा?
2: लेबर।
0: ओके, आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: 10th।
0: तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: यस।
0: ओके, तो चलिए अमित जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? ऑप्शन ए है इतिहास, ऑप्शन बी है भूगोल, ऑप्शन सी है खगोल और गणित। आपका समय शुरू होता है अब।
1: खगोल और गणित ऑप्शन सी।
0: कन्फर्म है?
1: यस।
0: लॉक करूं?
1: यस करिए।
0: ओके तो चलिए अमित जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न

0: ये है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है द हिंद, ऑप्शन बी है बंगाल गजट, ऑप्शन सी है समाचार दर्पण। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर एक
0: द हिंद।
1: हाँ
0: कंफर्म है?
1: हाँ
0: तो लॉक करूं?
1: करिए।
0: ओके तो चलिए अमित जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा बंगाल गजट ना कि द हिंद।
1: ठीक
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा। नमस्कार रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत
0: नाम बता दीजिए। शिवम। कहाँ से बात कर रहे हैं शिवम जी?
2: पटना से।
0: जी क्या करते हैं आप?
2: तैयारी करते हैं एग्जाम का। तैयारी करते हैं गवर्नमेंट का।
0: ओके आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए शिवम जी।
2: जी मैं मतलब पापा का नाम मनोज।
0: जी लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: बिल्कुल।
0: ओके तो चलिए शिवम जी आज का आपसे पहला प्रश्न ये है।

0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बांग्ला को
0: लॉक करो। कन्फर्म है? जी जी बिल्कुल। तो तेलुगु को लॉक करो। तो लॉक क्या करो, तमिल या तेलुगु? कन्फर्म है?
1: कन्फर्म नहीं है।
0: तो तमिल करो। ओके, तो चलिए शुभम जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी तमिल को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा तेलुगु, ना कि तमिल। इसी कार्यक्रम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जी चलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी।
8: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं।
2: आज की कड़ी बहुत खास है, क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस, यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
8: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण, ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया की स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और झिझक मौजूद हैं।
2: सच कहो से अतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है?
8: देखिए, ये एक सामाजिक सोच का मसला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
2: मतलब ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
8: बिल्कुल, माँ पिता भाई पति शिक्षक सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
2: तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मानसिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
8: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
2: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम साधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती है क्या?
8: यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं या फिर समय पर बदल नहीं पाते क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिल पाते। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय से मिलकर सुविधा सुनिश्चित करें।
2: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्यों अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
8: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन प्रोटीन विटामिन, तो उसे कमजोरी चक्कर ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
2: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
8: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता। आधी थाली में सब्जियां हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन हो, अनाज जैसे कि रोटी या चावल हो, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
2: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
8: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है, बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
2: सेहतिया भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से न जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
8: हाँ हाँ, बिल्कुल है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही गाँव की एक लड़की रीना की ये कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी। पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुआ तो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया था और कहा था कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना चाहिए। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली होने लगा, जलन होने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, रीना के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां फल ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, चक्कर आते थे उसे और कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा था। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुनी थी। दोस्तों, शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानियां बताई। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने रीना को समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसके अलावा रीना को सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां भी दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी। साथियों, रीना घर आ गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समय पर पैर बदलना शुरू कर दिया और अपने खाने पीने में सुधार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। साथियों, आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
2: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
8: बिल्कुल, और यही स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिम जिम का प्रयास है और हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
2: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
8: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी जी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों को भी पोषण की कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में या निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं, और इसके वजह से इसका सीधा असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
2: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
8: बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस के संदेशों से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। और आज जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
2: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
8: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खासकर किशोर लड़कियों और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके कारण व्यक्ति को जल्दी थकान, चक्कर, सांस फूलना और कमजोरी महसूस होता है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा है, इसलिए है क्योंकि उन्हें हर महीने मासिक धर्म के दौरान खून की कमी होती है, और अगर उनका खान पान सही ना हो तो यह कमी और बढ़ जाती है।
2: तो इसका सीधा मतलब है कि अगर हम पोषण पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका असर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ेगा।
8: बिल्कुल सही समझा आपने। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने रोज के खाने में कुछ खास चीजों को शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि पालक, मेथी, दालें और चने, गुड़, मूंगफली, तिल, अगर संभव हो तो दूध, दही, अंडा या अन्य प्रोटीन के स्रोत जैसे कि फल, केला, अमरूद, संतरा, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
2: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
8: बिल्कुल सोनी जी, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात और है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वह बीमारी का कारण भी बन सकता है।
2: साथियों, आज की बातचीत से तो एक बात साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती है। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
8: श्रोताओं, याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
2: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में, सेहत सही लाभ कई में, एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
9: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
10: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
11: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
10: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
12: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
13: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
14: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
15: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।
16: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
17: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
16: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
17: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
16: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
18: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
16: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
18: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी। संतोष फर्नीचर
3: डॉक्टर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
16: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
19: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
20: मैं बनूंगा।
19: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
21: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
19: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
21: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रमझे के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: जी, रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
22: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
22: बिमलेश से, मैं प्रधान से।
0: जी, क्या करते हैं बिमलेश जी?
22: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
22: 12th में।
0: ओके, तो आपको आगे चल के क्या करना है?
22: अभी सोचते नहीं है।
0: अच्छी बात है। तो आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
22: यस मैम।
0: विनर बने हैं?
22: नहीं।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
22: जी, मम्मी का नाम श्रीमती सुधांशी देवी, पिता का नाम श्री सुभाष शर्मा।
0: जी, क्या करते हैं आपके पापा?
22: किसान हैं।
0: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
22: यस मैम।
0: ओके, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
22: यस मैम।
0: ओके जी, आपसे आपका पहला प्रश्न आज का ये है,

0: महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जर्मनी और ऑप्शन सी ग्रीस। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जर्मनी का पूछती
0: है। कन्फर्म है?
1: नहीं।
0: तो लॉक करो।
1: और लास्ट वाला
0: ग्रीस
1: था। इसी दोनों में कोई होगा।
0: तो कौन सा फिक्स करे, जर्मनी या ग्रीस?
1: ग्रीस को फिक्स कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: नहीं।
0: ओके okay. चलिए विमलेश जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ग्रीस बिल्कुल सही है। लिया जाए आपसे आपका दूसरा प्रश्न।
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र और ऑप्शन सी बृहस्पति। आपका समय शुरू होता है। कन्फर्म है?
1: नहीं, लेकिन बुध ही होगा।
0: तो फिक्स कर दो।
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए विमलेश जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए बुध को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा शुक्र, ना कि बुध।
1: जी।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: थैंक यू मैम।
0: नाम बता दीजिए।
2: आयुषी
0: जी। कहाँ से बात कर रही हैं आयुषी जी?
2: गोपालगंज से।
0: क्या करती हैं?
2: कुछ नहीं, स्कूल में पढ़ती हूँ।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं?
2: सिक्स में।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: अभिषेक कुमार है, नन्नू देवी।
0: ओके, क्या करते हैं मम्मी पापा?
2: मम्मी हाउस वाइफ, पापा बिजनेस मैन।
0: ओके, तो तैयार हैं आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी।
0: लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
2: जी।
0: तो आयुषी जी, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है।

0: बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए कंधार, ऑप्शन नंबर बी फरगना और ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर बी फरगना।
0: कंफर्म है? जी। लॉक किया जाए?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आयुषी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी फरगना को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो आयुषी जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? नई राष्ट्रीय कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सुनहरी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है इंद्रधनुष क्रांति और ऑप्शन नंबर सी है रजत क्रांति। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर, एक बार और ऑप्शन रिपीट कर दीजिए।
0: ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति, ऑप्शन बी इंद्रधनुष क्रांति और ऑप्शन सी रजत क्रांति। आयुषी जी, आप कहीं सर्च कर रही हैं?
1: नहीं, सुनहरी क्रांति को लॉक कर दीजिए।
0: कंफर्म है?
1: नहीं, कंफर्म नहीं है, आंसर वही लग रहा है।
0: ओके, तो लॉक करें?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आयुषी जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सुनहरी क्रांति को लॉक करते हैं। और आपको बताते कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा इंद्रधनुष क्रांति। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: तो दोस्तों, ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाजत और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: ये कहानी है एक अतुलनीय पराक्रम की, ऐसे योद्धाओं की जिन्होंने अपने प्यारे देश के लिए बिना झिझके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये कहानी है असीम वीरता की, गाथा है अमर बलिदान की, ये कथा है एक ऐसे देश की जो संकट में एकजुट हुआ। कहानी करगिल की।

ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सीना चीरती ये सड़क पहुंचती है सरहद पर बसे एक शहर में। सुरु नदी के किनारे बसा ये शहर करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर है। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ी चोटियां हैं। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर से भी दूर मौजूद इस छोटे से शहर का नाम है करगिल। जी हाँ, वही करगिल जिसका नाम सुनते ही जहन में खास तस्वीर उभर आती है। तस्वीर एक ऐसे युद्ध की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।

0: आज यहाँ न गोलियों की गूंज है न युद्ध के निशान। सरहद पर होने की वजह से सेना की मौजूदगी जरूर देखी जा सकती है, लेकिन बाजारों में वैसी ही हलचल है जैसी दूसरे शहरों में होती है। वक्त के साथ जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हवा में लहराता ये तिरंगा अब भी सुनाता है करगिल की वो कहानी जो भारतीय सेना के वीरों ने अपने लहू से लिखी थी। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला हाईवे हो या यहां मौजूद चोटियां, ये सब करगिल की कहानी का अहम हिस्सा है। बर्फ से ढकी ये पहाड़ी चोटी कभी दुश्मनों के कब्जे में थी, लेकिन जब भारतीय सेना के जवानों ने इस चोटी पर तिरंगा लहराया तो ये तस्वीरें यादगार बन गईं। करगिल के चारों तरफ मौजूद हर चोटी की ऐसी ही कहानी है।
1: 26 जुलाई 1999 ये वही दिन था जब भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। इसी दिन करगिल की जंग खत्म हुई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को ऐसा सबक सिखाया कि उनके लिए जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो गया था। ये भारत और पाकिस्तान की चौथी लड़ाई थी। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के साथ धोखा करता आ रहा है, लेकिन 1999 में पाकिस्तान ने किया सबसे बड़ा विश्वासघात।

0: माई मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान विल बी शॉर्ट एंड सिंपल. पुट असाइड द बिटरनेस ऑफ द पास्ट. टुगेदर लेट अस मेक अ न्यू बिगिनिंग.
1: इस संदेश के साथ शुरू हुआ साल 1999. भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों की एक नई शुरुआत की अपील की. भारत पाकिस्तान की सीमा पर घट रही इस ऐतिहासिक घटना पर पूरी दुनिया की नजर थी. लाहौर में पाकिस्तान ने जिस गर्मजोशी से भारत की दोस्ती का हाथ थामा, भारत ने उतनी ही आत्मीयता से पाकिस्तान को गले लगाया. दिल्ली से लाहौर तक जाने वाली ये बस न सिर्फ दो पड़ोसी मुल्कों को जोड़ रही थी बल्कि उनके बीच भरोसे की एक नई कहानी लिख रही थी. अटल बिहारी वाजपेयी ने यह वादा किया था कि उस साल के अंत तक दोनों मुल्क मिल बैठकर कश्मीर मसले का हल निकाल लेंगे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इस नए रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाने का वादा किया था.
2: I have underscored to Prime Minister Vajpayee the immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship once we achieve a final settlement of Jammu and Kashmir issue.
1: अमन, चैन और दोस्ती की उम्मीद से भरे इस माहौल में 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया. लेकिन जिस वक्त लाहौर में यह सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी. यह साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की. भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है. पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में.
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा.
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट.
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं. साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है. तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में.
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ.
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है.
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन.
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है.
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है.
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज. अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर.
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है.
7: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750.
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है. अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं.
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है. चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें. आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक.
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज. कॉल करें 94512-11001.
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द.
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास. यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: कहानी करगिल की, अमन चैन और दोस्ती की उम्मीद से भरे इस माहौल में 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने लाहौर घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन जिस वक्त लाहौर में यह सब हो रहा था, उसी वक्त पाकिस्तानी जमीन पर भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। ये साजिश थी भारत की सीमा में घुसकर हमले की। भारत को इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिस पाकिस्तान को वो गले लगा रहा है, वो उसकी पीठ में खंजर भोंकने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के इस छल का खुलासा हुआ मई 1999 में।
2: 1999 की करगिल जंग की शुरुआत बटालिक सेक्टर से हुई थी। इस समय हम बटालिक सेक्टर में हैं और मेरे ठीक पीछे पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर का गांव है। लेकिन जो जंग लड़ी गई थी वो इन पहाड़ियों के ऊपर लड़ी गई थी। जब बटालिक के एक शख्स ने अपनी भेड़ बकरियां लेके ऊपर इस पहाड़ की तरफ गए थे, तो यहाँ पे उनको पाकिस्तानी घुसपैठिए दिखाई दिए थे, जिसकी खबर बाद में उन्होंने मई महीने में ही सेना को दी थी। यानी जो पहले घुसपैठिए देखे गए थे करगिल जंग में, वो इन्हीं पहाड़ियों में दिखे थे।
1: बटालिक सेक्टर के इसी गरकुन गांव के कुछ गडेरियों ने सबसे पहले पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा। उनके मुताबिक पठान सूट पहने कुछ लोग बंकर खोद रहे थे। इस खबर के बाद सेना की कुछ गश्ती टुकड़ियों को भेजा गया, लेकिन भारत को तब यह अंदाजा नहीं था कि जिन्हें वो घुसपैठिया समझ रहे हैं वो दरअसल पाकिस्तानी फौज के सिपाही हैं। पाकिस्तान के धोखे का पता तब चला जब कैप्टन सौरभ गालिया की पेट्रोलिंग टीम लापता हो गई।
3: ये जो पहले पहले जो खबर इन लोगों को मिली यहाँ पर लोकल फॉर्मेशंस को, यूनिट्स को, तो उन्होंने ये समझा कि कुछ घुसपैठिए आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। लोकल फॉर्मेशन ने समझा कि हम इनको निकाल फेंकेंगे और इनके पास ज़्यादा हथियार नहीं होंगे। जब ये असेसमेंट को चेंज किया गया, जब हमको खुद आर्मी को लगा के नहीं ये घुसपैठिए नहीं है, ये तो रेगुलर आर्मी के लोग हैं, तो उस वक्त हमको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स सब बदलनी पड़ी।
4: जब तक भारत को पता चल पाता तब तक पाकिस्तान ने भारत की करीब 150 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना ने उन चौकियों पर कब्जा किया था जिन्हें भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मियों में वापस जाया करती थी। लेकिन 1999 में भारतीय सेना की उन चौकियों पर जाने से पहले ही पाकिस्तानी फौज ने उन चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। जाहिर है इसके लिए पाकिस्तान ने एक बड़ी तैयारी की होगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या फरवरी 1999 में जब नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी से लाहौर में मिल रहे थे तो क्या उन्हें इस घुसपैठ की जानकारी थी?
1: नवाज शरीफ खुद ये दावा करते रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान की साजिश की भनक भी नहीं थी। खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग करते हुए शरीफ ने यहां तक कह डाला कि उन्हें तो अटल बिहारी वाजपेयी के फोन से मालूम चला कि पाकिस्तानी फौज भारत में घुस चुकी है।
5: मेरे भाई मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला किया और उस फौजी हमले का मुझे इल्म नहीं था। मैंने उसका नोटिस लिया और नोटिस मैंने तब लिया जब वाजपेयी साहब का मुझे टेलीफोन आया, मुझे कहने के नवाज शरीफ साहब ये आपने क्या कर दिया हमारे साथ, मैं तो थोड़े दिन पहले आपके पाकिस्तान से होके आया हूँ, इतना अच्छा जज्बा लेके मैं हिंदुस्तान वापस आया हूँ और आपने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो मैंने कहा क्या हुआ वाजपेयी साहब? कहने आपको मालूम नहीं क्या हुआ है, आपकी फौज ने हमारी फौज पे हमला कर दिया। मैंने मुशर्रफ साहब से बात की और फिर हकायक जो वाजपेयी साहब कह रहे थे उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक निकले और फिर मैंने कहा कि आपने ये सब कुछ क्या किया।
1: परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने बाद में नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में ले ली, उस वक्त पाकिस्तानी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। जानकारों के मुताबिक 1998 में पाकिस्तानी सेना की कमान संभालते ही मुशर्रफ ने भारत पर हमले की योजना बना ली थी। नवाज शरीफ को इस घुसपैठ के बारे में कितना इल्म था, इस सच का पता तो नहीं चल सका, लेकिन ये बात अब पूरी दुनिया जानती है कि करगिल का मास्टरमाइंड कौन था।
6: अनऑक्युपाइड एरिया में इंडिया सियाचिन में आ गया, यहाँ हम चले गए, ये हमें और हमने मैं आई से विद कॉन्फिडेंस हमने हिंदुस्तानी फोर्स को गले से पकड़ लिया, और मैं रिपीट कर रहा हूं, उनको गले से पकड़ लिया, क्योंकि हम उन जगहों में चले गए जहां उनकी जो मेन आर्टरी है जो श्रीनगर से द्रास, कारगिल और लद्दाख ले जाती है, उसको हम डोमिनेट कर गए। उस पे गाड़ी नहीं चल सकती थी अगर हम ना चाहते।
1: इससे पहले की तीन लड़ाइयों में भारत से मुंह की खाने के बाद भी 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की हिमाकत की। उसकी सबसे बड़ी वजह थी 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट। उस साल दोनों ही मुल्क एटमी हथियारों से लैस हो चुके थे। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान एटमी हथियारों का डर दिखाकर ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर दबाव डाला जा सके।
7: इन न्यूक्लियर टेस्ट के बाद पाकिस्तान में एक ह्यूबरिस की स्थिति आई कि साहब अब तो हम एटमी ताकत बन गए हैं, भारतवर्ष हिम्मत नहीं करेगा, अगर हम कोई प्रोवोकेशन करते हैं सब कन्वेंशनल दर्जे पे तो भारत में हिम्मत नहीं होगी कि उसका वो जवाबी कार्रवाई कर सके, और इसी के चलते उन्होंने कारगिल का युद्ध जो है छेड़ दिया था।
1: जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काटकर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना।
0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
14: हर घर सूर्य घर।
15: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
16: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी एस2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
15: और एक और खुशखबरी, एस2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। एस2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। एस2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
1: कहानी कारगिल की। जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से काट कर सियाचिन में भारत की पकड़ कमजोर करना। मुशर्रफ ने बेहद खुफिया तरीके से यह साजिश रची। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी के मुताबिक करगिल में घुसपैठ के सीक्रेट ऑपरेशन में मुख्य तौर पर पाकिस्तानी सेना के 4 ऑफिसर शामिल थे।
17: आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, कमांडो, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज,

0: ब्रिगेडियर साहब को कहा कि जी, क्योंकि वो इंचार्ज थे, कि आप जाके चेकआउट तो करें वहां इंडिया के क्या इरादे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये जब ब्रिगेडियर साहब गए उस इलाके में रेकी करने, तो देखा वहां तो बंदर और बंदे की जात, थोड़ा और आगे गए थे बंदर और बंदे की जात, सोचे कोई तो रास्ता खुला है, तो है ही कुछ नहीं, ये तो ऐसी वॉक इन, पता नहीं चलना किसी को। वहां से ये प्लान बना।
1: मुशर्रफ के इस प्लान को नाम दिया गया ऑपरेशन बद्र। नजम सेठी के मुताबिक 1999 के जनवरी फरवरी महीने में मुजाहिदीनों की शक्ल में पाकिस्तान के करीब 200 सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल को लांघकर करगिल की सुनसान पहाड़ियों में घुस गए। धीरे धीरे इन सैनिकों की संख्या बढ़ती गई और मार्च अप्रैल तक उन्होंने भारत की 140 से ज्यादा पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन डायरेक्टोरेट में रहे कर्नल अशफाक हुसैन ने अपनी किताब विटनेस टू ब्लंडर में लिखा है कि हमले से पहले परवेज मुशर्रफ खुद LOC क्रॉस करके भारतीय नियंत्रण रेखा में 11 किलोमीटर अंदर तक गए और वहां एक रात भी गुजारी।
2: करगिल की लड़ाई का ये पहला चरण था। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री यानी NLI के फौजी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपनी पोजीशन ले चुके थे, लेकिन भारत को इसकी खबर तक नहीं थी। करगिल, द्रास और बडाली सेक्टर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां करीब 16 से 18 हजार फीट तक की हैं, और यहां पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों के सीधे निशाने पर था नेशनल हाईवे नंबर 1A, यानी वो रास्ता जो कि लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ता है। पाकिस्तान की योजना ये थी कि इस हाईवे पर लगातार फायरिंग कर लद्दाख को बाकी के जम्मू कश्मीर से काट दिया जाए।
1: जम्मू कश्मीर का सबसे शांत इलाका लद्दाख पर पाकिस्तानी कब्जा ऑपरेशन बद्र का पहला लक्ष्य था। इसी रणनीति के तहत करगिल की चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक नेशनल हाईवे पर जबरदस्त गोले बरसा रहे थे।
3: उनका इरादा मेरे ख्याल से ये भी था कि एक बार अगर श्रीनगर से लद्दाख का रोड कम्युनिकेशन को काट दिया जाए, तो उसके बाद वो शायद सियाचिन मुद्दे के ऊपर भी भारत के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, और उसके बाद भारत को एक कमजोर स्थिति से फिर पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी।
1: शुरुआत में भारत यही समझता रहा कि हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, लेकिन जैसे ही भारत को इस बात के सबूत मिलने लगे कि आतंकवादियों की शक्ल में पाकिस्तानी सेना गोले बरसा रही है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया के इतिहास में पहली बार महाविनाशक एटॉमिक हथियारों से लैस दो देश युद्ध के मैदान में आमने सामने थे।
4: इस समय देश के सामने युद्ध जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कारगिल में, उसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी तादाद में पाकिस्तान से सशस्त्र घुसपैठी आए।
1: भारत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। उसे ऐसा जवाब देना था जिससे पाकिस्तान को सबक भी सिखाया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल उसके पक्ष में रहे। यही वजह थी कि 24 मई को CCS यानी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत ने पाकिस्तानी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, लेकिन सेना को किसी भी हाल में लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस न करने की हिदायत दी।
5: बहुत लोग चाहते थे कि हम पलट वार करें, लाइन ऑफ कंट्रोल को जाके पार करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट का ये फैसला था LC ना पार करने का, ये बहुत समझदार फैसला था, क्योंकि इससे कोई विदेशी ताकत इसमें अब हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करते तो ये इंटरनेशनल स्थिति बन जाती, UN उसमें बीच में टपक पड़ता, अमेरिका दबाव डालता कि लड़ाई बंद करो, मैक्सिमम हम 7-8-10 दिन 15 दिन तक लड़ाई लड़ सकते थे, जबकि ऐसे पहाड़ों पे हमारा अंदाजा था कि 2-2.5-3 महीने लग जाएंगे उनके पांव काटने में। तो इसलिए अगर हमने लाइन पार की होती, हमने दबाव पड़ता, 15 दिन में हमको खत्म करना पड़ता और काफी सारा इलाका उसके हाथ में रह जाता ऐसे अहम जगह में।
4: शांति और शक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शांति में राष्ट्र की शक्ति तैयार होती है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तेज होती है,

0: शांति में जीवन की रक्षा होती है, विकास होता है। लेकिन जब शांति खतरे में पड़ जाए दूसरों के व्यवहार के कारण, तो फिर शक्ति से काम लेना पड़ता है।
1: युद्ध के इतिहास में करगिल की लड़ाई को सबसे मुश्किल लड़ाइयों में गिना जाता है, जहां दुश्मन 16 से 18,000 फीट की ऊंचाइयों पर बंकर में छुपा बैठा था और उनसे मुकाबला करने वालों को हमला करने वालों का नीचे से जवाब देना था। इसलिए भारत रणनीतिक तौर पर कमजोर स्थिति में था। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने हमलावरों की संख्या करीब 5,000 थी और उन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को करीब 30,000 जवानों को भेजना पड़ा था।
2: भारतीय सेना की मुश्किल ये थी कि जिस हाईवे को वो अपने सप्लाई रूट की तरह इस्तेमाल कर सकते थे, उस पर पाकिस्तान लगातार गोलाबारी कर रहा था। इसलिए भारत ने सबसे पहले उन चोटियों को निशाना बनाने की योजना बनाई जो सीधे हाईवे के सामने थी, यानी तोलोलिंग और टाइगर हिल्स। भारत की जवाबी कार्रवाई के इस पहले चरण में सबसे अहम भूमिका निभाई बोफोर्स गन ने। कुछ साल पहले राजनीति के मैदान में बदनाम हो चुकी बोफोर्स गनों ने करगिल के मैदान में अपना दम दिखाया। जमीन पर बोफोर्स के गोले तो आसमान में एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने बम बरसाना शुरू किया।
3: लड़ाई के मैदान में इसने अपना पूरा जौहर दिखाया और जैसे मैंने बताया कि इस ऊंची पहाड़ी चोटियों पर अगर हम दुश्मन को हिला पाए तो सबसे ज्यादा उसमें भूमिका थी हमारी बोफोर तोपों की और हमारे इन्फेंट्री के सिपाहियों की हिमाकत और शुजात की। और ये बोफोर तोपें हमने बताया हर इन्फेंट्री पलटन के अटैक के लिए हमने 100 गन वहां पे पहुंचवाई थी और जो ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर्स थे वो वहां पहुंचाए ताकि दुश्मन को हिला लिया जाए हमले के पहले और तभी दुश्मन के पांव उखड़े, नहीं तो उस हाइट से उसको निकालना असंभव था।
1: करगिल की कहानी बिना बोफोर्स के पूरी नहीं होती। 155 मिलीमीटर की होविट्जर गन का बैरल करीब 70 डिग्री तक घूम सकता है, यानी इसका गोला ऊंची से ऊंची पहाड़ियों तक पहुंच सकता है। करीब 40 किलोमीटर की रेंज वाली इन गनों ने ऊंची पहाड़ियों पर बने दुश्मनों के बंकरों को तबाह कर दिया।
2: ₹26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला शुरू किया। हालांकि दुश्मन की सही पोजीशन पता न होने की वजह से वायुसेना को शुरुआती झटके लगे। 27 मई को MiG-27 तकनीकी खराबी की वजह से दुर्घटना का शिकार हुआ। सहायता के लिए बढ़ा दूसरा MiG-21 विमान पाकिस्तानी मिसाइल के निशाने पर आ गया। MiG-27 के पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को युद्ध बंदी बना लिया गया, जबकि मिसाइल के निशाने पर आए विमान MiG-21 के पायलट स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को पाकिस्तानियों ने बर्बरता से मार डाला।
4: ऑल ऑफ यू हियर विल शेयर माय सैडनेस दैट ऑन फर्स्ट रिपोर्ट एंड प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द बॉडी वी फाइंड बुलेट वुंड्स।

0: And the body is being taken for post-mortem. And when we have the full report of the post-mortem, we shall present it to you.
1: शुरुआती झटकों के बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली। 1971 के बाद पहली बार वायुसेना के जंगी जहाज युद्ध में शामिल हो रहे थे। इसे ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया। MiG-29 हवा में दूसरे विमानों को सुरक्षा देता था। इसने पाकिस्तानी F-16 विमान को भारतीय सीमा से दूर रहने पर मजबूर किया, जबकि MiG-27, MiG-21 और Mirage-2000 विमान जमीनी निशाना ढूंढते थे। भारतीय वायु क्षेत्र में रहकर विमानों ने वो काम किया जो अब तक दुनिया की किसी भी वायुसेना ने नहीं किया था। 13,000 फुट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर छुपे पाकिस्तानी फौज के सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल हुआ।
2: Fortunately, by a system that we had adopted in Western Air Command, the enemy was convinced that we are ready for the air battle, willing for the air battle. आप आओ, हम आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, and we are waiting for it. वो नहीं आया।
1: इसके साथ भारत ने जल्द ही दुनिया के सामने पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी के पुख्ता सबूत दे दिए।
3: डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इन दीज इंट्रूजन्स हैव बीन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट।
1: भारतीय सेना के लिए जमीन पर हालात तब बदले जब तोलोलिंग पर कब्जा हुआ।
4: कोई नाइट 12-13 को टू राजरिफ ने आर्टिलरी की सपोर्ट के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया और सुबह 13 तारीख को उन्होंने टोलोलिंग के ऊपर कब्जा कर लिया। ये सबसे बड़ा सक्सेस था हमारे लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई 2-3 हफ्ते तक कोई हमको सक्सेस नहीं मिल रहा था और टोलोलिंग एक ऐसा फीचर था जो रोड के ऊपर बड़ी अच्छी तरह डोमिनेशन कर रहा था दुश्मन।
1: टोलोलिंग के बाद भारतीय सेना का मकसद था टाइगर हिल से पाकिस्तानियों को खदेड़ना। टाइगर हिल को दुश्मनों के चंगुल से आजाद कराने को निकले भारतीय सैनिक अपने साथ रसद की जगह ज्यादा से ज्यादा हथियार ले गए थे। ये इस लड़ाई का सबसे मुश्किल मुकाबला था। इसके लिए भारतीय सेना की 3 बटालियनों ने पाकिस्तानी फौज को 3 तरफ से घेरा। करीब 11 घंटे की जंग के बाद 4 जुलाई को भारतीय जवानों ने टाइगर हिल पर भी तिरंगा फहरा दिया। ये इस जंग की सबसे बड़ी जीत थी।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
8: नमः शिवाय।
9: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
8: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
9: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
9: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
8: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629335383।
9: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
8: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
9: बोलबम हर हर महादेव। डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
11: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
12: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
13: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
14: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
13: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974-34468 पे।
1: कहानी करगिल की। पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने कई मोर्चे पर जंग छेड़ दी थी। राजनयिक एक तरफ काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ रोज दिल्ली में वायुसेना, थल सेना और विदेश विभाग के प्रवक्ता प्रेस ब्रीफिंग करते थे। टेलीविजन के जरिए करगिल घर घर तक पहुंच रहा था।
15: You heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills.
16: This part of the Batalik sector where I am sitting right now was actually where the Pakistani just a short while back. In fact, even now they are continuing to shell this region looking for the forward post which have been formed here. We heard a shell going off just a short while ago.
17: Usse humko sahayata mili, kyunki unhone pure desh mein jo ekdam desh ko jod diya आर्मी का साथ देने के लिए। तो मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि मैंने पूरा देश ऐसे जुड़ा हुआ कभी भी नहीं देखा जैसा मैंने कारगिल वॉर के टाइम में देखा, और उसके लिए मीडिया का इस्तेमाल करना वो अच्छी बात थी।
1: पूरा मुल्क देख रहा था कि किन हालात में भारतीय फौज लड़ाई लड़ रही थी। भारतीय जवान कितनी मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तानियों को धूल चटा रहे थे। ऐसी ही एक कहानी है एक नौजवान कैप्टन विक्रम बत्रा की।
18: In case we would have stopped at any point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, OAIA, which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was Ye Dil Mange More. The guys were so highly charged up that they were wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps.
1: Ye Fauji Jammu Kashmir Light Infantry mein hai. ये तब की बातचीत है जब ये अफसर द्रास के पॉइंट 5140 के एक अहम चौकी पर कब्जा करके लौट रहे थे। विक्रम को उसके दोस्त शेरशाह बुलाते थे। दुश्मनों की उन पर नजर थी। विक्रम और उनके साथियों का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था।
18: They were on the same frequency which were we on our radio sets. None of the Pakistani soldiers or officer, whosoever it was, he said to me, my code name was Shesha. Oh Shesha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us?
1: 7 जुलाई को उन्होंने दूसरे पॉइंट पर चढ़ाई की। जबरदस्त लड़ाई के बाद वहां भी जीत मिली, लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा मौजूद नहीं थे।
0: I owe this capture point 4875 to Captain Vikram Batra of my battalion who laid his life here for the capture of this feature.
18: दिल मांगे नहीं।

0: कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। ये पहली लड़ाई थी जिसमें जंग के मैदान से शहीदों की लाश उनके गांव तक पहुंचाई गई। शहीदों की लाश को गांव तक पहुंचाने का फैसला काफी बड़ा साबित हुआ। इससे करगिल की लड़ाई सिर्फ करगिल तक सीमित नहीं रही, पूरा देश इसके साथ जुड़ गया। जबकि पाकिस्तान अपने शहीदों की लाश तक कबूलने से इनकार करता रहा।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 18744।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
0: कहानी करगिल की। ये पहली लड़ाई थी जिसमें जंग के मैदान से शहीदों की लाश उनके गांव तक पहुंचाई गई। शहीदों की लाश को गांव तक पहुंचाने का फैसला काफी बड़ा साबित हुआ। इससे करगिल की लड़ाई सिर्फ करगिल तक सीमित नहीं रही, पूरा देश इसके साथ जुड़ गया। जबकि पाकिस्तान अपने शहीदों की लाश तक कबूलने से इनकार करता रहा। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ, पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए भारत ने वो किया जो अब तक कभी नहीं हुआ था। 11 जून 1999 को विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाई गई।
12: उनसे बात तो नहीं हुई, कल मुलाकात वगैरह हुई कोई? कल सर हुई शाम को, तो वो ब्रीफिंग हमने की जो मियां साहब के साथ वही फोरम था, जो फुल फोरम था, पहले जहां हमने ब्रीफिंग की थी।
13: और उधर ही हुई जमशेद के पास?
12: नहीं, मियां साहब के दफ्तर में।
13: अच्छा अच्छा, उधर
0: टेप में आवाज पाकिस्तानी सेना के मुखिया जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के बीच की थी। मुशर्रफ चीन में थे और अजीज इस्लामाबाद में। करगिल में पाकिस्तान की सेना का दम बहुत जल्दी फूलने लगा था। हालात बिगड़ते देख नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया। नवाज शरीफ हवाई हमलों को रुकवाना चाहते थे।
14: कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे श्रीनगर में टेलीफोन किया था, बातचीत की थी, और वो यही कहते रहे कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान इस मामले को ठंडा करना चाहता है। हमने कहा
0: की जवाबी कार्रवाई से घबराया पाकिस्तान मदद के लिए अमेरिका के पास पहुंच गया। लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा कि पहले पाकिस्तान करगिल से निकले और लाहौर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को परास्त कर चुका भारत कूटनीति के मैदान में भी भारी पड़ रहा था।
15: वर्ल्ड ओपिनियन जो था दुनिया की तरफ से, ये बात साफ थी कि इसमें पाकिस्तान की तरफ से खुराफात हुई है। और भारत जो भी कर रहा है, भारत ना सिर्फ भारत ने बहुत संयम बरता कि उस लड़ाई को और आगे ना बढ़ने दिया, बट सिर्फ अपने इलाके को खाली कराने के लिए युद्ध किया, जिसके लिए हमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। तो उस हालात में दुनिया को भारत की छवि जो थी, एक बहुत संयम वाले देश की, एक सोच समझ के कार्रवाई करने वाले देश की, और ऐसा देश के जो अपने हितों की रक्षा के लिए, जो उसके जायज़ हक है, सिर्फ उन्हीं के लिए कार्रवाई करेगा, ना कि दूसरे देश की किसी इलाके ऊपर नज़र रखेगा।
16: ऑपरेशन विजय इज गोइंग टू बी ए ग्रेट विजय।
0: करगिल की दुर्गम और ऊंची चोटियों में भारतीय जवानों ने जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया, उसी का नतीजा था एक शानदार जीत। लेकिन इस जीत के साथ भारत के लिए कई सबक भी थे। दुश्मन जिस तरह भारतीय सीमा में घुसकर बैठ गया था, उसे भारत की खुफिया तंत्र की नाकामी माना गया। इस लड़ाई में भारत के 527 वीर शहीद हुए और 1000 से भी ज्यादा घायल हुए। भारत आज भी करगिल में शहीद हुए अपने जवानों को श्रद्धांजलि देता है, जबकि पाकिस्तान ने करीब 11 साल बाद अपने 453 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली। हालांकि नवाज शरीफ के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए थे। 453 से 4000 के आंकड़ों के बीच उलझा पाकिस्तान, क्या करगिल से कुछ सीख ले पाया? शायद नहीं।
17: ठक ठक।
18: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
19: अच्छा मिला ही नहीं।
18: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
19: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
18: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
19: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
20: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
21: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
20: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
21: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
22: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने।
2: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी, कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या? मुरारी लाल विजय कुमार,
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87-894-18744।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
5: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
10: प्रसाद क्लिनिक,
11: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
10: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
12: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
13: मैं बनूंगा।
14: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
14: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
12: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।

0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9955 97644।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
7: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
8: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
7: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: मैं बनूंगा।
1: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे।
1: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में
7: ओनली ऑन रेडियो रमझेन 90.4 AMZ पर।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
9: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान।
3: 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
4: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
3: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
4: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
3: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृहमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
5: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.
3: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
6: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बायपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
3: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और यह सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
7: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकर और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जांच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
8: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रमजिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रमजिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
13: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
14: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
14: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
14: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
15: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
16: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
15: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
16: बिल्कुल माया क्लासिकल में पीडीएफ, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
17: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
18: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
19: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
20: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
19: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
20: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
19: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
20: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
19: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH-27 गोपालगंज।
20: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
21: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला प्रशासन द्वारा भूमिहीन जरूरतमंदों को दिया गया भूमि का पर्चा। स्मैक के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। गन्ना किसानों का एक दल प्रशिक्षण के लिए हुआ रवाना। पुण्य तिथि पर अटल जी को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस अधीक्षक ने मोटरसाइकिल से आधी रात को सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। मोहम्मदपुर के एक निजी मैरिज हॉल में अभियान बसेरा 2 के तहत भूमिहीन एवं जरूरतमंद परिवारों के बीच बंदोबस्ती का पर्चा वितरित किया गया। जिला प्रशासन के नेतृत्व में प्रदेश के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने लाभुकों के बीच बंदोबस्ती का पर्चा वितरित किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि भूमिहीन और जरूरतमंद परिवारों को उनका हक और अधिकार दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अभियान बसेरा 2 के माध्यम से पात्र परिवारों को भूमि का अधिकार प्रदान कर उन्हें स्थायित्व, सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान बताया जा रहा है कि सिधवलिया अंचल में कुल 61 लाभुकों के बीच बंदोबस्ती का पर्चा निर्धारित था, जिनमें से आज 26 लाभुकों के बीच पर्चा का वितरण किया गया। तो वहीं बैकुंठपुर अंचल में 68 लाभुकों के लिए बंदोबस्ती पर्चा निर्धारित था, जिसमें से 35 लाभुकों के बीच पर्चा का वितरण किया गया। इस प्रकार दोनों अंचल को मिलाकर आज कुल 61 लाभुकों को बंदोबस्ती का पर्चा वितरित किया गया। मीरगंज थाना की पुलिस ने तरधर कुसौधी नौतन मार्ग पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हथुआ के निर्देश पर एक स्मैक के साथ आरोपी को पकड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से स्मैक जैसा मादक पदार्थ मिला था, जिसके बाद इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर आवश्यक जांच पड़ताल शुरू किया है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी की पहचान वासुदेव राय, पिता स्वर्गीय ब्रह्मा राय, साकिन कंधवैया माझा, थाना फुलवरिया का निवासी बताया जा रहा है। अब इस पर आवश्यक जांच कर पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज जिले के 21 गन्ना कृषकों का दल उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि सुबोध कुमार सुधांशु सहायक ईख निदेशक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया। इस दल में भारत सुगर मिल सिधवलिया के 16 गन्ना कृषक और विष्णु सुगर मिल गोपालगंज के 5 गन्ना कृषक तथा गन्ना शोध परिषद 5 गन्ना कृषक उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में 17 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक गन्ना खेती की नवीनतम तकनीक तथा गन्ना की खेती के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए संस्था द्वारा किए गए नवीनतम शोध की जानकारी प्राप्त करेंगे। गन्ना की खेती में लगने वाले कीट, व्याधि तथा उसके नियंत्रण के उपाय की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। साथ ही गन्ना की खेती में प्रयुक्त कृषि उपकरण एवं उनके उपयोग की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान अरार मोड़ पर स्थित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा पर स्वदेश के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और भाजपा के तमाम नेतागणों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान जदयू के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और नमन किया। साथ ही अटल जी के आदर्शों और राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलने का सभी लोगों ने संकल्प लिया। शनिवार की देर रात पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मॉडल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक अचानक मोटरसाइकिल से आधी रात को मॉडल सदर अस्पताल में पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के एक एक बिंदुओं पर जांच की। आईसीयू, इमरजेंसी, कैदी वार्ड, लैब, एक्सरे और रजिस्ट्रेशन काउंटर का निरीक्षण किया। आईसीयू में मरीजों के इलाज से जुड़ी जानकारी पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर डॉक्टरों से जवाब तलब किया गया। सिविल सर्जन से भी उन्होंने फोन पर बात कर मरीजों को समय पर बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया। कैदी वार्ड और वेटिंग हॉल में पंखों की कमी पर अतिरिक्त पंखे लगाने का भी उन्होंने निर्देश दिया। बारिश के बाद जिले के कई क्षेत्रों में मच्छरों से लोग परेशान हैं। आज बैकुंठपुर क्षेत्र से बताया जा रहा है कि मच्छरों के प्रकोप से लोगों की परेशानी बढ़ी है। गोपालगंज शहर के आसपास भी मच्छरों के प्रकोप से लोग परेशान हो रहे हैं। इसके लिए फॉगिंग इत्यादि की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में रोष भी व्याप्त हो रहा है। विजयपुर थाना की पुलिस ने 125 लीटर देशी चुलाई शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए कुटिया घाट के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां 125 लीटर देशी चुलाई शराब को बरामद किया गया। साथ ही छोटे लाल मंडल पिता विदाई मंडल साकिन लाला बेलवा थाना विजयपुर को गिरफ्तार किया गया, तो वही जितेंद्र नट पिता हीरा नट साकिन जगीरहा कुटी थाना कोटवा जिला मोतिहारी को भी इसी मामले में पकड़ा गया है। यह दूसरा आरोपी भी वर्तमान में लाल बेलवा थाना विजयपुर में ही रहता है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अब दोनों पर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इसका शुभारंभ संस्था के निदेशक डॉक्टर अनूप दास द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन से हुआ। इसके पश्चात ध्वजारोहण किया गया तथा कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान गाया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनूप दास ने उन स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके बलिदान ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने लगभग हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट प्रखंड के भोपतपुर पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, लिंग चयन पर प्रतिबंध अधिनियम, दहेज अधिनियम और महिलाओं से संबंधित कानून तथा स्थायी लोक अदालत का गठन इत्यादि के विषयों पर लोगों को आवश्यक जानकारी दी गई। इसमें पैनल अधिवक्ता हैदर अली के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को महिलाओं के क्षेत्र में बनाए गए कानून और उनको दी जाने वाली सहायता के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी। चित्रगुप्त मंदिर गोपालगंज के परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुक्ल पक्ष द्वितीया को भगवान चित्रगुप्त की आरती उतारी गई और भोग लगाया गया। इस दौरान जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए चित्रगुप्त वंशज एकत्रित होकर पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना किए। इसमें जिला चित्रगुप्त मंदिर के अध्यक्ष अजय प्रसाद श्रीवास्तव, सचिव सुदीश श्रीवास्तव और कोषाध्यक्ष सुधांशु वर्मा के अलावा आनंद बिहारी श्रीवास्तव, आनंद भास्कर, पंकज कुमार, मनीष कुमार, पप्पू इंजीनियर सहित दर्जनों चित्रांश बंधु मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने जिले में बेहतर सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। इसमें पुलिस उपाधीक्षक रक्षित सुबोध कुमार, साइबर पुलिस उपाधीक्षक अवंतिका दिलीप कुमार, पुलिस उपाधीक्षक हथुआ आनंद मोहन गुप्ता, पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार सदर टू और पुलिस उपाधीक्षक परीक्षमान नीरव पाल तथा पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय कुमार मिश्रा, पुलिस निरीक्षक हरेंद्र प्रसाद डीआईयू शाखा, पुलिस निरीक्षक ओम प्रकाश चौहान डीआईयू शाखा, पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार अपराध शाखा और पुलिस निरीक्षक किशोरी चौधरी विधि शाखा, एफएसएल के पदाधिकारी प्रणव कुमार राय, पीयूषा राय सहित कुल 57 पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। भोरे थाना जगतौली ओपी पुलिस ने 315 लीटर देशी शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करमासी 3 मोहानी के पास छापेमारी की, जहां कार को पकड़ा गया। इस कार से आधी रात को 315 लीटर देशी शराब मिली। इस मामले में आरोपी हिमांशु शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के खुकुंदू थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। साथ ही शिवम शाही को भी पुलिस ने पकड़ा है, यह भी देवरिया के खामपार थाना के भिगारी बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है। दोनों को अब पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद कार को जब्त कर लिया है और अब इन दोनों पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला प्रशासन द्वारा भूमिहीन जरूरतमंदों को दिया गया भूमि का पर्चा। स्मैक के साथ एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। गन्ना किसानों का एक दल प्रशिक्षण के लिए हुआ रवाना। पूर्ण तिथि पर अटल जी को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस अधीक्षक ने मोटरसाइकिल से आधी रात को सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
22: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
22: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
22: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
20: नमः शिवाय।
19: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
20: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
19: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
20: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
19: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
20: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
19: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
20: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
19: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
20: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
19: बोलबम, हर हर महादेव।
23: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
24: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
23: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, तो एक बार फिर से दिल से आपका स्वागत करती हूँ आज के इस एपिसोड में। आज मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट लेकर के आई हूँ जो कि आपको उस माहौल में, उस समय में वापस लेकर के जाएगा जो कि आप भुलाए नहीं भूल सकते हैं। वो एक ऐसा समय था जिससे हमारी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आज की मेरी प्लेलिस्ट आपको दीवाना बना देगी। आज की मेरी प्लेलिस्ट उन फिल्मों के नाम हैं जो कि हमारे देश के जन्नत में यानी कि कश्मीर में शूट की गई हैं। वैसे बॉलीवुड में देखा जाए तो रोमांस अगर दिखाना हो तो एक समय ऐसा था जब कश्मीर ही सबसे पहले दिमाग में आता था। ये दौर था 1960s और 1970s का, जब हिंदुस्तान के नॉर्थ मोस्ट स्टेट को सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं माना जाता था बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन शूटिंग लोकेशन भी माना जाता था। गोल्डन एरा का वो समय, कई सारे एवरग्रीन रोमांटिक लव सॉन्ग्स एंड मोमेंट्स कश्मीर में ही फिल्माए गए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने खूबसूरत इस जगह को एकाएक सिर्फ डर और खौफ की नज़र से ही दिखाया जाने लगा फिल्मों में? बात करेंगे इसके बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले आइए शो की शुरुआत करते हैं उस फिल्म के गाने के साथ जो पहली हिंदी फिल्म थी टू रन सक्सेसफुली फॉर मोर देन 100 डेज ऑन स्क्रीन, और तो और वो भी 4 शोज के 7 दिन में। इनफैक्ट साउथ की कई सारी जगहों में तो ये फिल्म 3 सालों तक थिएटर्स में लगी रही थी। आराधना फिल्म से किशोर दा और लता जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गाना कोरा कागज था ये मन मेरा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। जो सभी गाने मैं आपको सुना रही हूँ कहीं ना कहीं कश्मीर से जुड़े हुए हैं, फिल्माए गए हैं कश्मीर में, या फिर एक खास झलक जो है वो कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह की दिखाई गई है इस फिल्म में या फिर इस फिल्म से जुड़े हुए गानों में। मैं बात कर रही थी कुछ देर पहले कि ऐसा क्या हो गया था कि एक समय ऐसा आया जब कश्मीर को एक खूबसूरत जगह की तरह दिखाने की बजाय एक डर और एक खौफ से भरी हुई

की तरह दिखाया जाने लगा। बात थी ये 1990 की, जब कश्मीर में काफ़ी अनरेस्ट था, काफ़ी सारे दंगे हो रहे थे, और जिसके बाद बॉलीवुड को, एक्टर एक्ट्रेसेस को, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को इस जगह से डर सा लगने लग गया था। 1990 से 1995 के बीच एक भी फिल्म नहीं थी जो कि कश्मीर में शूट की गई हो। सभी तरह की शूटिंग को बंद कर दिया था कश्मीर में, और ऐसा कुछ सालों तक चला था जिसके बाद में फिल्म मेकर्स ने फिल्में बनाना तो शुरू किया, कश्मीर जाकर के शूट करना भी शुरू किया, लेकिन सिर्फ ऐसी ही फिल्में बनाई जाती थी कश्मीर में जो कि टेररिज्म को और कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाती थी। कश्मीर के रहवासी जो थे उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, लेकिन लोग कर भी क्या सकते थे। फिल्म मेकर्स सिर्फ सच्चाई ही दिखाना चाहते थे, और उस दौरान यही कश्मीर की सच्चाई थी। काफ़ी समय लगा फिल्म मेकर्स को भी कि वो फिर से कश्मीर को एक खूबसूरत जगह की तरह देखना शुरू करें, वहाँ की वादियों में जाकर के प्यार भरे गाने फिर से शूट करना शुरू करें। और ये जो समय था ये 90s के एंड में जाकर के आया था, जब ये सारी जो कॉन्फ्लिक्ट रिडन मूवीज़ थी और स्टोरीज़ थी, इन्हें हटा करके रोमांटिक मूवीज़ फिर से कश्मीर में शूट की जाने लगी। वैसे कौन थे वो एक्टर जिन्होंने सबसे पहले कश्मीर में जाकर के एक सुपर हिट गाना शूट किया था? इन एक्टर के बारे में करेंगे बात कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सुनते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में कन्यादान फिल्म से अगला गाना, जो कि फिर से कश्मीर की खूबसूरती को दिखाता है। अपने मन की नज़रों से देखने की, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
5: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आज के सभी गाने जो हैं वो बॉलीवुड के ऐसे गाने हैं जो कि कश्मीर की खूबसूरती को दर्शाते हैं या फिर कश्मीर से जुड़े हुए से हैं।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मुकेश जी की आवाज में ये गाना था कभी कभी फिल्म से। आज के सभी गाने जो हैं वो बॉलीवुड के ऐसे गाने हैं जो कि कश्मीर की खूबसूरती को दर्शाते हैं या फिर कश्मीर से जुड़े हुए से हैं। यश चोपड़ा जी, जिन्हें हम फादर ऑफ रोमांस के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी कई फिल्मों को कश्मीर में शूट किया है। मतलब स्नो स्प्रिंकल्ड वैलीज, वो वादियाँ और साथ में रेखा जी और अमिताभ जी का रोमांस, हाय हाय, हर एक शॉट इतना ब्यूटीफुल हो जाता था कि क्या बताएं। आप अपनी नजरें ही नहीं हटा सकते थे, ना एक्टर एक्ट्रेस पर से, ना ही उस जगह की खूबसूरती पर से। वैसे किसी ने सबसे पहले अगर इन वादियों में अपना जादू बिखेरा तो वो थे शम्मी कपूर जी। आज भी जब द क्लासिक एवरग्रीन सॉन्ग तारीफ करूं क्या उसकी हम सुनते हैं तो हम कश्मीर से और भी ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। 1964 में आई थी कश्मीर की कली फिल्म और डाल लेक में इस फिल्म को और इसके गानों को फिल्माया गया था। बस इस फिल्म का गाना भी सुनाऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले आइए उस फिल्म का गाना सुनते हैं जिसमें काम करने के बाद मुमताज़ जी को बहुत ही बड़े बड़े रोल्स मिलने लगे थे और वो सुपरहिट हो गई थी, जिसमें नरेंद्र बेदी और रमेश सिप्पी असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे और वो भी बाद में बहुत ही बड़े डायरेक्टर्स बन गए थे। मेरे सनम फिल्म से पुकारता चला हूं मैं, रफी साहब की आवाज में, सुनिए जरा।

बनाया। वैसे बॉलीवुड के क्लासिक गानों के साथ आपका साथ तो मैं निभा ही रही हूँ, और हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं सुंदरता की, वादियों की, तो क्या आप जानते हैं कि पहलगाम जो कि एक छोटी सी वैली है वहाँ की, वो पॉपुलर हो गई थी एक फेमस मूवी के बाद में, और वो मूवी थी बेताब जो कि 1983 में रिलीज हुई थी। उसके पहले ज़्यादा लोग इस एक खूबसूरत वैली पहलगाम के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन इस फिल्म के बाद में ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था, और उसके बाद से इस वैली का नाम ही बेताब वैली कर दिया गया था। पहलगाम के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन येस, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड बेताब वैली। आज तक भी टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, गाइड्स बताते हैं, तो बेताब वैली के नाम से ही इस जगह का नाम लेते हैं। वैसे वादियों में किसी ने अपनी सबसे पहली फिल्म बनाई थी तो वो थे प्रकाश मेहरा जी। हसीना मान जाएगी था फिल्म का नाम। इनफैक्ट एक खास बात यह है कि उनकी पहली फिल्म में बबीता जी लीड हीरोइन थी, और उनकी लास्ट फिल्म यानी कि बाल ब्रह्मचारी में बबीता जी की बेटी करिश्मा कपूर लीड में थी। हसीना मान जाएगी के लिए कल्याण जी आनंद जी ने म्यूजिक कंपोज किया था, और उसके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट उनके सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया था। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का गाना लता जी और रफी साहब की आवाज में, बेखुदी में सनम। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
6: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
8: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
0: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
11: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
10: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
12: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
13: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
14: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
15: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
14: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
15: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
14: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
15: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
14: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। आज के सभी गाने जो है मेरी प्लेलिस्ट में वो किसी ना किसी तरह कश्मीर से जुड़े हुए हैं। जितनी खूबसूरत ये जगह है उतने ही खूबसूरत ये गाने भी हैं। वैसे 60s में शम्मी कपूर जी का अगर कोई सबसे चहेता लोकेशन था टू शूट तो वो जम्मू और कश्मीर ही था। जंगली फिल्म का फर्स्ट हाफ भी श्रीनगर के पहाड़ों में ही शूट किया गया था, जहां पर बर्फबारी हुई थी, बहुत ही सुंदर स्नो जो है वो हर जगह फैला हुआ था। इनफैक्ट कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना ही तब जब याहू गाना पॉपुलर हुआ था। उसके पहले लोग सोच नहीं सकते थे कि कोई इतनी ठंडी जगह में जाकर के भी नाच सकता है, गा सकता है, छुट्टी मना सकता है, रोमांस कर सकता है। वैसे कि आप जानते हैं इस गाने में, याहू गाने में जो आइकॉनिक ये येल है, याहू वाली जो आवाज़ है, वो सोच जो थी वो रफ़ी साहब की थी ही नहीं, उनका क्रिएशन था ही नहीं, ना ही शम्मी जी का आइडिया था ये। एक्चुअली प्रयागराज जो कि एक राइटर थे, उन्होंने ये गाना सुना था बनते हुए, और ये गाना सुनकर के उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ तो मिसिंग है। एक वो जो इतनी खूबसूरत जगह में, इतनी ठंडी वाली जगह में जो एक्साइटमेंट, जो थ्रिल आना चाहिए ऐसी एक जगह को देख करके, वो थ्रिल मिसिंग है। और उन्होंने कहा था कि एक याहू ऐड कर दो इसके आगे। उनके कहने पर रफ़ी साहब ने ये याहू चिल्लाया था और वो आज तक भी लोगों को याद रह गया है। आप भी वही याहू कहते हुए इस गाने को सुनिए मेरे साथ। सुना रही हूँ आपको यही गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ऑलराइट।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टनकुलथुर में एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज यूजीसी नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरूआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kathankulathur near Chennai, the Vice President said, India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047.
3: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM's growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.
2: Recalling India's response to the COVID-19 pandemic, Mr. Radhakrishnan said, India supplied vaccines to more than 100 countries, demonstrating its commitment to global welfare and humanity. The Directorate of Revenue Intelligence, that is DRI, has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area, that is SAFTA. The Finance Ministry said the investigation has so far revealed a potential revenue loss of more than 2,500 crore rupees. 9 persons have been arrested in connection with the case. Import of areca nuts into India attracts a basic customs duty of 100%. The National Testing Agency NTA today announced retest for 3 papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology, following complaints about several errors in these papers. The NTA said the English paper will be held on the 9th of September from 9 a.m. to 12 noon in shift 1, while the Commerce paper will be conducted the same day from 3 p.m. to 6 p.m. in shift 2. The sociology paper will be held on the 10th of September from 9 a.m. to 12 noon in shift 1. The NTA had conducted the UGC NET June 2026 examination from the 22nd to 30th of June across 87 subjects for the award of Junior Research Fellowship, eligibility for Assistant Professor and admission to PhD programs. In Jharkhand, students protesting against irregularities in state's recruitment examinations today burnt effigies of Chief Minister Hemant Soren, Congress leader Rahul Gandhi and RJD leader Tejasvi Yadav in Ranchi. Students raised slogans against the state government and reiterated their demand for the cancellation of JPSC and JSSC examination, alleging irregularities in the recruitment process. The protesters have also announced plans to gherao the Chief Minister's residence on the 20th of this month. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha for tomorrow. Similar conditions are also expected over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Eastern Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Uttarakhand for the next 2 days. The Met Department has said that heavy rainfall is expected over Assam, Meghalaya, Bihar, Haryana, Chandigarh and Delhi for tomorrow. And that is the end of this news bulletin.

0: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।
1: अंचल की सबसे एडवांस
2: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: और तो सास पतोह के लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: जी मैडम, जी मैं सुनील साहू, मधुसूदनगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
2: बस मैडम जी, आपका रेडियो रंजन सुन रहे हैं और पानी गिर रहा है हमारे यहाँ पर। आप यहाँ गिर रहा है क्या? बरसात हो रही है हमारे यहाँ पर।
1: अच्छा, नहीं मेरे यहाँ तो अभी नहीं हो रही है, रात को हो रहा था।
2: अच्छा अच्छा, खाना माना हो गया आपका?
1: हाँ, हम सबका हो गया। आपका हो गया?
2: जी हो गया हमारा भी।
1: चलिए तब तो बढ़िया है। तो आज बता दीजिए गाना कौन सा सुनिएगा।
2: गाना मैडम जी अल्ताफ राजा का है, ये गाना है थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।
1: और गाना सुनाना भी है
2: जी। सबसे पहले आपको और भारती मैम को, सोनी मैम को, आप कौन? मनोरमा जी है ना?
1: नहीं, मैं भारती बोल रही हूँ।
2: अच्छा अच्छा, भारती जी का। हाँ, ये सब तीन ही मैडम को ये गाना डेडिकेट है। और गोपाल ओझा जी है और गजराज सिंह लोधी है और जितेंद्र धाकड़ जी है, इन सभी दोस्तों को गाना डेडिकेट है
1: जी। ओके, फिर रेडियो रंजन में कॉल किया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कब आएगा ये
1: आपको? कल या आज आएगा?
2: ठीक है,
1: ओके।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: लाल बाबू
1: जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, अपना बताइए। 45 मिनट से मैं लगा रहा था, छोटा वाला मोबाइल है, जब लगेगा तब मैं सोचा कि अब एक बार और लगा के देखना, लग गया। 45 मिनट लगाया।
1: अच्छा,
0: इतना ना बिजी बता रहा।
1: एकदम फरमाइश आ रही है आज कल के लिए।
0: बहुत बहुत ज्यादा आता है जिसका नंबर लग जाए।
1: ये तो बात सही है। आपको कौन सा गाना सुनना है
0: आज? गाना नाम फिल्म का बता दीजिएगा
1: और गाने के बोल बता दीजिए।
0: तो तिरंगा फिल्म का गाना है, कुछ उड़ाने दीजिए। तिरंगा फिल्म में देशभक्ति गाना नहीं है?
1: हाँ है। कौन सा उसमें? तो मतलब
0: अरे वो लाइन याद नहीं आ रहा था। तिरंगा का
1: जो भी देशभक्ति सॉन्ग होगा मैं बजा दूंगी। ओके,
0: तो मैं वही गाना बजाइएगा जो कल जो बजेगा। मैं तो दो गाना और याद करके रखा हूँ।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि ये क्रांति फिल्म का गाना है, एक अर्मा फिल्म का गाना है, जो आपको लगे वो बजाइएगा। और वो चार पांच गुड़िया है, रूबी है, करीना है, दो और लड़की है, वो लोग बोल रहे थी सुबह में, तो देशभक्ति गाना बजवाइएगा। मैं बोला ठीक है, लगेगा तो बजवा दे। चलिए
1: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
0: ठीक है, कोशिश कीजिएगा शाम को तक कल बन जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: सलाम अलैकुम मैम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
3: रचना बोलते नहीं, पठानपट्टी से।
2: कैसी हैं?
3: ठीक बानी, अपन बताई।
2: हमने भी ठीक बानी सर।
3: नाश्ता सुबह का गई मैडम?
2: हाँ, नाश्ता हो गई बाबे।
3: और समाचार?
2: और ही सब तो समाचार ठीक बाबे।
3: ठीक बा, सब कुछ ठीक बानू।
2: बताई कौन सा?
3: झूठ बोले कौवा काटे।
2: अच्छा,
3: गाना सुना दी।
2: गाना सुना होगी बच्चे के?
3: और सुन ले बा, सब कोई सुनी जितना लोग रेडियो सुनता।
2: अच्छा जी, चले ठीक है। रेडियो रंजन में कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी मैडम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम। हेलो,
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: गाना सुन
0: जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: एमडी नूरजाल।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: पठानपुर।
0: अच्छा जी, और कौन सा गाना सुना?
1: भोजपुरी गाना सुन रहा हूँ।
0: और भोजपुरी में कौन सा सॉन्ग?
1: पावर स्टार का। कौन सी
0: जी? और मतलब कौन सिंह का कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: नया और कोई बजा दीजिए।
0: अच्छा जी जी जी,
1: व्यापारी गाना।
0: गाना किसी को सुनाना भी है?
1: भाभी को सुनाना है
0: जी। चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करेंगे। सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: सर, कैसे हैं आप?
5: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
6: मैं ठीक है।
5: अभी तबीयत सही है?
6: हाँ ठीक है। खैरियत क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, जहाँ तक है वहाँ तो ठीक है।
5: अच्छा जी,
6: बारिश आपके यहाँ हो रहा है?
5: ना, बारिश नहीं हो रहा है।
6: गर्मी तो है?
5: गर्मी तो है।
6: हाँ ठीक, गर्मी तो यहाँ भी।
5: आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: हमको गाना सुना दीजिए, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, तू यही पर कहीं, जो बात इस जगह वहीं पे नहीं। ठीक है।
5: और गाना सुनाना भी है?
6: गाना हम आप सुनिए और पूरे रिमझिम परिवार के लोग सुने।
5: जी,
6: नाम भी बता दें। नाम भी पूछ रहे हैं?
5: बता भी देंगे तो कोई बात नहीं।
6: मोइनुद्दीन अहमद डुमरिया।
5: जी
6: ठीक है सर।
5: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
6: कब सुनेंगे? कब आ जाएगा?
5: आज नहीं तो कल आ जाएगा।

0: हेलो
1: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: मैं बढ़िया हूँ। नाश्ता वास्ता हो गया?
0: हाँ, नाश्ता हो गया है,
2: अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है।
0: आप
2: और
0: सब
2: बताइए, है ना?
0: हाँ हाँ, हम सब बढ़िया है। आप सब बताइए, आपका नाश्ता हो गया, आप सब कैसे हैं?
2: हाँ हाँ, हो गया है ना। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा रेडियो रिमझिम सुनती हूँ।
0: जी, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।
2: वेलकम।
0: आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: आज मुझे गाना सुना दी सौगंध मूवी का, है ना, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, ऐसा कोई सॉन्ग है? वही सुना दीजिए।
0: और गाना सुनाना भी चाहेंगी किसी को?
2: हाँ, सुनाना चाहूंगी ना, सबसे पहले तो आपको सुनूंगी, देखने सुनने वाले हैं सभी सुनेंगे।
0: ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है।
3: जिला भागलपुर के ग्राम पल्लव से बात कर रहे हैं।
2: जी जी, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
3: बॉर्डर फिल्म का।
2: और कौन सा उसमें का सॉन्ग?
3: संदेश से आते हैं।
2: और गाना सुनाना भी है?
3: इसमें
2: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू मैम। सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या हाल है मैम?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: बोल रहे थे गाना सुनना है।
1: अच्छा, और कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
0: है वतन तेरे लिए।
1: और गाना डेडिकेट भी है?
0: हाँ, पहले आपको है, उसके बाद है फिरोज आलम, जमशेद आलम, अरमान आलम, इरफान आलम, तैयबा खातून।
1: अच्छा, वैसे आप भी अपना नाम बता दें।
0: मेरा नाम शमशेर आलम है।
1: अच्छा जी, और कहाँ से हैं आप?
0: सासा मुसा कैथ बोलिए।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम।
0: ठीक।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हाँ
5: नमस्कार,
6: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
5: मैं सुधीर कुल बोल रहा हूँ, कोरजिंबा जिला देवघर झारखंड से। मैं
6: जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
6: हम भी ठीक हैं
5: जी। 80वां स्वतंत्रता दिवस को आपको और रेडियो रूम के पूरे टीम को बधाई मैम अग्रिम में।
6: जी जी, आपको भी।
5: जी जी, आज सुना दीजिए मैम
6: भक्ति
5: गीत। जी जी, देश प्रेमी फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, नफरत की लाठी तो जान लालच के खंजर फेंको, मेरे देशवासियों आपस में प्रेम करो।
6: और गाना डेडिकेट भी है
5: जी। सबसे पहले मैं आपको रेडियो रूम के पूरे लिसनर को, रेडियो रूम के पूरे आपके आरजे जितने हैं सपोर्टर टीम को, और हमारे विद्यालय में जो जितने भी स्टाफ हैं, गणित उच्च विद्यालय प्लस टू उच्च विद्यालय सिलगड़िया के जितने भी स्टाफ हैं, सबको सुनाना चाहता हूँ। और हमारे कुछ और दोस्त हैं, मदन कुल हैं, प्रभु कुल हैं, राजकुमारी हैं, कृष्णु कुल हैं, भोलानाथ कुल हैं, करण कुल हैं, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
6: जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
5: जी जी मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैम। हेलो,
1: हाँ, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, अपना बताइए।
1: हमारा भी ठीक है।
0: और सब खाना पानी हो गया है आपका? जी ठीक है।
1: आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
0: आज देशभक्ति गाना सुना दीजिए।
1: गाने के बोल बता दीजिए।
0: मैम मैं अपना नाम बता दे रही हूँ, मनीषा कुमारी। गाना दीजिए।
1: हाँ, गाना बता दीजिए कौन सा।

0: क्या बात है।
1: और थोड़ा गला फंस रहा है, गले में परेशानी है।
0: नहीं फिर भी अच्छा गा रही हैं।
1: चलिए कल सुना दीजिए।
0: और गाना सुनाना भी है किसी को?
1: जी मैम, आपको और सोनी मैम को, और भारत मैम, आप भारती मैम बोल रही हैं? सोनी मैम को और मनोरमा मैम को और विद्या मैम को और अपनी दीदी को और छोटे भाई को।
0: जी बिल्कुल।
1: और रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को, सभी आरजी को।
0: ओके जी, फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी मैम, बाय मैम,
0: बाय।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन रिंग दे बजती है तो कहते हैं हेलो,
4: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो।
7: हेलो मैडम, नमस्कार।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
7: मैं मनन बोल रहा हूँ कपूरा।
6: जी कैसे हैं आप?
7: हम तो सही हैं, आप कैसी हैं?
6: हम भी अच्छे हैं।
7: अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं। अच्छे होते तो घर पर नहीं होते।
6: अच्छा, नहीं मतलब अच्छे हैं, ठीक है, स्वस्थ है, तभी तो आ रहे हैं।
7: अच्छा मैडम, आप तो बहुत दिनों के बाद मिली है यार। तो आज कौन सा गाना सुनवाइएगा? हम ही आपसे पूछ रहे हैं।
6: अच्छा, तो
7: हमको सुनवाइए ना गाना। गाना मिलेगा का नहीं? ताड़ बने नौ से खजूर बने दुल्हन।
6: एक बार और बोलिएगा।
7: ताड़ बने नौ से खजूर बने दुल्हन।
6: ढूंढने पे तो मिल ही जाएगा।
7: नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा हिंदी गाना सुनवा दीजिएगा।
6: जी बिल्कुल, नहीं मिलेगा तो उसका सुना दूंगा।
7: तो एक गाना था हमको, ऐसा गाना है या नहीं है ये मुझे पता भी नहीं है।
6: कहीं सुने हैं?
7: नहीं, कभी सुने नहीं है। अच्छा। लेकिन अपने से सोच के मैं बता रहा हूँ कि ऐसा गाना होगा क्या नहीं।
6: अच्छा ठीक है,
7: जरा सर्च मारिएगा। तो आपके तौर में बहुत से गाने आते हैं ना, नहीं गाए हैं? हाँ, लगता है कि आपका कुछ नाश्ता उसका भी कर रहे हैं क्या?
6: नहीं
7: ऐसा ही लगता है। लोगों से बताते हैं कि यहाँ नाश्ता हो गया है, खाना पीना हो गया है, आप खुद ऑफ कर रहे हैं। चलिए तो मैडम वही गाना सुनवा दीजिएगा।
6: ठीक है,
7: सच मरिएगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो हिंदी गाना। ठीक है, नमस्कार।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: ओके, थैंक यू।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: मैम गाना सुनना है।
0: नाम भी बता दीजिए।
1: हमारा नाम मौलादीन मियां है, मैं कैथोलिया का रहने वाला हूँ।
0: जी और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुनने के भाई कर्मा फिल्म के
0: गाने के बोल
1: दिल दिया है जान देंगे गाना नहीं है कर्मा फिल्म का, वही गाना सुनना है।
0: और गाना सुनाना भी है
1: जी, जमशेद आलम है, तैयबा खातून है, हसीना खातून है, शहनाज खातून है, इरफान अली, अरमान अली, ये सुना तब है रेडियो रिमझिम, वो सबको सुनवा एक बार होगा कि सुनवा एक बार।
0: अच्छा जी
1: जी, कब सुना दे?
0: इधर हुआ काल ना था, आज सुने की मिल जाए।
1: अच्छा ठीक भाई, आज चाहे काल सुना दी। हमारे बहन साहब भाई बड़े फिरोज आलम सुनिया।
0: अच्छा
1: की बोलते नहीं रुआ मुनर्मा जी?
0: ना भारती।
1: अच्छा वहाँ का देखिए और कहा सोनी जी?
0: सोनी जी तो ना
1: साफ साफ में हो गए वहाँ के। ठीक बात, लाइन लगी रहुआ लगी।
0: चलिए ठीक बा,
1: ठीक बा मैडम, सुना दी गाना है।
0: रेडियो रूम से मैं कॉल करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे?
6: अच्छा है,
5: क्या हो रहा है आपकी?
6: अभी तो अच्छा, फोन लगा 12 बज रहे थे।
5: अच्छा, इतना टाइम लग गया?
6: बहुत टाइम, सबको कॉल किया। और समाचार बताइए कैसे है?
5: और समाचार ठीक है, आप सब ठीक है ना?
6: जी हम लोग ठीक है।
5: तो आज बता दीजिए फरमाइश अपनी।
6: फरमाइश राष्ट्रीय गाना,
5: गाने के बोल
6: बड़ा फिल्म का।
5: अच्छा, और सॉन्ग सुनाना भी है?
6: जी आपको जितना रेडियो आते हैं सब, जितना श्रोता दोस्त सुनते सबके साथ।
5: चलिए ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
6: जी मैडम, धन्यवाद।

0: हेलो, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू मैम। भारती मैम बोल रही है। एक बार तो पूरा कॉल रिंग होके कट गया मैम, ऐसा क्यों?
1: कुछ काम कर रहे थे।
0: क्या क्या हाल चाल है मैम?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: हम लोग तो अच्छे हैं, आप अच्छी है ना?
1: हेलो,
0: योर वॉइस योर चॉइस चलेगा ना?
1: जी बिल्कुल चलेगा।
0: आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए, देखो दिन मूवी से, जब न माना दिल दीवाना कलम उठा के जाने जाने।
1: कौन सी मूवी है?
0: देखो दी।
1: अच्छा,
0: काजल का
1: गाना कौन सा बोले हैं?
0: जब न माना दिल दीवाना कलम उठा के जाने जाना, खत मैंने तेरे नाम लिखा। सुनाना है सबसे पहले आपको, सोनी मैम को, कमरान रशीद को, राघव जी को, दिलीप भाई को, हरी को, असलम भाई को, किरण भाई को, और संसाद भाई को, बुखरा नंदी को, और जो भी रेडियो इंजिन जहाँ से सुन रहे हैं सभी को।
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए मैम, जुम्मा मुबारक मेरे तरफ से सभी को बोल दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: ओके मैम, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। रेडियो रिमझिम में कॉल किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494011। जी हाँ, 80029494011। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी नमस्कार।
7: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मनोरमा जी,
7: नहीं भारती,
6: भारती जी बोल रहे हैं।
7: हाँ,
6: अमित शाह मास्टर,
7: ग्राम धनाव से।
6: जी क्या हाल चल रहा?
7: ठीक बार हुआ, बताए रहो कैसे बनी?
6: हम ठीक है, जुम्मा की तैयारी होती है तो सर ने कॉल कर लिया।
7: अच्छा,
6: घर पर चली ना?
7: ना अभी कहाँ, अब ज्यादा नहीं शुरू करे।
6: कॉल कहाँ बनी है?
7: ना अभी एक और ही दो को कॉल ले मोकरा बाद से।
6: ठीक बात, तो हम एक घंटे बाद जो जम जाए 1:30 बजे के बाद।
7: चलिए ठीक है बाबा।
6: और सब सब परिवार सब मौसम कैसा मेरा बाद में?
7: मौसम तो अभी मैंने ठीक ठाक बाबे, ना ज्यादा तेज धूप है ना ज्यादा गर्मी बा।
6: हमें दो तीन बार बारिश आई लगी जब, तो गाना सुना दे
7: बता दी
6: बेताब मूवी के। जब हम

0: याद करेंगे। और सबसे पहले सुनाए बरुआ के और रामा जी के और जितना सुनने वाला बात अगर कोई सुनी है हमने के धनाव से सुनम
1: जाए। अच्छा जी, चलिए ठीक बात। फिर गाना प्ले करते नहीं सुना कहीं रेडियो 90.4।
0: ठीक है मैडम, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
1: में। मुरालम बात कर रहे हैं श्रीनगर कश्मीर से।
0: जी वालेकुम अस्सलाम।
1: गाना सुनना है?
0: जी जी बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: खुशी का रिज़म का टाइटल सॉन्ग।
0: अच्छा जी, और सॉन्ग डेडिकेट भी है।
1: हाँ जी
0: बता दीजिए।
1: जिसमें सुनने वाले हैं साथो और मेरे रियाजुद्दीन और ताजुद्दीन और मेरे दोस्त
0: जी जी। और सब बताइए, और सब ठीक है घर में? सब कोई ठीक है?
1: हाँ जी बस ठीक है, मेरा घर उधर ही है।
0: आपका घर कहाँ है वैसे?
1: बरौली। बरौली
0: जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
0: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।